नमस्कार, सुप्रभात। हम विविध भारती जयपुर के अंदर से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 जून सन 2026। इस समय सुबह के 5:56 होने को हैं। हमारी प्रातःकालीन सभा अब आरंभ होती है।

0: हम विविध भारती की जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज़, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
2: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
1: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो का मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती
4: वंदन वार।

लीजिए श्रोताओं, सुनिए सबसे पहले आज का चिंतन। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें। लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। हर अनुभव एक शिक्षा है, हर बदलाव एक संकेत है और हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए वंदनवार में भक्ति रचनाएं।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का पाठ आज भाग 223 प्रसारित किया जाएगा। 6:45 पर और शाम को पुनः शाम को 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला वायलिन का विहंगम संसार। कलाकार है वायलिन वादक SL कंडारा। इसका भाग एक प्रसारित होगा। प्रस्तुति मनीषा जैन की। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 7:00। 7:30 पर हम है राही प्यार के। 8:15 पर और पुनः दिन में 2:00 आप सुनेंगे त्रिवेणी आलेख एवं स्वर चंचल वर्मा का। सुबह 8:30 पर और रात को 8:15 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम चित्रलोक। पर सुबह और रात्रि 9:30 पर पुनः आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित रहेगा संगीतकार डांसिंग पर। प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। पिटारा में आज के मेहमान के अंतर्गत आज आप सुनेंगे सुबह 10:00 अभिनेता विजय राज से कमल शर्मा की बातचीत। प्रस्तुति कल्पना शेट्टी की है। रंग तरंग कार्यक्रम का प्रसारण समय 11:00। 12:05 पर सुनिएगा यादों की महफिल। 1:00 सुरीला सफर। 2:15 पर समाचारों के बाद आप सुनेंगे 2:30 पर सदाबहार नगमे। 3:00 सखी सहेली के अंतर्गत बातचीत होगी सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस पर। कहानी पद्मश्री की अंतर्गत बात होगी बसंती देवी बिष्ट उत्तराखंड की पहली जागर लोक गायिका के बारे में। मुझे कुछ कहना है इसमें आप बात सुनेंगे आज ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा। उपयोगी टिप्स जिसमें कि आपको टिप्स दिए जाते हैं खाना बनाते समय कुछ काम के टिप्स। संवादक चंचल वर्मा और आरती श्रीवास्तव रहेंगे। शाम 4:00 हेलो फरमाइश सुनिएगा संवादक ममता सिंह। 5:00 छाया गीत। 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। 6:30 पर सुनिएगा झरोखा। 6:35 पर संध्या रंजन। फौजी भाइयों का कार्यक्रम जयमाला इसका प्रसारण समय रहता है 7:00। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत सुनिएगा इनसे मिलिए में विग मेकर अनवर पावस्कर से। प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। रात्रि 8:00 हवा महल में सुनिएगा हास्य नाटिका मशीन का चक्कर। लेखन शांति स्वरूप प्रधान का है निर्देशन विनोद रस्तोगी का। 9:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम आपके लिए। 10:00 छाया गीत आलेख एवं स्वर नेहा आगरकर देसाई का। प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। 10:00 ये कार्यक्रम आप सुनते हैं रोज रात 10:30 पर और 11:00 सुनिएगा रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये थी हमारे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए प्रस्तुत है रामचरितमानस पाठ आज इसका भाग 223 आप सुनेंगे।

राजा जनक के दूत चित्रकूट आ पहुंचे हैं। वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक का कुशल क्षेम पूछा तो दूत आदर तथा संकोच से नतमस्तक होकर बोले, आपका आदर के साथ पूछना ही कुशल हो गया मुनिवर, नहीं तो कुशल क्षेम तो अयोध्यापति के साथ ही लुप्त हो गए थे। उनके जाने के साथ ही सारा जगत, विशेष रूप से कोशल और मिथिला अनाथ हो गए थे। भरत को राज्य और श्री राम को वनवास, ये सुनकर मिथिलापति का दुख और भी अधिक हो गया। जनक जी ने भरत जी की वास्तविकता जानने के लिए अपने गुप्तचर अयोध्या भेजे। लौटकर गुप्तचरों ने अपनी बुद्धि के अनुरूप स्थिति का वर्णन किया, जिसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच तथा स्नेहवश व्याकुल हो गए हैं। और अब जनक जी अपने सभासद तथा कुटुंबियों समेत चित्रकूट पधार रहे हैं।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आज से हम एक नई श्रृंखला आरंभ कर रहे हैं, वॉयलिन का विहंगम संसार। आमंत्रित कलाकार हैं जाने माने वॉयलिन वादक पंडित एसएल कंडारा। आपसे बातचीत की है जयंत पात्रेकर ने। तो आइए सुनते हैं वॉयलिन का विहंगम संसार, इस श्रृंखला की पहली कड़ी।
1: संगीत सरिता के समस्त श्रोताओं का हृदय से स्वागत है। मित्रों, वायोलिन एक ऐसा वाद्य जो पश्चिम से आया और हमारे यहाँ हमारे संगीत में बड़ी आसानी से, बड़ी सहजता से रच बस गया। पाश्चात्य शास्त्रीय संगीत में चेम्बर म्यूजिक से लेकर फिलहार्मोनिक ऑर्केस्ट्रा तक इस्तेमाल किए जाने वाला ये वाद्य, इसका आगमन हमारे यहाँ कैसे हुआ और किस तरह से इसका इस्तेमाल यहाँ संगीत में किया जाता है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए, इसकी शास्त्रीयता के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करने के लिए विविध भारती के स्टूडियोज में उपस्थित हैं सुप्रसिद्ध वायोलिन वादक पंडित एस एल कंडारा जी। कंडारा जी

0: बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में।
1: शुक्रिया आप विविध भारती का और श्रोताओं का।
0: आपका अपने ही घर में स्वागत करते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। श्रोताओं, अपने घर में मैंने इसलिए कहा क्योंकि पंडित एसएल कंडारा साहब आकाशवाणी में कार्यक्रम निष्पादक से लेकर सहायक केंद्र निदेशक और उसके बाद दूरदर्शन में चीफ प्रोड्यूसर यानी प्रमुख निर्माता के पद पर कार्य कर चुके हैं। आकाशवाणी और दूरदर्शन के टॉप ग्रेड कलाकार हैं। कंडारा साहब, वायलिन के बारे में हम तफसील से जानना चाहेंगे, तो सबसे पहले तो ये बताएं कि वायलिन का जन्म कहाँ हुआ और कैसे इसे पश्चिम में संगीत में इसे स्थान मिला।
1: जयंत जी, वायलिन अपने आप में एक कंप्लीट इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे नज़र आया और परिपूर्ण साज, परिपूर्ण वाद्य की तरह इस इंस्ट्रूमेंट को मैंने पाया और देखा। जहाँ तक इसके जन्म का या इसके उद्भव का प्रश्न है, भारत में कुछ भ्रांतियाँ हैं। हिंदुस्तान में कुछ लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ रावण हत्ता करके एक इंस्ट्रूमेंट था, उसका एक ये इनकार्नेशन और मॉडिफाइड रूप है, पर मैं उस विवाद में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जैसा वायलिन मैंने देखा है, वो वायलिन पाश्चात्य देशों का ही प्रोडक्ट मुझे लगता है। 16 सेंचुरी में
0: जी
1: इस वाद्य को पहली बार 1530 में फेरारी साहब की पेंटिंग में, एक बहुत बड़े पेंटर थे फेरारी, ग्रैंडियाजियो फेरारी, ये फ्रांस के पेंटर थे, उनकी पेंटिंग में ये परिलक्षित हुआ है 1530 में। और 1530 में इस साज के तीन तार उसके साथ बंधे हुए थे, थ्री वायर्स इंस्ट्रूमेंट। अब विविध भारती में तो अपनी लिमिटेशन है, नहीं तो श्रोताओं को हम लोग वो साज की पेंटिंग बताते थे। तो कोई बात नहीं, श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बताना चाहते हैं कि इस बाजे का जो ओवरऑल पैटर्न जो अभी एक्सेप्टेबल है और वर्तमान में उपलब्ध है, वो इस्टेब्लिश हुआ अमाटी फैमिली के जेकब स्टेनर और एंटोनियो स्टेडीवेरी। अच्छा। ये दो लोगों ने इसका जो वर्तमान स्वरूप है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं, वो उन लोगों ने इसको वर्तमान शेप दिया।
0: जी जी।
1: अब स्टेडीवेरीस के नाम से तो बाजा ये प्रचलित है और मेरे पास भी जो वायलिन एक है
0: जी,
1: वो स्टेडीवेरीस मैक है और ये वर्ल्ड ओवर ये जो मैक है बड़ा ऊंचे दर्जे पे देखा जाता है।
0: हाँ जी।
1: बड़े बड़े वायलिनिस्ट इस मैक के वायलिन बजाते हैं। ये मान लेने में हमें कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि ये बाजा पश्चिमी बाजा है।
0: इसका आगमन हमारे देश में किस तरह से हुआ?
1: ये अच्छा सवाल आपने पूछा। इनफैक्ट हमारे यहाँ जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिग्रहण, यूं कहिए कि वो निवेशवाद के कारण आना शुरू हुआ
0: जी,
1: तो मद्रास में सबसे पहले बैंड के साथ ये बाजा वहाँ पे उपस्थित था।
0: अच्छा।
1: ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंड मास्टर्स लोग जो थे,
0: हाँ हाँ हाँ,
1: वो इसका उपयोग बैंड में करते थे। और मद्रास में जो बालू स्वामी दीक्षितर साहब थे, ये बहुत बड़े कंपोजर थे, मुथु स्वामी दीक्षितर
0: जी
1: उनके भाई थे, तो उन्होंने इस बाजे को देखा और बैंड वाले जो एक्सपर्ट्स थे उनसे उन्होंने सीखने की कोशिश की।
0: हाँ हाँ।
1: और सबसे पहले उन्होंने उस बाजे को सीखा और उसको अपने हिसाब से बजाने की कोशिश की।
0: वाह। हाँ।
1: ये जो सिलसिला शुरू हुआ ये लगभग 17 सेंचुरी में शुरू हुआ और उस ज़माने में शुरुआत के बाद साउथ इंडिया में वायलिन इतना छा गया
0: जी
1: कि आज हर फंक्शन में, हर प्रोग्राम में, हर गायक के साथ, हर वादक के साथ वायलिन आप बजता हुआ देखेंगे।
0: जी जी। कंडारा जी, ये मैं जानना चाह रहा था कि पश्चिम में इसे जिस तरह से बजाया जाता है, इसके तारों की ट्यूनिंग जो की जाती है उसमें, और भारतीय शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है इसे अपना लिया गया, मगर इसकी ट्यूनिंग में फर्क है दोनों जगह जो बजता है
1: जी,
0: वो क्या खास फर्क है?
1: देखिए, पश्चिम में जो ट्यून करते हैं बड़े बड़े लोग, यहूदी मेनन साहब, लोकासल्स वगैरह
0: जी,
1: ये मसा परे का एक स्केल हमारे यहाँ कहते हैं।
0: हाँ हाँ।
1: मंद्र तार जो है मिलाते मध्यम में, फिर सा हो गया, फिर पंचम, फिर आखिरी तार जो है वो ऋषभ।
0: हाँ।
1: तार सप्तक की,

0: और ये स्केल कुछ दिनों तक हमारे यहाँ चला, फिर उसके बाद में आगे जो भी इसमें परिवर्तन हुए वो बाद में बात करेंगे। पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन वादकों का इस पे जो सिद्ध हस्त अधिकार है,
1: हाँ हाँ हाँ,
0: वो अद्भुत है, उसकी हम लोग बराबरी नहीं कर सकते।
1: इनमें बहुत से स्टालवार्ड्स हुए हैं, बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। एक प्रमुखता से जिनका नाम लिया जा सकता है वो है यहूदी मेन्युहिन। बहुत से
0: अनडाउटेडली
1: भारतीय संगीत प्रेमी उन्हें जानते हैं क्योंकि यहूदी मेन्युहिन साहब ने पंडित रविशंकर जी के साथ मिलकर के जो काम किया है संगीत के क्षेत्र में,
0: बिल्कुल
1: वो अद्भुत है।
0: डेफिनेटली यहूदी मेन्युहिन साहब वो व्यक्ति हैं कि जिन्होंने इंडियन क्लासिकल म्यूजिक को पहचाना और उसको इज्जत दी
1: जी।
0: उसमें पंडित रविशंकर जी, उस्ताद अली अकबर खान साहब और मेरे गुरुजी पंडित राम नारायण जी, और गज के बाजों को वेस्टर्न म्यूजिक में, पाश्चात्य संगीत में सबसे महान माना गया, बहुत ऊंचा दर्जा दिया जाता है। तो शुरुआत में यहूदी मेन्युहिन साहब के साथ कुछ बहुत बड़ा, उनके साथ मेरे कहने से बड़े नहीं हो जाएंगे, वो तो बहुत बड़े हैं, उनका कुछ एक मैं चाहता हूँ कि एक कोई
1: यहूदी मेन्युहिन द्वारा कंपोज किया हुआ एक जो संगीत रचना है उसकी झलक सुनवाते हैं।
0: बहुत बहुत आदर की बात है, एंड इट विल बी ग्रेट ट्रिब्यूट टू दैट पर्सनैलिटी। उनको आदर मिलेगा और मैं वो आदर का भागीदार बनना चाहता हूँ आपके साथ।
1: जी जी, आइए सुनते हैं।

0: इस खूबसूरत रचना को सुनने के बाद पंडित जी, भारत में आपने बताया कि दक्षिण में इसे बालू स्वामी दीक्षितर ने इसे अपनाया, सीखा और बहुत अधिक लोकप्रिय किया, इसका प्रचलन उत्तर भारत में किस तरह से हुआ और कौन इसके प्रणेता रहे हैं?
1: जयंत जी, सबसे पहले जब मैंने होश संभाला तो इस बाजे को देखा, संगीत के बड़े विद्वान मनीषी ऋषि
0: जी जी
1: जो भी कह लें उनके लिए कम हैं, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, तो उनका दिनमान पे एक फोटोग्राफ था वायलिन हाथ में लिए हुए।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो इस बाजे को सबसे बड़ी इज्जत उनके हाथ में जाने से उत्तर भारत में मिली, उन्होंने इस बाजे को इज्जत बख्शी। वो कैसा बजाते थे, हमारे पास उसके कुछ रिकॉर्ड्स ही हैं मेरे ख्याल से, श्रोताओं को उनमें से कोई उपलब्ध हो तो सुनवाएं।
0: जी अवश्य। उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब का बजाया हुआ राग सिंदूरा की एक झलक आपने श्रोताओं को सुनवाएं।
1: बिल्कुल, बड़े आदर के साथ श्रोताओं को ये पे

0: उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब की वायलिन पर बजाई राग सिंदूरा की झलक हमने सुनी और श्रोताओं इसी के साथ वायलिन का विहंगम संसार इस श्रृंखला की ये पहली कड़ी यहाँ समाप्त हो रही है। फिर भेंट होगी, आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: वायलिन का विहंगम संसार। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की पहली कड़ी। आमंत्रित कलाकार जाने माने वायलिन वादक पंडित एसएल कंडारा, आपसे बातचीत की जयंत पात्रिकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: वज्रदंती। वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
1: फिल्म का नाम है सुहागन। लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाजों में ये गीत है। हसरत जयपुरी के बोल हैं, संगीत दिया है मदन मोहन ने।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आइए अब आपको सुनवाते हैं भूले बिसरे गीत में अगला गीत। मोहम्मद रफी ने इस गीत को गाया है, रचनाकार कैफ इरफानी है, संगीत फिर से मदन मोहन का और फिल्म का नाम है शेरू।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: Ja. Hi, hi, hi.
1: ये गीत अभी आप सुन रहे थे फिल्म शराबी से. मदन मोहन का संगीत था राजेंद्र कृष्ण के बोल, आवाजें थी मोहम्मद रफी और आशा भोसले की.
2: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है.
3: परेशान हूं मैं.
2: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है.
4: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी.
2: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने.
4: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है. और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं.
2: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर.
1: श्रोताओं, वक्त है एक अंतराल का, मिलते हैं इस अंतराल की बात.

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: बदलो बदलो आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

मेहरबान आपके शहर में आकर एक खास गाना बनाया है जो इस प्रोग्राम को रोककर आपके सामने पेश करता हूं।

0: साहिब बहादुर इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाज थी किशोर कुमार की, राजेंद्र कृष्ण के बोल, धुन बनाई थी मदन मोहन ने।
1: कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली फिल्म का गीत। आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की है, मजरू सुल्तानपुरी के बोल। धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये गीत था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में सारंगा फिल्म से। भरत व्यास के बोल थे, संगीत था सरदार मलिक का, और इसी गीत के साथ भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्मरिक

लिए श्रोताओं, हम लोग हाजिर हैं आपके लिए कार्यक्रम लेकर। हम हैं राही प्यार की। आइए आपको सुनवाते हैं ये पहला गीत, मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में, राजकुमार फिल्म से, हर्षित जयपुरी के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: आइए अब आपको सुनवा रहे हैं खयाम के संगीत से सजा ये गीत। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें, फिल्म का नाम कभी कभी।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम हम ही रही प्यार की में। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं हम रवि के संगीत से सजा प्रेम धवन का लिखा गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में ये गीत प्यार का सागर फिल्म से।

0: उनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आओ प्यार करें, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं उषा खन्ना के संगीत से सजा, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर के युगल स्वर।

आइए अब आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम की आखिरी प्रस्तुति। ये गीत हमने लिया है फिल्म कन्हैया से, लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में। शैलेंद्र का लिखा गीत, शंकर जयकिशन का संगीत।

लता मंगेशकर, मुकेश और साथियों के स्वरों में कन्हैया फिल्म का गीत आप सुन रहे थे और ये गीत है हम हेरा ही प्यार के कार्यक्रम का आखिरी गीत। इसी गीत के साथ कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के यहीं संपन्न हुआ।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। सुबह के 8 बजे का समय होने जा रहा है। थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर सूर्य घर।
0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
3: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
4: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
5: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनीतिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
6: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी घोषणा का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
7: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
8: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
9: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
10: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
8: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिडमा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं।

0: सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेंबू उरांव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
1: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
0: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
3: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।
4: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट AF थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बना ली है। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद फरहत। आज सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर सचित्र प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक जागरण ने राष्ट्रपति ट्रंप के शब्द प्रकाशित किए हैं, भारत पर हमला हुआ तो हम करेंगे मदद। 16 माह बाद हुई द्विपक्षीय बैठक में अमरीकी राष्ट्रपति ने दिया आश्वासन, फिर टूटी उद्धव की शिवसेना। सेना, 9 में से 6 सांसद बागी, शिंदे को माना अपना नेता। अमर उजाला की सुर्खी है, पत्र लिखता है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंप कर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर है। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक 1, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देश बंद।

0: फुर्सत के पल स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश। लोक सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, पेपर लीक से टूटता मनोबल। संपादक का कहना है कि पेपर लीक की घटनाएं केवल परीक्षा प्रणाली की कमजोरी नहीं दर्शाती, बल्कि ये युवाओं के सपनों पर चोट करती है।
1: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजय बढ़त बनाई। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों अस्थाई हैं। जो भी इस धरती पर आया है उसकी मृत्यु निश्चित है। अंत में हमारे अच्छे कर्म और दूसरों को दी गई खुशी ही हमारे साथ जाती है, बाकी सब तो यहीं रह जाता है। हम जो बोते हैं वही काटते हैं। हमारे वर्तमान कार्य ही भविष्य का निर्माण करते हैं। अच्छा समय हमेशा नहीं रहता और बुरा समय भी एक दिन बीत ही जाता है। धैर्य और सकारात्मकता ही जीवन के पहियों को चलाते हैं। मनुष्य का धर्म केवल अपने कर्तव्य को फल की इच्छा के बिना निष्ठापूर्वक करना है। जिंदगी का असली खजाना धन दौलत नहीं बल्कि वो अनुभव और सबक होते हैं जो हमें हर अच्छे बुरे दिन से मिलते हैं। ये सच्चाई हमें सिखाती है कि दिखावे और अहंकार में जीने की बजाय वर्तमान में रहकर अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा आदेश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
4: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
3: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
4: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
5: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
6: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
7: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
8: जय हिंद। पिछले एक दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
9: हमें गर्व है कि पिछले एक दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
8: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: वे केवल सिख धर्म के 5वें गुरु ही नहीं थे, बल्कि सत्य, त्याग, सेवा और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पहले शहीद गुरु भी थे। उनकी शहादत मानव इतिहास में साहस और आध्यात्मिक दृढ़ता का अद्वितीय उदाहरण मानी जाती है। हर वर्ष उनका शहीदी दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया जाता है, जिसमें उनके महान बलिदान और शिक्षाओं को याद किया जाता है। इस बार 5वें सिख गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस गुरुवार यानी आज 18 जून 2026 को मनाया जा रहा है। यह दिन मानवता के प्रति उनके समर्पण और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है।

0: केसरी फिल्म का गीत आपको हमने सुनवाया। जैजी बी इसके गायक कलाकार थे। कुंवर जुनेजा ने इस गीत को लिखा था और चितरंजन भट्ट का संगीत था।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं विविध भारती से कार्यक्रम चित्रलोक। आइए अब आपको सुनवाते हैं कभी अलविदा ना कहना फिल्म का गीत। सोनू निगम और अलका याग्निक, साथ ही वसुंधरा दास की आवाजें हैं। जावेद अख्तर का लिखा गीत, शंकर एहसान लोय का संगीत।

0: सोल्जर फिल्म का गीत अलका याग्निक और कुमार सानू के युगल स्वरों में समीर ने इस गीत को लिखा, अनु मलिक के संगीत से सजा ये गीत था। अब कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से अंतराल का।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है। तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
5: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: पूजा नरानिया। श्रोताओं, आज है गोवा क्रांति दिवस। 18 जून गोवा के लिए महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन गोवा की आज़ादी की नींव पड़ी थी। स्वतंत्रता सेनानी और देश के बड़े सोशलिस्ट नेता राम मनोहर लोहिया का इससे खास संबंध था। उनका गोवा की आज़ादी में खास योगदान रहा। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। भारत भले ही 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन गोवा को आज़ाद होने में 14 साल और लगे। भारतीय सेना ने पुर्तगाल से गोवा को आज़ाद कराने के लिए यहां पर आक्रमण किया था। इसके बाद गोवा आजाद हुआ, लेकिन पूर्ण राज्य बनने में उसे 26 साल और लगे। इसके बाद 30 मई 1987 को गोवा को अलग राज्य का दर्जा मिला और ये देश का 25वां पूर्ण राज्य बना। भारतीय सेना ने पुर्तगाल से गोवा को आजाद कराने के लिए यहां आक्रमण किया था।

0: वी ज़ारा फिल्म का गीत आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, उदित नारायण, गुरदास मान और प्रथा मजूमदार की आवाज़ों में। जावेद अख्तर का लिखा गीत था, मदन मोहन का संगीत।
1: जिनकी बांसुरी की मधुरतान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
0: अलका याग्निक और सोनू निगम की युगल आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं सलीम बिजनौरी का लिखा गीत, डब्बू मलिक के संगीत से सजा। फिल्म का नाम तुमको ना भूल पाएंगे।

आपको सुनवाते हैं जन्नत फिल्म का गीत केके की आवाज में। इस गीत को लिखा है सईद कादरी ने और प्रीतम ने संगीत से सजाया है।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी और प्रदेश में प्री मॉनसून गतिविधियां जारी। आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजस्कियान ने दोनों देशों के बीच शत्रुता समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसमें होर्मूज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते सहित प्रतिबंध हटाने पर 60 दिनों की वार्ता प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। अमेरिका की ओर से आधिकारिक बयान में कहा गया है कि श्री ट्रंप ने कल पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात के दौरान व्यक्तिगत रूप से समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक 2026 सम्मेलन में भाग लेंगे। वे भारत की तकनीकी प्रगति और नवाचार को दुनिया के सामने रखेंगे। श्री मोदी कल रात राजधानी पेरिस पहुंचे। उनके आगमन पर भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। इससे पहले G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। श्री मोदी ने डीप फेक, साइबर धोखाधड़ी और भ्रामक सूचनाओं से निपटने के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया। प्रधानमंत्री ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी द्विपक्षीय बैठक की। इस बैठक के दौरान श्री मोदी ने नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
4: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सीफेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सीफेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
3: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने सभ्यतागत धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई ऐतिहासिक पहल की हैं, जिसने करोड़ों नागरिकों में गौरव की भावना को मजबूत किया है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण पहल अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट प्रतीक है। साथ ही मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। अब आधुनिक तकनीक और एआई आधारित निगरानी प्रणाली से सुसज्जित महाकाल लोक विरासत और नवाचार का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परिवर्तनकारी पहलें भारत की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं जिसके तहत देश अपनी सांस्कृतिक जड़ों को सहेजते हुए आत्मविश्वास के साथ भविष्य की ओर अग्रसर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर अपराध हेल्पलाइन 1930 प्रणाली का आधुनिकीकरण करने और उसमें एआई तकनीक का इस्तेमाल करने को कहा है, जिससे वित्तीय धोखाधड़ी में नागरिकों को तुरंत सहायता मिले। उन्होंने कल नई दिल्ली में हेल्पलाइन 1930 के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की। श्री शाह ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कॉल सेंटरों को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि शिकायत निवारण व्यवस्था से अब तक लगभग 1,00,000 नागरिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही गृह मंत्री ने साइबर अपराधों में इस्तेमाल होने वाले म्यूल बैंक खातों पर भी प्रभावी अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं। जैसलमेर की साइबर पुलिस ने जिला कलेक्टर की एसएसओ आईडी से छेड़छाड़ करने वाले एक शातिर साइबर ठग को झालावाड़ से गिरफ्तार किया है। आरोपी राहुल तवर ने कलेक्टर की आईडी में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर फर्जी दस्तावेज अपलोड किए थे। पुलिस अधीक्षक अभिषेक शिवहरे ने बताया कि आरोपी का मुख्य उद्देश्य पीएम किसान, जन आधार और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी सरकारी योजना के लाभार्थियों के खातों की जगह बैंक में अपना खाता जोड़कर सहायता राशि हड़पना था। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। समाचारों में आपका स्वागत है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष की बजट घोषणा के अनुरूप मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने यह फैसला लिया है। इसके लिए विभिन्न विभागीय सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे। हालांकि जिन कर्मचारियों ने वर्ष 2023-24 और 2025-26 में इस छूट का लाभ पहले ही ले लिया है, उन्हें इस दायरे से बाहर रखा गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने शासन सचिवालय में कामकाज को बेहतर बनाने के लिए नए पदों के सृजन को भी मंजूरी दी है। इनमें 15 सहायक शासन सचिव, 67 सहायक अनुभाग अधिकारी और 67 लिपिक ग्रेड प्रथम के नए पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने काम में लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने विभागीय जांच के 19 लंबित प्रकरणों का निस्तारण करते हुए कई कार्मिकों की वेतन बढ़ोतरी और पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य सेवा के 4 सेवारत अधिकारियों पर आरोप प्रमाणित होने पर उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने का भी निर्णय लिया है। वहीं कुछ अधिकारियों को राहत भी दी गई है। भारतीय वन सेवा के एक अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई खत्म कर दी गई है। इसके अलावा 2 अन्य प्रकरणों में आरोप साबित नहीं होने पर 4 अधिकारियों को दोष मुक्त कर दिया है। राज्य सरकार के निर्देश पर पांचना बांध से नहरों में पानी छोड़ने और जल बंटवारे के मुद्दे को सुलझाने के लिए आज भरतपुर संभागीय आयुक्त नन्ली कठोतिया की अध्यक्षता में किसान प्रतिनिधियों की एक महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक प्रस्तावित है। इससे पहले कल भी संभागीय आयुक्त ने एक अहम बैठक सवाईमाधोपुर और करौली के जिला कलेक्टर तथा सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ की। संभागीय आयुक्त ने बताया कि प्रशासन का मुख्य उद्देश्य दोनों जिलों के किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए विवाद का शांतिपूर्ण और सर्वसम्मत समाधान खोजना है।
5: 2026-27 के तहत पांचना बांध के समीप स्थित 39 गांवों के लिए सिंचाई परियोजना के लिए 50 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसकी डीपीआर तैयार की जा रही है, जो कि जुलाई माह के अंत तक संपन्न की जा सकेगी और ये इससे संबंधित निविदा आमंत्रित की जाकर अतिशीघ्र। इसी क्रम में हमने जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर और जिला कलेक्टर करौली से भी हमने वार्ता की है और इस संबंध में विस्तृत विचार विमर्श किया है। बांध में जलापूर्ति के गतिरोध को दूर करने की दृष्टि से हम जो दोनों ही पक्षकारों के प्रतिनिधि हैं उनको आमंत्रित कर रहे हैं, वो आएं और आकर के हमसे वार्ता करें ताकि इसका

0: तरीके से समाधान निकाला जा सके।
1: और अब मौसम। राज्य में पिछले 2-3 दिनों में कई स्थानों पर हुई बारिश के बाद तापमान में काफी गिरावट आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान सर्वाधिक 39.3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान दौसा में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। विभाग ने आज से उत्तर पश्चिम भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इसके प्रभाव से आज राज्य के जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा, बीकानेर और जोधपुर संभाग के लगभग 33 जिलों में आंधी, तूफान और बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार इन क्षेत्रों में 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने, बिजली गिरने और कहीं कहीं मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान के बीच 14 सूत्रीय शांति समझौते पर वर्चुअल रूप से हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में कहा, AI की असली सफलता आम लोगों को सशक्त बनाने में है। राज्य में कर्मचारियों को पदोन्नति के लिए जरूरी सेवा अवधि या अनुभव में अब 2 वर्ष की छूट दी जाएगी। और प्रदेश में प्री मानसून गतिविधियां जारी, आज 6 संभागों में आंधी बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के और इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:10 हुए हैं, लीजिए सुनिए FM रेडियो पिंक सिटी।

0: गुरुवार होता है सबसे निराला, जब खुलता है इंफरटेनमेंट का पिटारा और होती है एक खास मुलाकात खुद जयपुर की अपने जयपुर के साथ। जयपुर के साथ सारे तेवर और सारे फ्लेवर। इट्स नाउ देन एंड फॉरएवर। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 9:12 और पूरे 26, 27, 28 सेकेंड 18 जून गुरुवार की ये सुबह। वेल ट्यून आपने किया है रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, जहां आपके साथ मैं हूँ बोले तो आज प्रीति। सुन रहे हैं आप गुलाबी नगरी की गुलाबी पहचान और केम छो हमारा जयपुर हमारी जान। गुड मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग्स, गुड मॉर्निंग्स। भाई देखिए, पूरे 12 बजे तक होगी हमारी और आपकी गल्ला शल्ला। मेलोडीज की ताल पर अपनी बोली का भी मचाएंगे जमकर हल्ला। और इससे पहले करते हैं सुबह सुबह की शुरुआत करते हुए ये खास बात कि मुस्कुराते हुए करें अपने दिन की शुरुआत, क्योंकि जो है वो आज है, अभी है। तो बस साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, क्योंकि मुस्कुराहटें बांटना हर जयपुरवासी की खास पहचान है। गुड मॉर्निंग्स जयपुर।

0: और बिल्कुल ऐसे ही नाचते गाते झूमने का मन कर रहा है कल से, क्योंकि
1: आप हैं आरजे प्रीति के साथ, प्रीति के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: लवली मॉर्निंग चिट चैट ओनली ऑन 100.3 एफएम रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: 9:17 और पूरे 8:09 रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम और वेल बूम रो, क्योंकि क्योंकि क्योंकि ऑल द मेसी फैंस मैसिवली हैप्पी हैं भाई, इसलिए क्योंकि जो डिफेंडिंग चैंपियन है अर्जेंटीना, उसने फीफा 2026 में अल्जीरिया को हराया 3-0 से, और मैच के जो तीनों गोल हैं वो ऑलमोस्ट सभी के बहुत बहुत प्यारे स्टार फुटबॉलर मैसी ने किए हैं। और नो, ये जो हैट्रिक है इसके साथ मेसी ने 10 रिकॉर्ड्स बनाए हैं। नाउ सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सबक उन सभी के लिए जो कहते हैं अरे अब उम्र हो गई है। देखिए फुटबॉल एक ऐसा खेल जिसमें फुर्ती, चुस्ती और हर वक्त सजगता वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, यानी कि मेंटल स्ट्रेंथ भी इतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फिजिकल। विथ एज कहते हैं, जो अमूमन कहा जाता है कि अरे ये कम होती है, बट यस मेसी देखिए, क्योंकि 38 years and 357 यस दिस इज़ द एज, इस उम्र में आपने वर्ल्ड कप में अपनी पहली हैट्रिक बनाई है, दैट इज़ आ रिकॉर्ड। इसके बाद 200 इंटरनेशनल मैच खेलने वाले आप फर्स्ट साउथ अमेरिकन मेल फुटबॉलर बन गए हैं। अर्जेंटीना के लिए वर्ल्ड कप में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी भी आप ही हैं और सबसे उम्रदराज खिलाड़ी भी आप ही हैं। सो व्हाट कोइंसिडेंस, या कहें कि कितनी मेहनत और कितनी शिद्दत, कितने पैशन के साथ अपने खेल को प्यार करना। वर्ल्ड कप में विद दिस हैट्रिक, वो जो कल हैट्रिक हुई अल्जीरिया के खिलाफ, मेसी के वर्ल्ड कप में है 16 गोल्स। यस, तो आपने मैक्सिमम गोल्स का जर्मनी के मिरोस्लाव क्लॉस का जो ऑल टाइम रिकॉर्ड था उसकी आपने बराबरी कर ली है। वर्ल्ड कप में आपके 24 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन हो गए हैं, 16 गोल और 8 असिस्ट, यानी कि महान फुटबॉलर पेले जिनके 21 गोल थे आपको आपने पीछे छोड़ दिया है। अलग अलग 6 वर्ल्ड कप खेलने वाले दुनिया के आप पहले खिलाड़ी हैं और 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में गोल करने वाले रोनाल्डो के बाद दूसरे, 5 वर्ल्ड कप में गोल करने वाले अर्जेंटीना के पहले खिलाड़ी। तो सोचिए 5 वर्ल्ड

कप जिनमें आपने गोल किया है, अर्जेंटीना के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं। गोल करने वाले अर्जेंटीना के लिए भी सबसे युवा और सबसे उम्र दराज खिलाड़ी हैं। किसी भी अफ्रीकी देश के खिलाफ ये आपकी पहली हैट्रिक है। एंड अल्जीरिया वर्ल्ड कप में मैसी के खिलाफ गोल खाने वाली 11वीं टीम है। सो व्हाट अ मैन एंड व्हाट अ, एक इतनी लंबी लंबी लंबी सी फेहरिस्त, तो दिल जो है ना मतलब बिल्कुल ऐसी तेजी से दौड़ रहा है कि बस सिर्फ कह ही सकते हैं कि रुक जाओ दिल दीवाने।

0: दुकान में बैठे हों या वॉक कर रहे हों, ऑफिस में हों या गाड़ी में या फिर सड़क पर, हर घर तक जिसने अपना प्यार बिखेरा, हर किचन से जिसकी आवाज है आती, वो कोई और नहीं, वो है आपका रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: Lovely morning chit chat only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 9:25 और पूरे 46 सेकंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और 18 जून गुरुवार की ये सुबह। सो सबसे पहले आपको 18 जून को लेकर दे देते हैं एक बड़ा अपडेट। देखिए, CBSE की तरफ से जो होती है वो होती है एक परीक्षा जिसे कहते हैं CTET, यानी कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। तो अगर किसी ने इसके लिए अप्लाई किया है, फॉर एग्जाम जो होगा वो होगा सितंबर 2026 में, लेकिन अगर किसी ने अप्लाई किया है और वो अपने जो उनका एप्लीकेशन फॉर्म है यानी कि जो आवेदन पत्र है वो चाहते हैं उसमें कुछ करेक्शन हो, तो बिल्कुल जी आपके पास टाइम है। 18 जून आज का जो दिन है, डेट इज़ द लास्ट डेट। तो CTET सितंबर 2026 में जो होगा उसका जो आवेदन पत्र है उसमें अगर आपको लगता है कि आपने वो फॉर्म फिल किया है और आपको लगता है कुछ करेक्शन करना है, तो टुडे इज़ द लास्ट डेट और ऑनलाइन संशोधन के लिए करेक्शन विंडो खोली हुई है। अगर आप इसमें इंटरेस्ट नहीं है तो बिल्कुल जी आप इंटरेस्टेड होंगे शॉपिंग में, और शॉपिंग के लिए बड़ा अच्छा सा मौका है, वो चल रहा है जवाहर कला केंद्र में। यस, जवाहर कला केंद्र की जो साउथ विंग है वहाँ चल रहा है स्वदेशी शिल्प उत्सव एग्जीबिशन। एंड यस, एक अमेजिंग वंडरफुल सा जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ शॉप करने पर मिलेगा। सो इट्स अ मस्ट विजिट, आप जा सकते हैं जनाब। और आगे आज के खास दिन से जुड़ी हुई बेहद खास हस्तियों की बात, साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट,
3: राहुल अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ,
2: पापा का कहना,
4: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू,
2: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना,
5: क्या यार इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ ठूसो,
2: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना,
6: अम्मू मत बना ले बाइक की चाबी, जाजी ले अपनी जिंदगी,
2: दोस्त का कांधा और सीक्रेट्स रखने का वादा।
7: एक बात बताऊं यार, किसी से कहेगी तो नहीं ना, पक्का पक्का ना,
2: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है, ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
8: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
9: शानदार गाने,
10: शानदार गाने।

आया है आपको सुनाने। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: lovely morning chit chat. Only on 100.3 FM Radio Pink City. Kuch to khas hai, kuch to baat hai.
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. वेल चलिए कुछ फेमस साउथ स्टार्स की अगर बात करें तो हमें याद आते हैं रजनीकांत एंड कमल हासन. और आज के दौर की अगर बात करें तो प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जिन्होंने एक ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग बनाई है पूरे भारत में ही नहीं भारत के बाहर भी. पुष्पा, RRR, KGF, ये ऐसी मूवीज़ हैं जो ज़बरदस्त फॉलोइंग रखती है. लेकिन इन बहुत सारे स्टार्स जो आज पॉपुलर हैं, इन सब के आने से पहले भी बीच में एक बेहद डैशिंग टैलेंटेड साउथ सिनेमा का सितारा आया था जिसने बहुत कम फिल्में करी. हिंदी में अगर हम बात करें, बॉलीवुड में अगर बात करें, लेकिन आप अपने बेहतरीन अभिनय के लिए और अपने दिलकश चेहरे के लिए आज भी जाने जाते हैं. वेल, आज हैप्पी वाला बर्थडे वो अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड द नेम इज़ अरविंद स्वामी, फेमस इंडियन एक्टर, डायरेक्टर एंड बिजनेसमैन. अरविंद का जन्म हुआ 18 जून 1970 को चेन्नई में. और शुरुआत आपने जो अपनी बॉलीवुड करियर की करी, वैसे आप बनना, मतलब आपके फादर चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, यस, लेकिन अरविंद इंटरेस्ट रखते थे एक्टिंग में. और अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत आपने करी मणि रत्नम साहब

से दिग्गज के साथ साल 1991 में एंड द फिल्म वॉज थलपति। आपको जो बात करें अगर लोकप्रियता, वो भी मणि सर की ही फिल्मों से मिली, द कल्ट क्लासिक्स रोजा एंड बॉम्बे। 1992 में आई रोजा और 95 में आई बॉम्बे। इन फिल्मों के लिए आपको नेशनल और स्टेट फिल्म अवार्ड्स भी मिले और हिंदी दर्शकों के बीच भी आप बेहद पॉपुलर हुए। इसके अलावा साउथ की जो फिल्में हैं उनमें उस दौर की जो खास रहीं, डेट वॉज इंदिरा और मिनसारा कनावू। इसके बाद बदकिस्मती से हुआ ये कि एक ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ एंड अरविंद को एक लंबा सेबेटिकल लेना पड़ा। लेकिन बाद में आपने 2013 में आई कादल और 2015 में आई थानू ओरुवन, इन फिल्मों से ज़बरदस्त वापसी करी। टेलीविज़न होस्ट के रूप में भी आप सक्रिय रह चुके हैं। सो वी विश अरविंद स्वामी अ वेरी हैप्पी बर्थडे एंड अ वेरी गुड हेल्थ। और अभी बॉम्बे फिल्म से ये वाला गाना। वेल, बॉम्बे जो मूवी है, मुझे लगता है बॉम्बे रोजा द सॉन्ग्स, मतलब समझ नहीं आता कौन सा चलाएं कौन सा चलाएं, बट दिस वन थोड़ी सी इसमें मस्ती भी है और म्यूजिक तो अमेजिंग। साथ रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ ही रखवा।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। यस, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, कुछ तो बात है।

0: Weekly Morning Chit Chat, only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: 9:51 और पूरे 20 सेकेंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM. और बात करूं अगर 18 जून की, तो आज डेथ एनिवर्सरी है संघर्षों की नींव पर उपलब्धियों की गाथा लिखने वाले उड़न सिख, जी हाँ, मिल्खा सिंह, भारत के महानतम ट्रैक और फील्ड एथलीट, जिन्हें प्यार से उड़न सिख यानी कि द फ्लाइंग सिख नाम दिया गया था. राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स में पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट. मिल्खा सिंह का जन्म जो हुआ वो हुआ बंटवारे से पहले वाले पाकिस्तान में 20 नवंबर 1929 को. विभाजन के दौरान आपको अपने माता पिता, अपने भाई बहनों की हत्या होते देखना और अपने देश को छोड़ने का, अपनी भूमि को छोड़ने का दंश भी झेलना पड़ा. आपके पिता के कहते हैं कि अंतिम शब्द थे भाग मिल्खा भाग, और इसीलिए आपकी जीवनी पर बनी फिल्म उसका टाइटल भी रखा गया भाग मिल्खा भाग. भारत जब वे आए तो शरणार्थी शिविरों में रहे और वहाँ पर भारतीय सेना में शामिल हुए. यहीं से आपकी दौड़ने की बाकी भी खोज हुई. कार्डिफ में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में 440 गज की दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर आपने इतिहास रच दिया. देन 1958 टोक्यो में 200 मीटर और 400 मीटर दोनों ही दौड़ में आपने स्वर्ण पदक जीता. इसके बाद 1962 जकार्ता के एशियाई खेलों में भी 2 स्वर्ण पदक आपने अपने नाम किए. 1956 मेलबर्न, 1960 रोम एंड 1964 टोक्यो ओलंपिक्स में भी आपने भारत का प्रतिनिधित्व किया. बात करें अगर फ्लाइंग सिख नाम की, तो 1960 में लाहौर में जो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ हुई उसमें आपने जिस तरह से दौड़ पूरी करी और पाकिस्तानी धावक अब्दुल खालिक को चुनौती दी, उस शानदार जीत के बाद तत्कालीन जो पाकिस्तानी राष्ट्रपति थे जनरल अयूब खान, उन्होंने उनकी गति से प्रभावित होकर उन्हें नाम दिया फ्लाइंग सिख. 1959 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक पद्मश्री से आपको सम्मानित किया गया. लंबे समय तक देश की सेवा करने के बाद और एथलेटिक्स में अपने बेहतरीन कंट्रीब्यूशन के बाद 91 साल की उम्र में आज ही के दिन साल 2021 में आप इस फानी दुनिया को अलविदा कह गए. लेकिन मिल्खा सिंह की जो दौड़ है वो हमेशा हर भारतीय एथलीट को प्रेरित करती रहेगी अपना बेस्ट देने के लिए.

0: मैं भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
1: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
0: तुम्हीं ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
1: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
2: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
3: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
4: बदलो बदलो आदत बदलो।
5: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
4: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: सुनिए, क्या आपने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
7: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
6: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो PM सूर्य घर .gov.in पर। हर घर

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: ये मुलाकात एक बहाना है।
3: शब्दों की मुलाकातें, गीतों की बरसातें, दिलो दिमाग को रखती है तरोताजा। 100.3 FM की ये सौगातें।
4: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई।
3: आपका साथी, आपका दोस्त, रेडियो पिंक सिटी, सुनिए रोज।
5: एक मुलाकात जरूरी है सनम।
3: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: जयपुर की है जान,
1: ओ मेरी जान।
0: जयपुर की है मुस्कान,
1: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
0: आप सभी के दिलों में बसने वाला चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, ये रिश्ता है हमारी शान।
1: तेरा मेरा रिश्ता पुराना।
2: 10:03 और पूरे 41:42 सेकेंड रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM गुरुवार की सुबह और 10 बजे का टाइम, जहां होता है एक बेहद खास रिश्ता। वेल, रिश्ता होता है दिमाग चलाने का, दिमाग के पेचों को थोड़ा सा कसने का, क्योंकि शुरू हो जाता है वो प्रोग्राम है जिसका नाम
0: मेलोडी क्वेस्ट, ओनली ऑन 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
3: आप हैं आरजे प्रीति के साथ, ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 10:04, वेलकम टू द शो मेलोडी क्वेस्ट। और मेलोडी क्वेस्ट, वेल, शुरू करते हैं प्रोग्राम, लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है सबसे ज़्यादा जानना प्रोग्राम की थीम। सो वेल, आज के जो थीम है, देखिए चल क्या रहा है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं। अब छुट्टियां हैं तो थोड़ा सा सैर सपाटा, घूमना फिरना बनता है, और अगर घूमने की सोचें तो या तो हमें ध्यान आते हैं कि चलिए किसी हिल स्टेशन पर चला जाए, या फिर याद आता है कि पानी, वो ठंडा ठंडा पानी, तो उस पानी में अगर आपको घूमना है तो आप क्या करेंगे, किसी बोट या शिप का सहारा लेंगे? सो वेल, बहुत सारे लोग मुझे लगता है शायद समझ गए, अगर नहीं तो देखिए ध्यान और कान दोनों लगा लीजिए मेरे जयपुर, क्योंकि आज मेलोडी क्वेस्ट की थीम है वो वाले बॉलीवुड सॉन्ग्स जो किसी बोट या शिप पर पिक्चराइज्ड है, यानी कि जो क्लूज मैं आपको दूंगी, जो एक्टर एक्ट्रेसेस होंगे वो बोट या शिप पर बैठे होंगे, या जो पूरा मतलब वो जो गाना होगा वो वहीं पर पिक्चराइज किया गया होगा। सो बोट और शिप वाले गाने, ये जो है ये मेन थीम है, इसके बाद एक्टर एक्ट्रेसेस क्लू के रूप में दिए जाएंगे। सो लगाइए ध्यान और लगाइए कान, एक गाना बिल्कुल आप सभी के लिए प्ले किया जाएगा, लेकिन उससे पहले क्लू। और बिल्कुल, क्योंकि शो की है शुरुआत, तो बिल्कुल वड्डा इजी सा जो क्लू है ना वो आपको दिया जाएगा। ये वाला गाना ऑफ कोर्स जैसा कि थीम है बोट पर पिक्चराइज्ड है। इस गाने में नज़र आए हैं अमिताभ बच्चन और जीनत अमान। अमिताभ और जीनत अमान पर पिक्चराइज्ड, बोट पर पिक्चराइज्ड गाना आपको है मुझे बताना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फ़ोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, ये है FB पेज, इस पेज पर जाइए, और जो लेटेस्ट अपडेट है, यानी कि वो अपडेट जहाँ पे मेलोडी क्वेस्ट प्रोग्राम की तमाम डिटेल्स दी हुई है, वहाँ जाकर कॉमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिख कर भेज दीजिए। तो बता दीजिए मुझे वो गाना जो बोट पे पिक्चराइज्ड है और नज़र आए हैं अमिताभ बच्चन एंड जीनत अमान। और अभी बोट वाला गाना एक बेहतरीन सा जो सबके जहन में आता है, एवरग्रीन वाला, आप सभी के लिए।

रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और आज मेलेडी क्वेस्ट में वो वाले गाने जो पिक्चराइज्ड है किसी बोट या शिप पर, और हमने आपसे पूछा था कि वो गाना जो पिक्चराइज्ड है अमिताभ बच्चन एंड जीनत, एंड द सॉन्ग इज दो लफ्जों की है दिल की कहानी। सो ये एवरग्रीन सा नंबर आप सभी के लिए प्ले होगा, लेकिन उससे पहले नाम जिन्होंने दिए हैं बिल्कुल सही सही जवाब। सो सही जवाब के साथ हमसे जुड़ी हैं प्रीति नितिन अग्रवाल और पुष्पा दिल्लीवाल जी सोडाला से। प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर। सीटू सैनी ने दिया है हमें बिल्कुल सही सही जवाब। रेणु गोविल नवीन अग्रवाल वैशाली नगर से। अकरम मलिक ईदगा पंचनीम, आई थिंक दिस इज द राइट थिंग डेट आई हैव सीन। तैमूर खान अकरम मलिक ईदगा पंचनीम से, आपका जवाब बिल्कुल ठीक। और छोटीलाल महावर ने दिया बिल्कुल सही जवाब। अंकित शामनगर से जुड़े हैं सही जवाब के साथ। मनोज कुमार सोनी फ्रॉम झोटवाड़ा और विथ राइट आंसर आई हैव ममता लखुटिया रामनगर सोडाला से, आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब। शशांक ख्याति एंड लविशा विद द राइट आंसर। रानू पाटनी जी का जवाब है बिल्कुल ठीक। एंड मोहम्मद तहसीम अंसारी ने दिया बिल्कुल सही जवाब। अनुराधा शर्मा जी का जवाब बिल्कुल ठीक। संगीता कंवर हमसे जुड़ी हैं वैशाली नगर से सही जवाब के साथ। अशोक कनौजिया त्रिवेणी नगर से हमसे जुड़े सही जवाब के साथ। पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर। महेश मोरवाल विनोद मोरवाल राजू सीताराम खेमचंद गुलाबचंद सुनील दीपू कोठी कोलियान से, आप सभी का जवाब बिल्कुल ठीक। प्रवीण चौहान जुड़े हैं विद द राइट आंसर। मोहम्मद रिया सोनू शफीक अल्फेज जवाहर नगर से, आपने दिया सही जवाब। महेश जांगिड़ फ्रॉम झोटवाड़ा। महबूब चौहान जी का जवाब है बिल्कुल ठीक। एंड देन पूरन सिंह नरुका हीरापुरा से हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ। रजत गहलोत ने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब। और राज छीपा लोकेश मोनू पवन सैनी प्रतीक गोविंद सैनी नारगर किले के नीचे छीपों की बगीचे के पास से, आप सभी का जवाब है बिल्कुल ठीक। एंड देन छुट्टन का जवाब है बिल्कुल ठीक। शंकर जैन जौहरी बाजार से हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ। सही जवाब देने वालों में है माही शर्मा, आपने दिया बिल्कुल सही जवाब। सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर, एंड सुनीता जी कहती हैं कि आज हम नाव में सैर करेंगे। बिल्कुल देखिए रेडियो हम सुन रहे हैं और नाव या शिप की सैर कर रहे हैं। नरेश कुमार राज लालकोठी से हमसे जुड़े हैं सही जवाब से। हरीश कुमार जी ने सही जवाब दिया है बाईस गोदाम से। रेखा कोहली जी हमसे जुड़ी हैं बेनार्ड रोड से। ज्योति जी ने सही जवाब दिया चित्रकूट से। किरण शर्मा फ्रॉम मानसरोवर। माही शर्मा विद द राइट आंसर। एंड पूजा शर्मा पुरानी चुंगी से, आपका जवाब बिल्कुल ठीक। विमला गुगलानी जी विद द राइट आंसर। बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडो का रास्ता। वशिष्ठ सिंह भी विद द राइट आंसर। कन्हैया लाल कुमावत एंड जानकी कुमावत भिंडो का रास्ता से ही, आपका जवाब बिल्कुल ठीक। हेमंत महावर फ्रॉम गंगापोल। पीडी सिंह बनी पार्क से, आपने दिया बिल्कुल सही जवाब। एंड बबली हमसे जुड़ी मानसरोवर से विद द राइट आंसर। सो अभी तक यही

इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए। और अभी दो लफ्जों की है दिल की कहानी, आशा जी की बेहतरीन सी आवाज़।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

0: Quest. Only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट. और मेलेडी क्वेस्ट में आज बोट या शिप वाले गाने. और आपसे पूछा था बोट या शिप पर पिक्चराइज्ड गाना जिसमें नजर आए हैं ऋतिक रोशन एंड अमीषा पटेल. एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी कहो ना प्यार है. प्यार की कश्ती में, बिल्कुल गाने में कश्ती आ रही है. सो वेल, कश्ती की बात करता हुआ ये गाना जिन्होंने है सही पहचाना, उसमें नाम शामिल है प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर, पुष्पा दिल्लीवाल फ्रॉम सोडाला, संगीता अग्रवाल जी फ्रॉम गुजर की थड़ी, एंड अशोक खत्री ब्यावर वाले केसर चौराया मानसरोवर से. एंड देन वी हैव ममता लखोटिया रामनगर सोडाला से विथ राइट आंसर. देन वी हैव मीनू ने दिया हमें बिल्कुल सही सही जवाब. मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से हमसे जुड़ी हैं बिल्कुल सही सही जवाब के साथ. एंड हनी भाटिया आपने दिया है बिल्कुल सही सही जवाब. और हेमंत महावर गंगापोल से हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ. रेणु गोविल वैशाली नगर से हमसे जुड़ी सही जवाब के साथ. मनोज कुमार सोनी झोटवाड़ा से आपका जवाब बिल्कुल ठीक. अंकित फ्रॉम विवेक विहार कॉलोनी, अंकित ने विवेक विहार कॉलोनी लिखा है. एंड अर्लियर आपने लिखा था श्याम नगर, तो अंकित अब विवेक विहार बोलना है कि श्याम नगर, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा. और सही जवाब जिन्होंने दिया है कहो ना प्यार है इस फिल्म का, जिन्होंने बताया है सही, विवेक कुमावत इंदिरा वर्मा कॉलोनी, इंदिरा वर्मा शास्त्री नगर से आपका जवाब बिल्कुल ठीक. प्रवीण चौहान विद द राइट आंसर. राज छीपा, लोकेश, मोनू, पवन सैनी, प्रतीक, गोविंद सैनी नारगढ़ किले के नीचे छीपों की बगीची के पास से आपने दिया सही जवाब. रामकिशोर, संजय, अजय, कोमल गुड्डी, कविता कुमावत फ्रॉम कालवाड़, अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर, अमित कुमार नामा नर्सिंग कॉलोनी पुरानी बस्ती से आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. संगीता कंवर फ्रॉम वैशाली नगर, बनवारी लाल जांगिड़ जी शिवाड़ से जुड़े हैं विद द राइट आंसर, मोहम्मद रिया, सोनू, शफीक, अल्फेज जवाहर नगर से, एंड मोहम्मद तहसीम अंसारी विद राइट आंसर, महेश जांगिड़ जी छोटवाड़ा से विद राइट आंसर, नरेश कुमार राज लालकोठी से जुड़े हैं, पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर, विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम, खेमचंद, गुलाबचंद, सुनील, दीपू कोठी कोलियान से, एंड जयप्रकाश वर्मा NC2 सैनी उदयपुरिया गांव से जुड़े विथ राइट आंसर, महबूब चौहान ने दिया सही जवाब, घनश्याम हीरानी जी फ्रॉम हीरापुरा, सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर. एंड देन वी हैव हरीश जी बाईस गोदाम से सही जवाब के साथ, हेमंत महावर गंगापोल से, मोती सिंह जी का जवाब है बिल्कुल ठीक, विक्रम बाजवा जी ने दिया है बिल्कुल सही जवाब, बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडों का रास्ता, जया चौकसी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. एंड देन लता खंडेलवाल विद द राइट आंसर, ममता माहेश्वरी जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद आरिफ एंड मोहम्मद इमदाद पुरानी बस्ती से हमसे जुड़े हैं विद द राइट आंसर, शंकर जैन जौहरी बाजार से आपका जवाब बिल्कुल ठीक, प्रीति मुराडिया शंकर नगर से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ, शशि बेनीवाल जी फ्रॉम नाड़ी का फाटक, रिजवान एंड खुशबू आपका जवाब बिल्कुल ठीक, शशि कुमार जी फ्रॉम कोठी कोलियान, लीना राजावत विद द राइट आंसर, नानक ने दिया हमें सही जवाब, रोशन अवस्थी जुड़े विद राइट आंसर, रुद्राक्षी शर्मा नारदपुरा से आपका जवाब बिल्कुल ठीक, गजानन कुमावत जी विद द राइट आंसर, बिंदु ने दिया हमें सही जवाब, छोटी चौपड़ से जुड़ी हैं बिंदु विद द राइट आंसर, पूजा शर्मा एंड प्रमोद शर्मा पुरानी चुंगी से आप दोनों का जवाब है बिल्कुल ठीक. तो अभी तक यही लोग हैं जिनका जवाब हमें मिला है, और आपका जवाब जैसे ही मिलेगा बिल्कुल हम शामिल करेंगे सही जवाब, लेकिन वो पहले आया हुआ होना चाहिए. सो वेल, अब अगला जो क्लू है वो आप सभी को दे दिया जाए. ये वाला जो गाना है ये बोट या शिप उस पर पिक्चराइज्ड है, ठीक है. एंड ये गाना बड़ा ही एवरग्रीन ओल्डी गोल्डी सा सॉन्ग है. दिस सॉन्ग इज पिक्चराइज्ड ऑन मीना कुमारी एंड राजकुमार. अब देखिए, मीना कुमारी और राजकुमार साथ में नजर आए नादिरा और बहुत सारे कलाकार, और वो जो सॉन्ग था अजीब दास्तां है ये हम ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं, तो इसलिए किसी को भी ऑड वन आउट नहीं खेलना है. अब ये जो गाना है ये बोट पर ही पिक्चराइज्ड है, लेकिन इस गाने में नजर आए हैं सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी एंड राजकुमार. अब आपको बताना है ये गाना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए। और जब तक चला रहे हैं दिमाग, जरा प्यार की कश्ती में सैर कीजिए। बोट वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है ओनली ऑन मीना कुमारी और राजकुमार।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्यालय नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुल ओरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और 1 मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: जय हिंद। पिछले 1 दशक में आपने एक बदलाव नोटिस किया? अब भारत आतंकवाद की जड़ों पर कड़ा प्रहार करने लगा है। नक्सलवाद को तो खत्म ही कर दिया है। डिफेंस के हथियार पहले हम बाहर से मंगाते थे, अब रिकॉर्ड नंबर में एक्सपोर्ट करते हैं। अब भारत चुप नहीं रहता, अब नहीं सहता।
4: हमें गर्व है कि पिछले 1 दशक से हमारी सेनाएं तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
5: आप हैं आरजे प्रीटी के साथ, प्रीटी के साथ, ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
6: Melody Quest, only on 100.3 FM, Radio Pink City। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
7: वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट। और मेलेडी क्वेस्ट में हमने आपसे पूछा था कि बोट पर पिक्चराइज्ड गाना जिसमें नज़र आए हैं मीना कुमारी एंड राजकुमार, और इसीलिए मैंने जो पहला सॉन्ग लिया था दैट इज़ फ्रॉम द मूवी दिल अपना और प्रीत पराई, क्योंकि इसमें भी ये दोनों ही कलाकार नज़र आए थे। लेकिन हमने आपको हिंट दिया कि सिर्फ और सिर्फ मीना कुमारी और राजकुमार। वेल, सीटू सहनी जी हमें कहते हैं कि मैम आपने हिंट दिया लेकिन हम सही जवाब तक नहीं पहुँच पाए। कोई नहीं जी, दिमाग को चलाते रहना है तो क्या है कि चलता ही रहता है। कोई ना, कोशिश करते रहनी चाहिए, है ना। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। सो राइट आंसर है पाकीज़ा, और पाकीज़ा फिल्म का गीत चलो दिलदार चलो। तो अब वो तमाम लोग जिन्होंने

गलत जवाब दिए हैं वो बिल्कुल अगले गाने के लिए अपनी कमर कस लें। चलिए सही जवाब के साथ जो हमसे जुड़े हैं, मोहम्मद रियाज, सोनू, शफीक, अल्फेज, जवाहर नगर, जयपुर से आप सभी ने दिया हमें बिल्कुल सही सही जवाब। पाकिजा फिल्म का गाना चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। विजय सिंह चौधरी, दिव्या पटोदिया और गौतम तंवर, आप तीनों नारायण विहार से हमसे जुड़े हैं विद द राइट आंसर। सुशीला दत्ता जी बनी पार्क से हमसे जुड़ी हैं विद राइट आंसर। रोहित गंगवाल ने दिया हमें बिल्कुल सही सही जवाब। तुलसी महावर जी का जवाब है बिल्कुल ठीक। ममता लखोटिया रामनगर सोडाला से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। और दिलशाद हुसैन ने दिया हमें बिल्कुल सही सही जवाब। अश्विनी माथुर, अश्विनी राजवंशी, जगदम्बा नगर, जयपुर से आपने दिया बिल्कुल सही जवाब। एंड विथ द राइट आंसर आई हैव शंकर जैन जौहरी बाजार से, आपका जवाब बिल्कुल ठीक। अब्दुल ने दिया है हमें बिल्कुल सही सही जवाब। पिया चतुर्वेदी हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। और गलत आंसर भी बहुत सारे लोगों ने हमें दे दिया है जबकि हमने बता दिया था कि दिल अपना और प्रीत पराई इसका गाना नहीं है। और कुछ लोगों ने यह भी लिखा है कि राजकुमार और मीना कुमारी, लेकिन मूवी नहीं पता, तो वो तो आपको पता करनी पड़ेगी। मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा, सुशांत सिटी से हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ। महेश जांगिड़ जी फ्रॉम झोटवाड़ा, महबूब चौहान चार दरवाजा से विथ राइट आंसर, नरेश कुमार राज लालकोठी से विथ राइट आंसर, महेश मोरवाल, विनोद मोरवाल, राजू, सीताराम, खेमचंद, दुराबचंद, सुनील, दीपू, कोठी कोलियान से सही जवाब के साथ, सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकतनगर, अशोक कनौजिया जी त्रिवेणी नगर से हमसे जुड़े सही जवाब के साथ, प्रीति नितिन अग्रवाल फ्रॉम मालवी नगर, संगीता कंवर जी फ्रॉम वैशाली नगर, रेणु और प्रवीण चौहान जी ने दिया बिल्कुल सही जवाब, मोहम्मद तहसीम अंसारी विथ राइट आंसर, पुष्पा दिल्लीवाल सोडाला से विथ द राइट आंसर, एंड विथ राइट आंसर आई हैव अब्दुल जिन्होंने दिया सही जवाब। फिरदौस का जवाब है बिल्कुल ठीक। लखन हमसे जुड़े सही जवाब के साथ। मधु शर्मा भिंडों के रास्ते से विथ द राइट आंसर, पूजा शर्मा जी ने दिया बिल्कुल सही सही जवाब, एंड गजानन कुमावत हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ। देन रोशन अवस्थी आपका जवाब है बिल्कुल ठीक। एंड वी हैव रिजवान विद द राइट आंसर, लीना राजावत विद द राइट आंसर, और यही लोग हैं अभी तक जो सही जवाब के साथ मुझे मिले हैं। और इतने बड़े हिंट के बाद भी बहुत सारे लोगों ने मुझे वही गलत जवाब दे दिया। एनीवेज कोई नहीं, थोड़ा सा मुश्किल हो गया है आई थिंक। तो चलिए अब एक अगला ओल्डी गोल्डी सा सॉन्ग आपको दे देते हैं और मैक्सिमम लोग मुझे लगता है इसे पहचान जाएंगे, है ना। थोड़ा सा डिफिकल्ट के बाद ईजी तो बनता है। तो पाकिजा फिल्म का गाना आपके लिए प्ले किया जाएगा, लेकिन अगला क्लू तो देखिए लगाना क्या है। लगाना है ध्यान और लगाना है कान। ये गाना ऑफ कोर्स बोट पर पिक्चराइज्ड है। इस गाने में नजर आए हैं एवरग्रीन, शम्मी कपूर साहब एंड शर्मिला टैगोर। तो शर्मिला टैगोर एंड शम्मी कपूर पर पिक्चराइज्ड बोट वाला गाना आपको है हमें बताना। और बताने के लिए जाने जाना आपके पास हमारी फोन लाइंस 2200800। इसके अलावा हमारे एफबी पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल साथ में फिल्म का नाम दोनों हमें लिखकर भेज दीजिए। तो शर्मिला टैगोर एंड शम्मी कपूर पर पिक्चराइज्ड बोट वाला गाना अब है आपको हमें बताना।

0: Melody Quest. Only on 100.3 FM Radio Pink City. कुछ तो खास है, कुछ तो बात है.
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, वेलकम टू द शो मेलेडी क्वेस्ट. और आज मेलेडी क्वेस्ट में वो वाले गाने जो पिक्चराइज्ड हैं बोट या फिर शिप पर. और हमने आपसे पूछा था बोट वाला गाना जो पिक्चराइज्ड है शर्मिला टैगोर एंड शमी कपूर पर. एंड द सॉन्ग इज फ्रॉम द मूवी कश्मीर की गली, ये चांद सा रोशन चेहरा. तो ये गाना जिन्होंने है सही पहचाना, वेल मुझे लगा था कि ये काफ़ी ईजी वाला मैंने जो क्लू है वो आप सभी को दिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी भी बहुत सारे गलत जवाब मुझे दिए हैं. सो वेल, जिन्होंने सही है गाना पहचाना उनमें जिनके नाम शामिल होते हैं, शंकर जैन जौहरी बाजार से हमसे जुड़े सही जवाब के साथ, घनश्याम हीरानी जी हीरापुरा से हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ, सुनीता झालानी जी फ्रॉम बरकत नगर, रिजवान एंड तौफिक विद द राइट आंसर, महबूब चौहान चार दरवाजा से सही जवाब के साथ, एंड सीटू सैनी हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ. वेल सीटू जी, आपने सिर्फ फिल्म सही बताई है, सॉन्ग है तारीफ करूं क्या उसकी. महेश जांगिड़ जी झोटवाड़ा से हमसे जुड़े हैं सही जवाब के साथ, पुष्पा दिल्लीवाल जी ने हमें दिया है सही जवाब, एंड महेश मोरवाल, विनोद मोरवाल, राजू मोरवाल, सीताराम मोरवाल, खेमचंद मोरवाल, गुलाबचंद, सुनील दीपू कोठी कोलियान से आपने दिया हमें सही जवाब, एंड इवनिंग

इन पेरिस, आसमान से आया फरिश्ता. सो विवेक कुमावत, शास्त्री नगर, जयपुर से आपका जवाब है बिल्कुल ठीक एंड राइट आंसर के साथ जो हमसे जुड़े हैं. नरेश कुमार राज लालकोठी से हमसे जुड़े सही जवाब के साथ. देखिए, बहुत सारे लोगों ने कश्मीर की कली फिल्म तो लिखी है, लेकिन कश्मीर की कली फिल्म का वो वाला गीत जो बोट पर पिक्चराइज्ड है वो आपको हमें बताना था. अशोक कनौजिया जी फ्रॉम त्रिवेणी नगर विद द राइट आंसर. संगीता अग्रवाल गुजर की थड़ी से विथ राइट आंसर. देंड ख्याति, शशांक ख्याति एंड लविशा, आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. प्रीति नितिन अग्रवाल विद राइट आंसर. अंकित विवेक विहार सोडाला से विद राइट आंसर. संगीता कंवर वैशाली नगर से विद राइट आंसर. पंकज अरोड़ा फ्रॉम जनता स्टोर. देन रेणु गोविल नवीन वैशाली नगर से विद राइट आंसर. प्रवीण चौहान जी का जवाब बिल्कुल ठीक. पंकज अरोड़ा जी कहते हैं कि आपके बोलते ही ट्रैफिक जैम हो जाता है. सो ये तो, और विथ राइट आंसर जो हमसे जुड़े हैं, गरिमा भांबू एंड मेघा दयाल, आप दोनों ने दिया बिल्कुल सही जवाब. विजय सिंह चौधरी, दिव्या पटोदिया एंड गौतम तवर, आप तीनों का जवाब बिल्कुल ठीक. शशि बेनीवाल नाड़ी का फाटक से हमसे जुड़ी हैं विथ राइट आंसर. देन दिलनाज का जवाब है बिल्कुल ठीक. बाबू लक्ष्मीकांत शर्मा फ्रॉम भिंडों का रास्ता. ममता लखोटिया रामनगर सोडाला से जुड़ी हैं सही जवाब के साथ. चंद्रकांता मेघवाल ने दिया बिल्कुल सही जवाब. अरुण सिंह, आपका जवाब है बिल्कुल ठीक. सुशीला दत्ता जी बनी पार्क से हमसे जुड़ी हैं सही जवाब के साथ. देन पूनम शर्मा और एक विला से हमसे जुड़ी बिल्कुल सही जवाब के साथ. पीडी सिंह, आपने दिया हमें बिल्कुल सही जवाब. माही शर्मा हमसे जुड़ी विद राइट आंसर. किरण शर्मा मानसरोवर से विद राइट आंसर. मधु सिन्हा, स्मृति सिन्हा सुशांत सिटी से, आपने दिया बिल्कुल सही जवाब. एंड सुनीता झालानी जी हमसे जुड़ी विद द राइट आंसर. और सुनीता जी के लिए आज ये चॉइस कनेक्शन हो गया है, क्योंकि ये उनकी फेवरेट गाने जो हैं वो आज यहाँ पर प्ले हो गए हैं. सो कश्मीर की कली फिल्म का गाना आप सबके लिए प्ले किया जाएगा, लेकिन अगला क्लू आप सबको दे दिया जाए. एंड आई होप कि अब ये जो क्लू मैं दूंगी इसके साथ कोई कन्फ्यूजिया नहीं जाएगा. ये गाना पिक्चराइज्ड है शिप के ऊपर, और इस गाने में नजर आए हैं बहुत सारे एक्टर्स, राइट? तो ध्यान और कान दोनों लगाना है मेरे जयपुर. शिप पर पिक्चराइज्ड वो गाना आपको है मुझे बताना जो पिक्चराइज्ड है रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, अनिल कपूर एंड शेफाली शाह पर. रणवीर सिंह, प्रियंका चोपड़ा, फरहान अख्तर, अनिल कपूर एंड शेफाली शाह इस गाने में नजर आए हैं. ये गाना पिक्चराइज्ड है शिप पर. तो ये गाना आपको है मुझे बताना, और बताने के लिए जाने जाना आपके पास है हमारी फोन लाइंस 2200800. इसके अलावा हमारा FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, इस पेज पर जाइए और जो लेटेस्ट पोस्ट है वहां जाकर कमेंट सेक्शन में गाने के बोल और फिल्म का नाम दोनों आप हमें लिखकर भेज दीजिए.

0: और शिमला का खुशनुमा एहसास है। पंछियों से बरसों की दोस्ती है मेरी, वन्य जीवों से सदियों का याराना है। मैं हूँ कुदरती खूबसूरती का छुपा हुआ खजाना। मेरी लहरें मौसम की मोहताज नहीं है, राजा हूँ पर सिर पर कोई ताज नहीं है। हर रंग में भरपूर हूँ, बेहिसाब हूँ, मैं जयपुर का सागर तालाब हूँ।
1: 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: 11:04 और पूरा 2-3-4 सेकेंड्स रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और गुरुवार की हो सुबह और 11 बजा को टीम तो फिर यो टीम हो छे कुणको आपनी बोली आपने गीता को
3: ते सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माले काई तो खास छे और काई तो बात छे।
2: 11:04 शो शुरू होगो चटकीलो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। और रंगीलो राजस्थान जी को बड़ो ही खास छे खान पान, बड़ी ही खास छे बोली, बड़ो ही खास छे पहनावो। तो भाई राजस्थान की जब बात करा छा तो लोग अँ कहे छे कि रंगीलो, क्योंकि मने लागे छे राजस्थान का खाना में, पहनावा में, जगह में, हर चीज़ में अतरा रंग घुलेड़ा छे कि जब राजस्थान को नाम ले तो सारा सतरंगा जो रंग छे ने वे आँख्या में तैरबा लाग जा छे। और आँख्या में जो तैरे छे वो होवे छे वे खास दिन जो माने बिल्कुल एक अलग ही दुनिया में ले जा छे। और वे दिन होवे छे बचपन का दिन, गर्मी की छुट्टियां का दिन। भाई देखो पिछली बार में बात करे बचपन का दिना की और बचपन की बड़ी खास खास बचपन का खेला की करे बात। तो बचपन में देखो खेल ही कौन हो, बचपन में कहीं हो चाहे। और आज तो फिर भी बचपन अशो होगो कि टाबरा ने टेम ही कौन है, क्योंकि बेचारा कहीं करे कि कदर ट्यूशन जा रहा है, कदी क्लासा में जा रहा है और माथो उठाबो कोई टेम कौन मिले। लेकिन गर्मी की जो छुट्टियां छे है ना, ये उंधाड़ा का जो दिन आ छे या उंधाड़ा का दिन में हो रही छे कि बस सबने लागे छे कि चलो थोड़ा सा बहुत ठाला छा। और टाबर तो खास तौर पे ठाला हो जा छे। अब अगर ठाला होगा तो ई ठाला काइम ने, यानी कि ई गर्मी की छुट्टियां ने कया बितावा। देखो पहली कहीं छे मैं गर्मी की छुट्टियां बड़ा ठाट से बिताया। अब बचपन में करियो गर्मी की छुट्टियां में करेड़ो या वहां भी करेड़ो कोई सैर सपाटो, यानी कि कोई ऐसी सैर, कोई ऐसी पिकनिक, कोई ऐसी यात्रा जो आज भी जब थे आँखियाँ मूंदो तो आँखियाँ के आगे तैर जा छे, थाका दिल ने उनकी याद ही खुश कर दे छे। तो बिल्कुल अशी हो कोई यात्रा, अशी कोई सैर, अशी कोई पिकनिक जो ते करया हो दोस्ता के साथ स्कूल में, मतलब दोस्ता के साथ गया हो, ये फिर बाद में कदे गया हो या परिवार वाला के साथ कोड़े गया हो, कोर्स की भी यात्रा हो, वह जयपुर की जयपुर में भी हो सके छे, जयपुर का बाहर ने भी हो सके छे। लेकिन अशी बहुत सारी यात्रा, बहुत सारी सैर हो छे जो जद भी करा तो वत जद छा, लेकिन मने यहाँ लागे छे कि जद भी याद करा छा तो बस वह सैर आके आके आगे घूमे छे। तो अगर छे कोई ऐसी याद तो ते साझा कर सको जो माँ की साथ। साझा करबा के लिए माँ की फोन लाइन 2200-800 और माँ को FB पे रिपिंग सिटी 100.3 FM। तो गर्मी की छुट्टी हो या कोई और छुट्टी हो, कोई अशी हो सैर, कोई अशी यात्रा, कोई अशी पिकनिक जो था के लिए बन गई हो यादगार, तो ते साझा कर सको छो माँ की साथ। माँ का नंबर 2200-800 अभी कन्फ्यूज़ ना कर रहे हमें था ने। और देखो नंबर छे 2200-800 और माँ को FB पेज रेडविंग सिटी 100.3 FM।

0: बिल्कुल जी, थासू माने प्रीत गणी। ये तुम्हें जाना छा कि था सब ने प्रीत छे अपनी बोली से, अपना प्रदेश से, रेडियो पिंक सिटी से। लेकिन बचपन की अशी कशी यात्रा से सैर छे जी से था ने छे प्रीत बताबा के लिए देखा छा कौन छे अपनी साथ। हेलो
1: जी, मैं कैलाश चंद्र कंबल बोल रहा हूँ।

0: कैलाश चंद्र कमल जी कोड़े से बोल रहे छो?
1: जी मैं जयपुर विद्याधर नगर बोल रहा हूँ।
0: अच्छा तो बताओ जी, कई कशी यात्रा कशी शहर की बात बताना चाहो छो?
1: जी मैं भूतागो बाणगढ़ और आगे भूतागो बाणगढ़ है ना?
0: बिल्कुल अलवर का है,
1: बैठागी अलवर का है। और शिल्ली साइड बैठागी बाद में चार पांच जना दोस्त मिल और कुल्ला हुड की जीप ले गया।
0: ओहो, और कशा मौसम में गया था? कशा कशा मौसम में गया था?
1: बरसात का मजे।
0: हाँ जी काई बात है, मैंने तो सुना नहीं मजो आगो।
1: तो बटे बटे नारा वाला खूब बह रहा है और बटे में चार पांच जना रुकन बटे मना कर मिले कि हमें कछुआ ने मत पकड़ियो।
0: अच्छा,
1: पर फिर भी माने एक दो बहुत बड़ो कछुआ मिल गो। तो एक दोस्त है यार आने अपन ले चला, कोई कह नहीं यार अपन कौन ले चला। तुम माँ का आपस में यहाँ माता पड़ी होती रही थोड़ी बी यार गड़बड़ बजा ली, अपन को पकड़ ले लो ना तो आपने खामा खाई इंसर्ट के अलावा अपन और कुछ दुख भोग पड़ी।
0: हाँ सही बात है, पिकनिक पे ही लिया जा रहा था कि चुकी चुकी याद ले रहा ला, लेकिन वहाँ की जगह कोई और गड़बड़ हो ली, फिर कुण की चाली।
1: अपन नारायणी माता की भी चाल रोज है, बटे भी बहुत अच्छे बारिश का मौसम दे रहे, नाला बह रहा है। तो अपन प्रोग्राम नहीं करा कि आपने खुली उठ के जीप में इन्हें कटे रख क्या?
0: हाँ बिल्कुल, यह बात भी सही है।
1: तो आपस में मैं थोड़ा लड़ता रहा, थोड़ी बहुत देर पानी में खेलता रहा और फिर फोन मान्या तो फिर एक जवान भी साइड करो कि नहीं कौन ले चला।
0: अच्छा
1: तो सर्वसम्मत तो वो बहुत बड़े कछु हो, बहुत बहुत अच्छो लगे छो।
0: अच्छा
1: मैंने खूब खिलाता रहा मैं और बाद में बटे छोड़ पानी में और फिर आगे नारायण माता के चला गया था। तो हाँ। आज भी बात याद आवे तो मैंने सोचा था पांच छह जना मिला, चार जना कहते अरे यार तू तो मना करी थे, तू कौन ले आयो, ले आता तो अच्छा रहे। तो
0: यानी कि ऊ यात्रा पे ऊ कछुआ की याद था से कौन जावे। तो कमल जी था को बहुत बहुत धन्यवाद। देखो थे भी करया हो कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसी सैर, कोई ऐसी पिकनिक, वे दोस्ता के साथ भी हो सके छे, वहाँ घर का के साथ भी हो सके छे, कशी भी हो सके छे, लेकिन ऊ की याद ऊ में हुई हो कोई ऐसी बात कि हाँ आज भी याद आ छे और बस चेहरा पे मुस्कान आ जा चाहे, है ना। तो थे साझा कर सको जो माँ की साथ, साझा करवा के लिए तो माँ का नंबर 2200 800 और माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। हेलो
2: हेलो
0: हेलो, हाँ जी नमस्कार।
2: नमस्कार जी,
0: कौन बोल रहे हो चे?
2: शंकर जैन बोलू।
0: हाँ जी शंकर जी बताओ, कोड़े गया था घूमबा?
2: मैं तो घूमबा सब जगह जाओ थे यार दोस्त, रामगढ़ में भी जाओ जा, इनके गोटा करे जा।
0: मारी बात सुनो, थे खाली घूम अच्छा कि काम भी करे छे कहीं?
2: काम भी करे जा, काम के है कौन सा काम बिना तो चाले को ना।
0: अच्छा तो चलो कशी शहर छे जी की थे बात बताओ पूछौला।
2: देखो माँ की शहर तो पिक्चर की ही
0: है। अच्छा बताओ बताओ
2: पिक्चर की। मैं देखबा गया जा सुहाग फिल्म अंबर सिनेमा में लागी थी। पहला दिन पहले शो गया मगर बड़ा भाई साहब थे वहाँ से, डर भी बहुत लागत थे। स्कूल से पार और गया।
0: ओहो
2: कहीं हो माँ को एक दोस्त आ रहे शिकायत कर दी भाई साहब ने।
0: अच्छा
2: साहब आज तो था भाई उनने भेजे। तो फिर मगर भाई साहब उनके पहुंच गया।
0: अरे
2: चार पांच यार दोस्त क्या। अब जो पिक्चर एंडी बाहर निकलिया तो बात करता हूँ आ रहे जे यार वो अमिताभ बच्चन को ही और वो शशि कपूर को ही हो और भाई साहब की आवाज आई। तो भाई शंकर तो मैं एकदम से उंडे की उंडा एकदम खड़ो रह गयो। मैं क्या भाई साहब की आवाज पड़ रही तो साहब उंडा सही एक दो तो उंडे पड़ गई। बोले भाई अब वो तो डर तो ऐसे लागो जो कोई दूध बदल गया मैं तो खड़ा खड़ा उंडा।
0: अच्छा एक बात बताओ शंकर जी, फिर ऊ बायला के साथ काई करया थे जो था कि शिकायत करियो जो? भाई मने लागे छे लेकिन असली दोस्त अशाही होय छे, वे देखो काई छे हर मुश्किल से बचा भी ले छे हर मुश्किल में फसावे भी वही छे, है ना।
2: नहीं नहीं वो काई छे मजाक में ही है कर ली उनो पत्तो थोड़ी जो होलो मारो भाई साहब से काई छे मैं बचपन में बहुत डरे जा।
0: देखो यह सबसे अच्छी बात छे, है ना। पहली मने लागे छे बिल्कुल की हाँ अगर बड़ा छे तो आंख्या कोई डर हो जो।
2: हाँ और आजकल ऐसे काई होने आज को जमाना ही खराब हो गया।
0: कोई बात कोने जी पाछो ही देखो मारी बात सुनो जो चोखा दिन हो छे बिल्कुल कोई ना कोई कमी माँ की भी रहेगी है ना लेकिन बिल्कुल
2: बच्चा तो बढ़िया जे देखो
0: सुहाग पिक्चर की जो छे तो अच्छा सुहाग पिक्चर देख बात है तो थाने सबसे ज्यादा चोखा कौन लागे छे अमिताभ बच्चन सबसे बढ़िया लागे छे
2: अमिताभ बच्चन अच्छा
0: अच्छा
2: चलो ठीक है बहुत ही बढ़िया
0: तो ये तो था शंकर जैन जी जो बताया कि ये घूमबा गया मतलब देखबा ने गया फिल्म लेकिन फिल्म से निकलता ही यहाँ की भी एक फिल्म बन गई क्योंकि बायला कर दिया शिकायत और फिर भाई साहब से पड़ा दो चार डंडा जो भी पड़ा कोई बात को नहीं लेकिन आज वही भी याद आ जाए तो अगर था कने भी छे कोई अच्छी बात तो साझा कर सको चुम हकी साथ हेलो हेलो देखिए अभी जो माखी साथ जुड़बो चाह रहा था वहाँ को संपर्क तो होगो लेकिन बहुत आवाज़ आ रही थी तो या तो थे गाड़ी वाड़ी चला रहा छो तो एक था सगला से खेबो चावला कि जद भी थे फोन लाइन के जरिया मतलब जद में ऑन एयर थाने लेवा छा और था कि आवाज़ रेडियो पे जा रही छे तो रेडियो जो सेट छे उसे थोड़ी सी दूरी बना रखो और फोन अगर स्पीकर पे छे तो उन्हें स्पीकर पे से हटाओ और सबसे बड़ी बात थोड़ो सो साइड में मतलब अच्छी जगह जंडे आसपास को शोर कौन आ रहे हो ताकि था की बात मैं भी ढंग से सुन सका और थे भी माँ की बात आराम से सुन सको आप देखा चा कौन छे माँ की साथ हेलो
3: हेलो
0: नमस्कार
3: नमस्कार जी कैसे हो
0: बढ़िया जी थे कौन बोल रहे हो
3: जी योगेश यादव बात कर रहा हूँ आपसे
0: योगेश यादव जी कोड़े से बोल रहे हो
3: हेलो
0: हेलो हाँ जी योगेश जी कोड़े से बोल रहे हो
3: हेलो
0: हेलो हेलो योगेश जी
3: Hello?
0: हाँ जी योगेश जी बताइए हेलो भाई देखो माँ को संपर्क तो छो लेकिन योगेश जी की तरफ से संपर्क कर गो तो हो सके छे क्योंकि तकनीक तो तकनीक छे या इको बहुत बड़ो सहारो छे लेकिन धोखो भी हो जा छे है ना तो बिल्कुल थे जुड़ सको छो माँ से जुड़ सको छो और साझा कर सको छो कोई ऐसी सैर कोई ऐसी पिकनिक कोई ऐसी यात्रा जो आज भी था का मन पे एक अलग ही छाप रखे छे हेलो हेलो हाँ जी कौन बोल रहे थे
4: सियाराम बोल रहे थे
0: सियाराम जी कोड़े से बोल रहे थे
4: मैं जयपुर भूज से बोल रहा हूँ जमवा रामगढ़
0: अच्छा जमवा रामगढ़ से बोल रहे थे तो बताओ जी कशी सैर की कशी यात्रा की बात कर बो चाहोला
4: मैं तो 13 तारीख ना बाहर सांवरिया सेटे गया था बस आसु गया था
0: अच्छा कद गया था
4: 13 तारीख नहीं गया था
0: अच्छा बाहर ही गया था
4: हाँ
0: अच्छा तो पहली बार गया था कहीं
4: बाहर ही गया था
0: नहीं नहीं
4: गया था।
0: मैं यह पूछ रही छू थे पहली बार गया था कहीं सावरा सेठ का दर्शन करवा
4: हाँ पहली बार ही गया था मैं तो
0: अच्छा दर्शन होगा आराम से
4: आराम से होगा दर्शन
0: चलो कहीं मांगिया भगवान से
4: भगवान से जो मिल रही
0: भाई देखो हमारी बात सुनो सबने देवा वाला छे उसे मांगबा में कहीं की शर्म मांग सका चा है ना अच्छा तो वह यात्रा था के लिए कहीं रही बढ़िया कहीं याद छे उनकी तो ये तो छा सीताराम जी जो सावरा सेठ की यात्रा करया छे हाल ही में थे करया हो कोई अच्छी यात्रा उससे जुड़ेड़ी हो कोई खास बात तो ते साझा कर सको छो माँ की साथ और अब आ देखा कौन छे माँ की साथ हेलो हेलो हेलो हेलो तो आज मने लागे छे शायद संपर्क में छे थोड़ी प्रॉब्लम कोई बात को नहीं जी समस्या को समाधान भी हो ही सके छे और प्रोग्राम चल रहे छे चटकीलो राजस्थान में मारी जान आज बात कोई ऐसी सैर कोई ऐसी यात्रा जी की याद आज भी चेहरा पे ले जा छे मुस्कान

0: हिवड़े खतो खड़िया लेकिन देखा छा कुण माँ की साथ जुड़िया। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार।
1: नमस्कार अजी, माँ को फोन ही काट दिए थे।
0: अजी तो आवाज ही कौन आ रही थी, कौन बोल रहे थे?
1: हाँ मैं शंकर जी बोल रहा हूँ, एक बात और बताऊँ?
0: हाँ बताओ जी।
1: मैं रामगढ़ बोल रहा हूँ, जब उनका चार दो तो उनका एक दुकान थी आगे।
0: अच्छा,
1: उनका मिला कर रही थी दाल बाटी। उनका दाल बाटी भी एक रुपए की एक तो बाटी की हो जाए।
0: अच्छा,
1: हाँ और दाल फ्री दिया करेगी।
0: अरे काई बात छे।
1: और प्याज और नींबू दिया करे थे।
0: शंकर जी थे बता रहे छो ने तो अया लाग रहे कि जहाँ कोई सपना की बात कर रहे छो।
1: नहीं नहीं, 7 रुपया को 50 ग्राम दी दे तो अपना की इच्छा हो जो डलवाओ।
0: ओहो,
1: इतना मजा आता, गरम गरम पाटी, गरम गरम दाल।
0: बिल्कुल जी,
1: तो
0: शंकर जी देखो अब कहीं छे कि आया थे बताओला खाबा पीबा की बात आ सैर की साथ, तो फिर प्रोग्राम क्या कराला मुंडा में तो पानी आतो रह लो। पर लेकिन जी बिल्कुल मने लागे छे ये कुछ अच्छा सैर सपाटा हो छे। रानू माँ ने फोन करया और रानू कहे छे कि भाई देखो वे तो क्योंकि बचपन से जयपुर में रहा छे, तो बोले मैं कहीं करा छा कि पहली भाई जया माँ को संयुक्त परिवार छो, मारा चाचा और सब में सब साथ साथ रहवे छा, तो सारा भाई बहन पहली आया तो छो कोने कि भाई अंडी उंडी ने आज मॉल में जा रहा छे कि बैठे बैठे आजकल तो बच्चा साहब मोबाइल में चिपका सा वेब सीरीज देख रहा छे फलाने, घर से ही कौन करे। पहली यो हो छो कि मैं मतलब भाई जावेला कौन है, तो माँ ने जो सैर सबसे चोखी लगे थी मैं कहीं करा था चलो आज जयगढ़ घूमबा चाला, आज चरण मंदिर चाला ला, आज हवा महल चाला ला, आज नारगढ़ चाला ला, तो सारा जो किला और सारी चीज़ा छे बोले यहाँ को जो इतिहास छे मैं आज भी आया था ने मुँह जवानी एक एक चीज़ बता सकूँ छूँ क्योंकि मैं अति ढंग से घूमया छा, और वो जो घूमबो छो और बोले लेर कहीं जा छा नुकती और सेव। या मोटा दाना की जो नुकती हो छे ना ये और मोटी सेव, क्योंकि भाई थोड़ा सा रुपया में बहुत सारी आ जा छी, सबको पेट भर जा छो, घर से खा पिए जा छा, मैं सारा भाई बहन एक दो जना कोई बड़ा चल जाता, कदे मारी बुआ और कोई आ जाती तो वे चल जाती साथ में, और फिर मैं सारा भाई बहन बस चलता। और रानू जी कहे छे कि प्रीति जी पहली देखो अत्ता साधन कौन छा, रिक्शा और तांगा सब चले छा तो थोड़ी दूर तो कर लेता, और बाकी मैं अति अति दूर पैदल चले छा, फिर घूमबा में भी पैदल चले छा, लेकिन वे जो दिन छे वे अशा याद आज है। और अब बोले नारगढ़ जयगढ़ में हमारा बच्चा की साथ भी घूम ली, अब क्योंकि बोले हमारा ब्याह नहीं 15-16 साल होगा, कदे कोई बाहर से जयपुर आयो घूमबा वाने भी कदे लेगा, लेकिन वो मजो को नावे। और अब वहाँ चीजा में जय जयगढ़ का वे बता रहा था कि पहली जो अब तो टाका का इंचा बंद कर दिया, देखबा कौन दे क्योंकि हादसा भी होगा कुछ कुछ, पहली तो बोले वे खुलेड़ा छा, तो मैं सब बहुत आराम से पूरो किलो हर चीज अति मजा से घूमेड़ी छे ने कि अब तो यहाँ सपना की जया लागे छे। और पहली अति भीड़ भाड़ भी कौन छी, पैदल पैदल लागे ही कौन छो कि हाँ मैं अति जगह घूमा छा कि अति दूर दूर गया छा, और माने घणो ही मजो आ छो। तो बिल्कुल रानू जी, और मने लागे छे कि या जो शहर थे बताया छो कि जी शहर में मैं रह रहा छा, उन शहर का जो खास जगह छे, जो खास स्थल छे, अगर वाने ही ने घूमया, मतलब सारी देश दुनिया जयपुर घूमबा आ छे और अगर मैं ही कौन घूमया तो फिर तो फायदो ही कहीं छे, हैं जयपुर नगरी में रहबा को, है ना? तो बिल्कुल बहुत ही चोखी बात छे। और आप देखा कौन माँ की साथ छे। हेलो,
2: हेलो,
0: नमस्कार।
2: नमस्कार जी, राम राम, राधे राधे।
0: राधे राधे जी, कौन बोल रहे छे?
2: मैं मीना शर्मा बोल रही छु, आ जाओ साथ राबड़ी खा लो।
0: हाँ जी बिल्कुल खा वाला। हेलो मीना जी के साथ माँ को संपर्क टूट गो, मने लगे छे कि आज थोड़ी सी शायद फोन लाइन में समस्या आ रही छे, लेकिन फिर भी बहुत सारा लोग आके साथ में जुड़ भी रहा छे, तो थे भी जुड़ सको जो माँ के साथ माँ की फोन लाइन 2200-800। इनके अलावा माँ को FB पेज, तो कोई ऐसी सैर, कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसी पिकनिक जो था ने आज भी गुदगुदा दे छे, तो थे साझा कर सको छो उनकी बात माँ के साथ। हेलो,
2: हेलो मैम, हाँ? मिल गो भगवान साथ दे दियो।
0: हाँ तो बताओ मीना जी, कशी शहर की याद करो ला।
2: मैं शहर सुपर शहर गया
0: अजी,
2: मैं तो
0: बताओ बताओ
2: बताओ, मैं तो गांव आया तो एक बार का ही हमारी शादी हुई थी जयपुर से आई मैडे, तोड़े आई तो जी मन लेगा नई नई बीनने में, अब कदे गयोड़ा को नहीं तो घूंघटो तो काल दियो, चलो जिम बने। अब सबके साथ गया। अब वो एक वो लोटो ले जाओ पहले की और के
0: पानी पीवा के लिए। हाँ।
2: दिन लोटा ना हाथ में लेगा। अब मतलब मैं जिम बन तो बैठ गया, अभी घूंघटो निकला जिम में, मतलब यह हालत हो गई। तो खाया ना पिया घर आना आया, सासू बोली बिने दिन तो जिम आ लिया, तो भी दिन तो सारी रात ही भूखा निकली हमारी तो।
0: तो थे तो मतलब भूखी सैर कह सको चो इन्हें, है ना, कि बिल्कुल ही भूखा ही रहेगा। देखो अशो हो जाओ छे, मने लागे छे कि नया नया घर में बहुत सारा अशा काम हो जाए, है ना, कि कई बार लागे छे कि अरे काई करा, तो ठीक छे, ये भी एक अलग अलग तरह का अनुभव छे। आप देखा छे कौन छे मा किसान? हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी,
3: हाँ जी, लाड़ी के बाद
0: कौन बोल रहे?
3: भगवान भाई जांगिर।
0: अच्छा, भगवान साहेब जांगिर जी कोड़े से बोल रहे हो?
3: मैं अभी तो रामनगरिया से बोल रहा हूँ, जयपुर।
0: अच्छा, तो बताओ कोई अच्छी यात्रा या सैर या पिकनिक जो थाने आज भी याद छे?
3: ऐसा है अशोक जी, 35-40 साल पुरानी बात है। तो कहेंगे भट्टरी बाबा के गए।
0: अच्छा, अलवर करने
3: भट्टरी बाबा। तो एक बच्चों तो माँ का भांजो, 15 साल।
0: हमारी बात सुनो, थे रेडियो सेट से थोड़ा सा दूर आओ, फिर था की बात बोलो।
3: अच्छा अच्छा, एक मिनट। हेलो,
0: हाँ जी बताइए।
3: आज तो साहब भट्टरी बाबा के जाते थे साल की साल। तो कह रहे हमारे एक भांजा है 15 साल का। तो मामा जी कहते इधर सीधे ही है ना जो सरिस्का चलेंगे अपन। तो वहाँ क्या है वो पहाड़, पहाड़ के ऊपर चढ़ गए था उसके कहने से। तो साहब दो पहाड़ चढ़े और फिर नीचे उतर गए। फिर साहब एक गांव आया। तो छात्रावली को कले कले वो नाम लिया गाँव वाला। फिर साहब पैदल चलिया, फिर पहाड़ गया, फिर पहाड़ के नीचे उतर के हनुमान जी का मंदिर है वहाँ। वहां दर्शन करके तो बहुत पछताया साहब, मुझे गलत रस्ते कभी नहीं।
0: बिल्कुल, देखो कदे कदे अशो हो जाए कि मतलब सोचा कहीं छा लेकिन होवे कहीं छे। और अशो ही एक किस्सो जो माँ के साथ साझा करया, वे करया तरुण। तरुण कहे कि मारो नयो नयो ब्याह हुयो छो, अब नयो नयो ब्याह हुयो छो तो कि भाई चलो ठीक है बींदनी ने घुमा डालना। अब बींदनी ने घुमा ला, नई नई गाड़ी लियो, नई बींदनी, अब बोले थे जानो ही छो, एक तो नई बींदनी ऊपर से नई कार, तो कत्तो जोश ओलूम हर में। तो तरुण कहे कि भाई काई छे थोड़ा सा आशा, बरसात थोड़ी थोड़ी होगी छी। तो मैं मारी बींदनी जो छे मैं अलवर आड़ी कोड़े गया था। अब हुयो काई कि पतो को ने कया वे जो मतलब गार्ड तब तक कहीं छे यो जो सरिस्का जो छे उ वक्त तक बंद हो गो छो कुछ टाइम के लिए। देखो कहीं छे जय बरसात को मौसम आ छे ने, ये जतरा भी अभ्यारण्य और ये जो वन क्षेत्र हो छे ये थोड़ा दिन के लिए बंद हो जा छे, है ना, क्योंकि नदी नाला आ जावे और बहुत सारा सुरक्षा कारण से यानी बंद कर दे छे। तो बोले वो वशोई मौसम छो और सरिस्का बंद छो। अब पतो को ने काई बात हुई कि वो गार्ड काई समझ लियो काई नहीं करियो, वो माने एंट्री दे दियो। मैं भी लुगाई के आ गए इतरावा की खातिर एंटर हो गो। अब वो पतो को ने कशो रास्तो छो या काई बात छी, भाई मैं तो जंगल में चालता गा। पीटी जी बोले तरुण जी कहे कि लोग जद घूमबा जा छे रणथंभौर जावे सरिस्का जावे अंडी उंडी जावे तो सोचे छे अरे टाइगर दिख जावे अरे वो दिख जावे। बोले वो अशो दिन छो कि वहां को जंगल खत्म ही कौन हो रहे हो, मैं चालता जा रहा माने लग गया भाई बुरा फसया, अगर पेट्रोल खत्म हो गो तो अब काई करा ला, और शेर ना आ जावे। बोले मैं जब तक ऊ रास्ता से अतो लंबो जंगल छो वो खत्म ही कौन हो, और माने यहाँ लाग्यो कि भाई भगवान शेर माँ के सामने ने आ जाए, अरे टाइगर ने आ जावे, लोग तो देखबा जा छे लेकिन मैं तो भगवान ने मना रहा छा आ मत जा छे नहीं तो माँ को जीव कर जा। तो तरुण जी कहते हैं कि ऊ के बाद मैं यो समझ लियो बात कि भाई बीवी के आगे अगर शेखी भी पकारनी छे तो अत्री पकारो कि जान पे ने बनावे। बिल्कुल तरुण जी, और मने लागे छे कदे कदे आशा जो कुछ इंसिडेंट हो छे वे एक अलग ही। और अब मने तो सोचा ही लाग रहे छे कि जंगल में आगा जंगल खत्म ही नहीं हो रहे हो, चालियो जा रहे हो छे, चालिया जा रहे छे, और मतलब यह बात तो सच में सोचर ही लागे छे कि लोग देखभा के लिए जा छे, लेकिन आपा ने लागे छे कि भगवान शेर ने आ जावे, भगवान टाइगर ने दिख जावे, दिखो तो मारो कहीं हो लो, क्योंकि सच बात छे जंगल को राजा जो है वो तो वो ही है ना। तो बिल्कुल थे छो था कि यादा का राजा, थे छो वे सुनहरी यादा जो थे था कि साथ। तो कोई अशी सैर, कोई अशी पिकनिक, कोई अशी यात्रा जो थे करयाओ था का परिवार की साथ, था का दोस्ता की साथ, जी की याद आज भी थाने गुदगुदा दे छे। अतरी बहुत सारी हो सके छे यादा, तो थे साझा कर सको छो माँ की साथ। साझा करबा के लिए माँ का नंबर 2200-800, और ई के अलावा माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
4: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
5: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: गुलाबी शहर,
7: शाम गुलाबी, पैर गुलाबी, पैर गुलाबी, गुलाबी,
6: गुलाबी चैनल,
8: गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया,
6: गुलाबी हम और आप,
9: .3 FM, Radio Pink City।
6: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है,

0: ते सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माले काई तो खास छे और काई तो बात छे।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM 11:31 और पूरा 11:32 और पूरा 1-2-3 सेकेंड प्रोग्राम चटकीलो राजस्थान। और चटकीलो राजस्थान में आप माँ के साथ करवाने बाद देखा चा कुंज मेरी जान। हेलो
2: हेलो
1: नमस्कार जी।
2: नमस्कार जी। राम राम।
1: राम राम जी। कौन बोल रहे थे?
2: मैं गोविंद जायसवाल बोल रहा हूँ साहब, जयपुर से।
1: अच्छा तो गोविंद जी बताओ कशी यात्रा की बात बताओ ला।
2: देखो मैं गया था यात्रा में कैलाश मानसरोवर।
1: अरे काई बात छे बातो अपने आप में ही मने लगे छे अद्भुत।
2: जी जी जी।
1: हम्म।
2: तो जब हम गए साहब तो उत्तराखंड की तरफ से गए हम।
1: हाँ जी।
2: तो उत्तराखंड में पिथौरागढ़ है।
1: हाँ हाँ।
2: उसके पास में एक पाताल भैरवी जगह है।
1: अच्छा।
2: और वो काफी अंदर है, मतलब नीचे जमीन में है।
1: हम्म हम्म।
2: और पुरातत्व विभाग ने उसको किया हुआ है, संरक्षण किया हुआ है।
1: हम्म हम्म।
2: और उसमें पूरा ब्रह्मांड है, अगर किसी को जाने का मौका मिले कभी।
1: हम्म हम्म।
2: तो पूरा ब्रह्मांड के दर्शन आप उसमें कर सकते हो।
1: क्या नाम बताया आपने?
2: आलौकिक चीज है, पाताल भैरवी।
1: पाताल भैरवी
2: जी।
1: हम्म।
2: बहुत ही गजब की जगह है, पूरे ब्रह्मांड का जैसे शेष नाग की धरती टिकी हुई है वो उसमें नजर आती है।
1: हम्म हम्म।
2: शिव जी ने जो ऐरावत हाथी का सर काट के गणेश जी के लगाया वो उसमें रहता है।
1: अच्छा।
2: शिव जी के दर्शन होते हैं, बहुत गजब की जगह है मैडम।
1: हम्म।
2: हाँ अगर किसी को आपके श्रोताओं में भी किसी को जाने का अगर मौका मिले कभी।
1: हम्म हम्म।
2: बहुत शानदार मतलब एक जगह है।
1: हम्म हम्म।
2: उत्तराखंड में है ये।
1: अच्छा।
2: पिथौरागढ़ के पास।
1: हम्म। और था कि मानसरोवर की यात्रा जो है पूरी यात्रा कशी रही?
2: वो बहुत बढ़िया रही, बहुत ही बढ़िया रही। मैंने पूरी यात्रा पैदल की।
1: हम्म।
2: एक मार्ग पे गया था मैं।
1: अच्छा।
2: तो पूरी यात्रा मैंने पैदल की, हालांकि मैंने घोड़ा लिया हुआ था पर मैं जानबूझ के नहीं बैठा उसको।
1: बिल्कुल अशी।
2: पूरी यात्रा मैंने पैदल की। और जैसे देखो दूसरे देश की बात नहीं करनी चाहिए लेकिन अच्छी बात हो तो उसको शेयर करनी चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
2: मुझे वहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी लगी, साफ सफाई चाइना में जो है, मतलब बहुत जागरूक है वो लोग। हम लोग थोड़े लापरवाह इस मामले में,
1: थोड़े नहीं बहुत ज्यादा
2: वो लोग। हाँ वो बहुत जागरूक है और साफ सफाई मेरे को मतलब उसको कह सकते हैं कि मेरे जीवन में मैंने बहुत यात्राएं की मैडम, लेकिन उससे बढ़िया साफ सफाई मेरे को कहीं देखने को नहीं मिली।
1: बिल्कुल जी। और मने लगे छे वो जो यात्रा थे कर्या कैलाश मानसरोवर की यात्रा, मने लगे छे अपने आप में यहाँ लगे छे कि स्वर्ग को सो एहसास है ना, साक्षात यहाँ लगे छे कि कैलाश पे विराजा जो शिव छे वहाँ का ही मैं दर्शन कर लिया। तो यह यात्रा तो सच में अपने आप में अद्भुत छे। संगीता अग्रवाल जी कहे छे जी यात्रा की बात, फेसबुक पे वे वहाँ से जुड़िया कि वे कहे छे कि वे पहली क्लास में पढ़े छा और वहाँ का चाचा जी की शादी तय हुई थी आगरा, तो वे लोग रहे छा जयपुर और छोटा था जो क्योंकि कही छे कि औरता तो शादी में जावे कौन छी, पर क्योंकि कही छे कि भाई मैं तो छोटी थी और फिर मैं हमारा बाबा की लाडली थी तो वे मने बारात में लेगा, मैं लोग ट्रेन में बैठ गा। अब बोले पहली क्लास में पढ़ी थी भाई छोटी बच्ची तो मने तो ट्रेन में बैठी तो ट्रेन देख बा मैं मजो आगो, जिंदगी में पहली बार ट्रेन देख रही थी। लेकिन जब रेलवे स्टेशन पे पहुंचा तो अति भीड़ कि मैं तो चल ही नहीं पा रहा, तो चाचा जी मारो हाथ पकड़ के ऊपर खींचर मने गोदी में ले यात्रा कराया और फिर पूरी यात्रा में आया ही कराया। मैं सोचा यह ट्रेन का शीक छे अशी वॉशरूम जैसी, और फिर मैं बहुत सालों तक ट्रेन में नहीं बैठ पाई तो मने लगे छो कि यह ट्रेन तो अशी हो जाए। और उसके बाद साल 2004 में उन्होंने यात्रा करी, मतलब पहली क्लास में जो यात्रा करी थी उसके बाद जो दूसरी ट्रेन यात्रा करी वह करी साल 2004 में। और जब साल 2004 में करी तब वह ने समझ में आयो कि ट्रेन एक छोटो सो डब्बो कौन हो वो बहुत बड़ी होती है। तो बिल्कुल जी संगीता जी, मुझे मतलब जो मैंने लाग रही हो कि अतरा लंबा समय तक जो था कि एक बात थी ना कि मन में एक वो रहगो कि अरे भाई ट्रेन आया खेचे ट्रेन अति बड़ी है ना, और थे सोचता होला कि सारा ही झूठ बोले छे, लेकिन बिल्कुल फाइनली मने लागे छे कि थाने आ बात समझ में आ गई कि ट्रेन जो छे वह अतरी बड़ी હોવે છે તે ભી સાજા કરી શકો છો. થા કી કોઈ એશી યાત્રા, કોઈ એશી બાત જો થાને લાગે છે કે કોઈ સેર, કોઈ યાત્રા, કોઈ પિકનિક જો આજ ભી છે દિલ કે પાસ, સાજા કરવા કે લીએ મારા નંબર 2200 800, સાથે સાથ મારું FB પેજ રેડિયો પિંક સિટી 100.3 FM. ઓર આભાર દેખા કોણ છે માકી સન. હેલો,
3: હેલો,
1: હા જી નમસ્કાર,
3: રામસિંહ બોલ રહા હું ચાંદપુર સે.
1: હા જી રામસિંહ જી બતાઓ.
3: એક બાગ આઈ મારી નઈ ની શાદી હોય રહી થી, તો ઘર આરી બોલી કોડે ઘુમાવ મને, તો મેં ચલો મને કે આમને દેખા જાતા હા ના ભાઈ, તો સાયકલ પે બેઠા આમને જગા પહેલે જનરલ જે ગયો, જનરલ કે બાદ ફિર આમને ઘાટી પે મેં તો ઉતર ભાઈ, ઉતરને કે બાદ ઉતર ગઈ તો થોડી છૂટ ચડે પર મન બેઠ જા, ફિર જલાન મેં લે ગયા આમેર ઘુમાણ મેં લઈ ગયે આમેર પાસ સબ ઘૂમ ધામ કે જબ ઘર પે આ ગયા ના, તો મેરી માં બોલી અરે બેટા ઘૂમ ગયા, મેં ક્યાં ઘૂમે, તું કે પાજે પડ જાય એક ઓર મન કરે ભાઈ પાજે પડી ગઈ, તો મેરી મમ્મી એટલી ખુશી મેં ઉમર વેર કો વિનો કે બાપ કરી ગયા સાયકલ તમ મત લેર જાય કર અમારા બનવા પાજે
1: બિલકુલ બિલકુલ. તો દેખો વાહ, પહેલી પહેલી સાથ કી યાત્રા, લેકિન ઊ મેં ખોગી પાઈ જેબ તો કોઈ વાત કોને, જદ ભી પાયલ દેખો લા તો વાહ જો યાત્રા છે વો તો થાને જરૂર જરૂર યાદ હી રહેવેલી. તો બિલકુલ દેખો કોઈ અશી બહોત સારી અશી યાત્રાઓ છે, બહોત સારી અશી સેર હો છે જો અગર મેં કરા. ઓર માને ફોન આયો આરુષિ કો, આરુષિ કો કહેણું છે કે દેખો મેં જયપુર કી રહેવા વાળી છું ઓર મારો બ્યાવ જો હોય વો ભી જયપુર મેં હોગો, તો સબસે અચ્છી બાત યા છે કે મેં જયપુર કી હોલ રહેગી ક્યુંકિ મેં વ્યાં ભી જયપુર છોડબો કોન ચાહતી. બાત અગર થે ઘૂમવા ફિરવા કી કરો તો મને સબસે ચોખ્ખો જો લાગે છે બોલે દિવાળી પે જો બજાર કી સજાવટ હો છે, તો બોલે જદ મેં છોટા છોટા છા તો પહેલી કઈ છે કે શહેર મેં રહે છા જલાલ મુનશી કા રાસ્તા મેં. આપ જબ છોટા છોટા છા શહેર મેં રહે છા તો મેં કઈ કરે છા ક્યુંકિ બજારા કી સજાવટ ભાઈ શામ કી ટાઈમ જબ જાલા રાત મેં ઓર શામ કી ટાઈમ પે તો બહોત ભીડ મિલેલી, તો ક્યાં ઘૂમાલા તો મેં કઈ કરે છા કી બેગા સુ જા છા જ્યાં સોગા ટાઈમ પે. ઓર ફેર ક્યુંકિ સુવારી જો લાઇટા બંધ હોલી રોશની હટેલી વા તો 5:30 તક તો રહેવેલી, તો મેં કઈ કરે છા બેગા ઉઠે છા ઓર ક્યુંકિ શહેર મેં તો રહે છા શહેર કી શહેર મેં કઈ ફરક પડે લો બેઠ્યા સ્કૂટર પે. ઓર ફેર મેં હે ના સારી વો દિવાળી કી જો લાઇટા હો છી જો રોશની સજાવટ હોચી ઉને દેખવા જા છા. વા જો સેર છે મને સચમાં અહીંયા લાગે છે કે શાયદ મેં આસમાન મેં ચાંદ તારા કી ભી સેર કરું લી ને તો મને અતો મજો ગો ના લો જતરો મને ઉ ટાઈમ આ છો. ઓર થાકી બાત સુનર જી ખુશી કે સાથે બતાવ્યા છે, મને લાગે છે કે બિલકુલ વાહ જો રોશની સે સજેડા બજારા કી સેર સુવારી સુવારી કો ટેમ મતલબ સચ મેં અલગ હી મજો આ જાતો બોલો હે ને. તો મને લાગે છે બહોત સારા લોગાને ભી યુ આઈડિયો જો છે અપના શકો છો કે અગર દિવાળી પે બજારા કી સેર દેખની છે થાને લાગે કે અરે યાર અતિ ભીડ મેં કોઈ ખરીદનો કોને ખાલી સજાવટ દેખની છે, તો થે ભી બસ થોડી સી જો રાત કી નીંદ છે ઊને થાને છોડની પડેલી. આપ દેખા કોણ છે માકી સાન. હેલો,
4: હેલો,
1: હા જી,
4: હા જી, રામ રામ જી.
1: રામ રામ જી, કોણ બોલ રહ્યો છે?
4: હા જી, મેં રેખા બોલ રહી છું, મેં ના રહી છું.
1: હા જી રેખા જી બતાઓ.
4: સબસે પહેલી તો આપને ધન્યવાદ કે આપ ઇતો અચ્છે પ્રોગ્રામ લે રહો છો આપની પાવર ભાષા કે.
1: બિલકુલ જી, બિલકુલ જી, બતાઓ.
4: ઓર બચપન થી શહેર કે બારા માં આપ શહેર કે બારા માં વાત કરી રહ્યા છો, તો શહેર તો કઈ જગ્યા થી કરી છે લેકિન બચપન માં કાંઈ કે માં કરી આમ સૈસુર માં ગાંવ પડે છે, તો સાવ અંકા દિના માં મારે જે ચાચાજી થી લડકી થી વા ગાંવ માં રહે છી ઓર મને સુતી માં ને રહે છે જયપુર માં દિલ્હી ભાવ છે ઓર બંદે ભી સાવણ માં જા ઓર આપણે ભૂતેશ્વર માં દેવ કો મંદિર છે આમેર માં.
1: અચ્છા,
4: ખુબ મજા આવતા आपने बहुत धन्यवाद जो आप इतनी अच्छी बात बचपन से ले जवानी तक
1: बिल्कुल जी ठाकुर भी बहुत बहुत धन्यवाद अतरी बढ़िया यादा और मैंने जद बहुत सारा लोग अपनी ये यादा बता छे बात करे छे तो मने यहाँ लागे छे क्योंकि मतलब जद वे बता छे तो वहाँ का मन का भाव यहाँ लागे छे कि हाँ सचमुच थे भी वहाँ की साथ साथ शायद वनडे घूम रहा छू वे ही सब महसूस कर रहा छू जो वे भी कर रहा छे और यह तो कती अच्छी बात है। देखो पहली यह बात तो छे मैं जो कहवा छा कि पहली सच में फुर्सत छी है ना तो यहाँ सावन आगा फलानो त्योहार आगो कोड़े जानो छे काई करनो छे जे गणगौर की आपा बात करा 16 दिन की गणगौर पूजनी छे पहली सावन आता वन सोमवार के लिए जानो और वंडे चाला ला आपने काती आती काती साब महीना भर की काती नहा ला सुवारी सुवारी उठर गलता जी के चाला ला गोविंद देव जी के चाला ला आज भी हो छे लेकिन जतरी फुर्सत जतरो आराम मतलब कि हाँ बिल्कुल बस ठीक छे आराम से सुकून छे शायद वो कोड़े ने कोड़े खोगो है ना लेकिन फिर भी कोई ऐसी सैर कोई ऐसी यात्रा कोई ऐसी पिकनिक जी की यादा आज भी ठाकू मन मोहले छे तो थे काचा कर सको छो मां की साथ। हेलो संपर्क होबा से पहले यहाँ से माँ को संपर्क कट गो लेकिन थे माँ की साथ कर सको छो संपर्क जुड़ सको छो माँ की साथ माँ की फोन लाइन 2200 800 और माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM तो बस जा सको छो वनडे और जो सबसे ऊपर पोस्ट जी पे चटकीलो राजस्थान इको नाम छे जाल थे साझा कर सको छो अपनी बात। हेलो
5: हेलो
1: हाँ जी नमस्कार।
5: नमस्कार मैडम मैं सीटू बात कर रहा हूँ चौबू से।
1: हाँ जी सीटू जी बताओ।
5: जी मैम सबसे पहले तो देखो लोगा की ई प्लेटफॉर्म पर आर अलग अलग व्यूज सुनबो अलग अलग बाता सुनबो बड़ा ही मतलब वो एक घंटो कदा निकल जाए पतो ही कौन लागे
1: सुनहरी यादा की साथ है ना सब लोगों की
5: बिल्कुल खट्टी मीठी मतलब बड़ी ही अतरंगी सतरंगी मतलब सुन रहे आदमी हाँ कि अब कौन की सुना लगा अब आ गया कौन की सुना गया अब थोड़ी सी माँ की भी सुन ले।
1: हाँ बिल्कुल जी सुनाओ।
5: मारी याद चा 2015 की 8-2-8-10 दोस्त की मंडली जून मई जून को महीनो और सामोद की पाड़ा पर जतरा भी बेजुबाना का परिंदा रेंची रीता बा में पानी डालबो चुगो डालबो मतलब बेजुबाना की खातिरदारी कर बोमा को हर मई को हर हर जून को साल को दो टूर पक्का ची।
1: अरे काई बात छे मतलब अशी यात्रा जो मने लगे छे आत्मा ने सुकून पहुंचा छे
5: और वो के बोगे ना कि आपा तो चलो खेदिया साम लाने की मने भूख लाग रही छे लेकिन
1: सही बात छे
5: ना अपने किया जाए
1: जो बोल कौन सके वो कहिया खेलो कि उन्हें भूख लाग रही छे कि तस लाग रही छे
5: बिल्कुल तो आमा की मतलब यात्रा जो हर साल चले छे मई और जून में एक एक राउंड बैठे जब तो माँ की कोशिश करी जाए बत्रों में कर रहा हो जा और आई यात्रा माँ की एकदम गोल्डन यात्रा
1: है। बिल्कुल सबसे सुनहरी यादें है ना और या तो बहुत ही अच्छी बात है सीटू जी की थे आया कौन है कि थे सबका साथ ने ही एंजॉय कर रहे छो कि सबकी साथ ही खाली जा रहा छो आपनी साथ साथ थे और बेजुबाना को भी ध्यान रख रहे छो तो ई के लिए तो थाने साधुवाद। तो भाई देखो सीटू जी वहां से जुड़िया और वे अपनी यात्रा की साथ एक अलग ही मकसद भी ले चाल रहे थे थाकी साथ भी छे कोई ऐसी सैर कोई ऐसी पिकनिक कोई ऐसी यात्रा की याद जो आज भी थाको जीव कर दे छे खुश तो ते साझा कर सको छो वहां की साथ साझा करबा के लिए वहां की लाइन 2200 800 और इसके अलावा वहां को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
6: तुमने भरोसा दिलाया मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट
7: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है
6: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना
7: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना
8: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, डीलवा, बूर्थल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुल ओरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयर हाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: ते सुन रहा हो चटकीलो राजस्थान 100.3 FM माला। काई तो खास छे और काई तो बात छे।
4: प्रोग्राम चल रहा है चटकीलो राजस्थान और चटकीलो राजस्थान में आज बात वशी यादा की, वे जो यात्रा से और पिकनिक से जुड़ी छे, जो के था की जान। और आप देखा छा कौन छे जो जुड़ गा मा की साथ। हेलो
5: हेलो
4: नमस्कार।
5: राम राम साहब।
4: राम राम जी, कौन बोल रहे छे?
5: मैं घनश्याम कुतुम जामडोली से बोल रहा
4: हूँ। घनश्याम जी जामडोली से। अच्छा जी, बताओ कशी शहर की बात बताओ ला।
5: मैं बताऊंगा कुंभ का मेला की बात।
4: ओहो, थे बिना खोया वापस आ गा या बात?
5: मैं गया था कुंभ का मेला में। अंडा से जामदनी से बतबर गई जी।
4: अच्छा,
5: अतरा आनंद होता था, अतरा में लेता या
4: तो अबार यो जो कुंभ हुई हो जो ई में की कद गया था?
5: ई में पिछला साल आरम्भी।
4: अच्छा हाँ
5: जी, मैं करोड़ों आदमी स्नान कर जाऊ। या देख लियो कुंभ का स्नान में गया, अयोध्या में राम जी का मंदिर में भी गया, सरयू नदियों में गया। आज में याद आया नाता की मानी मान ली।
4: ओहो,
5: और खूब नाश्ता कूदता होया पैदल को तो मालूम नहीं चले। मैं रात को पैदल चले तो मालूम नहीं चले दिक्कत तो नहीं गये।
4: अच्छा,
5: आनंद
4: आ तो थे सब लोग, मतलब परिवार का छा या था का गांव का छा जो बस कर गया छा?
5: गांव का भी जा, परिवार का भी जा।
4: अच्छा, तो मतलब बढ़िया तो मतलब बढ़िया साथ होगो सबको।
5: बढ़िया साथ होगो, बढ़िया आरती यात्रा थी, खूब आनंद आया। मान लो आज भी याद आ रही थी कि फिर चलना जो तुमको मिलो करत।
4: हाँ बिल्कुल जी, और मैं तो यही कहला कि भगवान सारी अच्छी अच्छी इच्छा सगड़ा की पूरी करें और सगड़ा ने राजी राजी रखे, शांति रहे, अमन रहे और सबका चेहरा पे मुस्कान सदै खिली रहे, है ना? तो बिल्कुल, या तो मैं चाहवा ही चाह। और अगर थाकने भी छे कोई ऐसी पिकनिक, कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसी सैर की बात तो थे साझा कर सको छो माँ की साथ। हेलो
6: नमस्कार मैडम।
4: नमस्कार जी।
6: हाँ जी, मैं रईस बोल रहा हूँ।
4: कौन बोल रहे?
6: रईस बोल रहा
4: हूँ। ओहो रईस, तो रईस की तो यात्रा ही बहुत अच्छी होगी।
6: हाँ जी मैडम। अच्छा। क्या है कि हम 2023 में बम्बई गए थे, मुंबई, तो हमारे मामा महबूब चौहान जी भी गए थे साथ। और वहाँ बांद्रा में हम मोहम्मद रफी साहब के घर पहुँच गए।
4: ओहो,
6: तो वहाँ पे 31 जुलाई का टाइम था तो मीडिया वाले यूट्यूबर कई आए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि आप कोई गाना गाएंगे क्या, आप इतनी दूर से आए जयपुर से? तो वहाँ पे मैंने जरा सा गाना गाया था।
4: ओहो क्या बात है, रफी साहब की पुण्यतिथि वाले दिन आप पहुंचे थे।
6: तो
4: आपको पता था या फिर ऐसा मतलब हो गया बस?
6: हाँ नहीं, हम वैसे एक्चुअली में चला के गए थे 29 जुलाई को, तो 30 को पहुंचे थे, 31 को वहाँ पहुंच गए थे।
4: तो बिल्कुल
6: गाना इस तरीके से था, तेरे नैनों से मैं दीप जलाऊंगा, मन की आंखों से दुनिया दिखलाऊंगा,

0: ये गाना ज्यादा अच्छा लगता है, आज भी याद करते हैं तो।
1: बिल्कुल। और रही सच में, मतलब मैं तो यही कहा कि था कि आवाज़ है भी चोगी, तो बिल्कुल अगर रईस तो थे चोई, बस थोड़ो सो रियाज भी करो तो थाको जो हुनर छे वो भी परवास चढ़े लो, तो थे भी साझा कर सको छो कोई ऐसी यात्रा, कोई ऐसी सैर, कोई ऐसी पिकनिक की बात। और आप देखा कौन जुड़ गो माँ की साथ। हेलो,
2: हेलो,
1: नमस्कार,
2: नमस्कार जी मैडम।
1: कौन बोल रहे हैं?
2: मैं अशोक टेलर बोल
1: अशोक टेलर सांगानेर से। अच्छा, तो बताओ जी अशोक जी, कशी यात्रा की बात करोला।
2: राम में जब आ तो माँ की उम्र 57 साल, और जब मैं 17-18 साल का था, जब एक बार यार दोस्त भी थे 10-12 जना, अजमेर तब वो पुष्कर जब वो बनाया था प्रोग्राम, रात में 8 बजे रंडा से रवाना हुआ, और पुष्कर पूजा रात में करीब 11-11:30 बजे
1: अच्छा, कहीं से गया जा?
2: बस से गया जा रोड तो सर ने भूख लाग रही थी, बड़े ढाबा होटल वगैरह सभी बंद हो गए, तो एक ढाबा खुंडो जी के मान है, फिर भी मैं जहाज में पूछा कि भाई खाना वाणा मिल जाओ, 8-10 जना था मैं, बोले मिल जाओ तो मतलब कत्ता को मिले लो, तो डाइट के हिसाब से बता दे माने, तो साहब वो बता दिए माने डाइट के हिसाब से 50 रुपए डाइट एक जना की, भाई आराम से खूब खाओ कर, तो की हालत अच्छी हो गई थी कि बस लास्ट में तो वो साग में भी पत्ता गया मतलब लार खोए जमाने से, तो आज जोड़ लिया बजे भाई साहब मारा बस की बात है, ऐसे तो जाओ बजे पीला देव तो देव नहीं तो मत देव चाहिए,
1: अच्छा तो उनकी भल मनसा तूने भारी पड़गी, मतलब
2: भारी पड़गी डाइट भारी पड़गी तो
1: तो था कि यात्रा तो मने लागे जे था से ज्यादा उन्हें याद रह ली
2: उन्हें भी याद रेवली तो मामे भी याद रेवली, तो फिर आखिर में क्या भाई देख मैं तेरा पीछा तो राखा कौन है तू, माँ से सारा कहता मैं 10 जना तो माँ की 10 की बजाय तो 12 जना का पीछा ले लो, तू काटो मत खाओ, तो भी कहीं यार दोस्त जा जो जा खड़ा पीछा है बस यहाँ बस ओढ़ ले रहा बार बार मैं क्यों वो का मजे ले बुगरे साहब।
1: हाँ तो भापड़ों को मतलब मैं कह तो रही हूँ कि भलाई उन्हें बेचारा ने भारी पड़ गई है ना तो बिल्कुल अशोक जी साझा करया कि मतलब देखो कहीं छे कि वो भल मनसात में हाँ भर दियो कि चलो खिलाऊं लार, ऊने पड़गी भारी तो यहाँ सब ने खिलाबो रोटी और तरकारी है ना तो भैया अब देखा कौन छे माँ की साथ। हेलो
3: हेलो, राधे राधे। मैं
1: राधे राधे जी, कौन बोल रहे छे?
3: महेश जांगिड़ बोल रही हूँ मैडम, जोटवाड़ा से। नहीं
1: ओहो महेश जी, कोड़े गया छे घूमबा जी की याद आ छे
3: मैडम, वो दुकान पर कहे थे थोड़ा ग्राहक की ज्यादा थी हमारी बात।
1: अच्छा कोई बात कौन है तो आप बता दो।
3: मैं मार कला गया जा,
1: अच्छा
3: जो अपना इन सामोद का गए मार मालेसर, तो बंदा 8 जना गया, बोले दाल बाटी चूरमा बनाओ ला और बंदा ही नहा धो और खा रहा होला,
1: अच्छा
3: तो बीमा कहीं से मैं चलेगा, मगर एक जना ने बोले मगर नीचे कुंड में ही नहा ले, मैंने कहा तू, तो वो बोले नहीं मैं तो ऊपर जा नहाऊंगा, तो ऊपर चलेगा वो एक लो बंदी ने फड़न बांध रखा गा,
1: अरे बाबा
3: जगह जगह से अब वे दाल बाटी तो रहेगा और बी का जी का चक्कर में लाग गया, जो वह याद ही आओ जो आज भी बात देखते
1: बिल्कुल सही बात है। और या तो सच में एक दुर्घटना ही होगी कि वो वक्त तो मतलब आज तो ठीक है क्योंकि दोस्त भी ठीक है तो याद कर हंसी आ रही है, लेकिन मैं समझ सका छा और जो भी सुन रहा है वहां सबने भी लागे लो कि सच में अगर अशी कोई स्थिति हो जावे तो बिल्कुल लागे छे कि अरे यार शाही मुहूर्त में आया छा यो काई होगो। और मैं तो यही कहला कि जो भी सब यात्रा पिकनिक सैर जोरे भी जा रहे छे, भगवान सब ने सही राखे सुरक्षित राखे और सब अपना अपना अपना घर चोखा चोखा पहुँचे, चोखा चोखा निकले चोखा चोखा ही पहुँचे हैं, एवं के भी कहे छे ने कि भाई चोखा चोखा जाओ और चोखा चोखा आओ। तो अशी ही आपा की जाबा की बात, सैर और यात्रा की बात थे भी कर सको चुम्हा की साथ साझा। अगर छे था कने कोई अशी बात तो बता सको चुम्हा ने, माँ का नंबर 2200-800 और माँ को FB पेज रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

0: जयपुर की है जान,
1: ओ मेरी जान।
0: जयपुर की है मुस्कान,
1: मुस्कुराने की वजह तुम हो।
0: आप सभी के दिलों में बसने वाला चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, ये रिश्ता है हमारी शान।
1: तेरा मेरा रिश्ता पुराना।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और बड़ा पुराना रिश्ता रेडियो पिंक सिटी का और रेडियो पिंक सिटी के लिसनर्स का और एक बड़ा पुराना रिश्ता था को सबको और माँ को और यानी कि सारी दुनिया को जो छे टीम से जो घड़ी की सुइया खेचे कि बस अब वक्त हो गो खेबा को सगला ने टटा बाय बाय। तो जाता जाता खेवाला यही कि मुस्कुराइए और किसी के मुस्कुराने की वजह बनिए। सायोनारा।

ये आकाशवाणी है और आप सुन रहे हैं विविध भारती का जयपुर केंद्र FM बैंड 100.3 MHz पर। दिन के 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: ग्लोब का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ रोदाल सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर हैं। वे आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। राष्ट्रपति कल ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस समारोह में शामिल होंगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार बैद्यनाथ राम, कांग्रेस के उम्मीदवार प्रणव झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी मैदान में हैं। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल नागपुर के अंबा झारी स्थित आयुध कारखाने में यंत्र इंडिया लिमिटेड की 10,000 टन क्षमता वाली एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस की आधारशिला रखेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे महत्वपूर्ण एल्यूमिनियम एक्सट्रूडेड घटकों के आयात पर निर्भरता कम होगी और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्री राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और

0: युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर दो दिन पहले वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिर जाने से हुई। भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराया। इसके अलावा भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, ये है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, यादों की महफिल। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे बस कुछ ही पलों में।

प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस सभा में, इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का स्वागत है दोस्तों। और आज इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं मशहूर यानी जाने माने संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत। यह है इस कार्यक्रम का पहला गीत, आवाज लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम दिल की राहें, गीतकार नक्श लाहिलपुरी।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म दिल की राहें का ये गीत सुना। गीतकार नक्श लायलपुरी और संगीतकार मदन मोहन थे। आइए अगला गीत सुनते हैं। इसे लिखा है राजा मेहदी अली खान ने, स्वर लता मंगेशकर का, और फिल्म का नाम वो कौन थी।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: एक टुकड़ा धूप का।
0: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
3: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं असरदार।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
6: जीवन में करे योग, रहे निरोग और बढ़ती उम्र में भी बने स्वस्थ और सक्रिय। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनाएं योगा फॉर हेल्दी एजिंग का संदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ इस 21 जून सुबह 6 बजे जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का हिस्सा बनिए।

मोहम्मद रफी की आवाज में अभी आपने फिल्म शराबी का ये गीत सुना। आइए इसी आवाज में अगला गीत फिल्म नौनिहाल से हम आपको सुनवा रहे हैं। गीतकार हैं कैफी आजमी और संगीतकार मदन मोहन।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और आशा भोसले को, फिल्म का नाम है जहां आरा, रचना राजेंद्र कृष्ण की और धुन मदन मोहन की।

लता मंगेशकर और आशा भोंसले की आवाजों में ये था फिल्म जहां आरा का गीत। कार्यक्रम का अगला गीत कैफी आजमी का लिखा हुआ, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ है लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म हंसते जख्म से हमने लिया है।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम की अगली पेशकश मजरूह सुल्तानपुरी की रचना है, आवाज लता मंगेशकर की, और फिल्म का नाम है दस्तक।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
4: एक टुकड़ा धूप का।
2: इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार।

0: आर शकील आजमी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: इस कार्यक्रम के आखिर में हम आपको सुनवा रहे हैं मदन मोहन के संगीत निर्देशन में कैफी आजमी का लिखा गीत, आवाज एक बार फिर लता मंगेशकर की। फिल्म का नाम है महाराजा।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आपने फिल्म महाराजा का ये गीत सुना। गीतकार थे कैफी आजमी। और आज इस कार्यक्रम में हमने आपको मदन मोहन के संगीतबद्ध किए कुछ फिल्मी गीत सुनवाए। और अब यादों की महफिल कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: एक नई खुशी। जे डी एल आई है भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बुरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, बसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, आनंदपुरा, मनोहरपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिमवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
2: अब समाचार होंगी।
3: समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। केंद्र सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY और अन्य ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत 26,000 से अधिक किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 18,907 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के साथ योजना की प्रगति की व्यापक समीक्षा की गई। बैठक में राज्यों को PM जनमन योजना के तहत वंचित और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों वाले क्षेत्रों में अंतिम छोर तक सड़क संपर्क को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज मुख्यमंत्री निवास पर क्रीड़ा भारती राजस्थान और RAC के जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नियमित योग एक स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। प्रदेश में सुगम और सुरक्षित यातायात के लिए पुलिस की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 4 जून से शुरू हुए इस अभियान में अब तक 1,10,000 से अधिक वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सबसे ज्यादा कार्रवाई वाहनों पर लगी ब्लैक फिल्म और नियम विरुद्ध नंबर प्लेट को लेकर हुई है। इसके अलावा अवैध हूटर, लाल नीली बत्ती, प्रेशर हॉर्न और वाहनों की बनावट में अवैध फेरबदल करने वालों पर भी पुलिस पूरी सख्ती बरत रही है। अजमेर केंद्रीय सहकारी बैंक ने अपने अधिकार क्षेत्र की सभी 208 प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों पैक्स को ERP प्लेटफॉर्म पर पूरी तरह से ऑनलाइन कर दिया है। इसके साथ ही ये बैंक राजस्थान का पहला ऐसा केंद्रीय सहकारी बैंक बन गया है जिसकी सभी चयनित समितियां डिजिटल प्रणाली से जुड़ गई हैं। केंद्र सरकार की कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत अजमेर और ब्यावर जिले की इन समितियों को ऑनलाइन किया गया है। इस नई डिजिटल प्रणाली से किसानों को फसल प्रबंधन, बीज और उर्वरक वितरण सहित अन्य वित्तीय कार्यों में अधिक पारदर्शिता और सुविधा मिलेगी। भरतपुर में आज खेत बचाओ अभियान के तहत महिला किसान जागरूकता कार्यक्रम रखा गया। भारतीय सरसों अनुसंधान केंद्र की ओर से रखे गए इस कार्यक्रम में निदेशक विजय वीर सिंह ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को अपनाना जरूरी है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीकों को अपनाकर खेती को लाभकारी और टिकाऊ बनाने का आह्वान किया। उत्तर पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक अमिताभ ने जयपुर में रेल निकुंज पॉली क्लिनिक का उद्घाटन किया। जगतपुरा स्थित रेल निकुंज परिसर में बनाए गए इस पॉली क्लिनिक का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों, पेंशनर्स और उनके आश्रितों को एक ही स्थान पर सभी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना है। यहां मरीजों को एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेद

किया है। प्राधिकरण ने चेतावनी दी है कि किसी भी प्रकार का अनुपालन नहीं करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 और संबंधित विनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में अभी आपने शकील बदायूनी का लिखा ये गीत सुना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। फिल्म का नाम था उड़न खटोला। तो भाई आज तो इस नौका यात्रा पर हमारे बहुत सारे श्रोता शामिल हो गए हैं और एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत बड़ी नाव लेकर चलना होगा क्योंकि बहुत सारे श्रोता आज जुड़ गए हैं। तो चलिए इस नौका यात्रा पर जब हम निकल ही गए हैं तो डरना कैसा है ना भाई। ध्यान से रहिएगा, डरिएगा नहीं। सब अपनी अपनी भूमिका अच्छे से तय कीजिएगा, ठीक है। तो हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि भाई आज का ये पैराग्राफ मुख्य रूप से जो आपने लिखा है, यानी मैंने जो इबारत लिखी है, दार्शनिक और आध्यात्मिक भावनाओं से जुड़ी है जिसे व्यात्मक और मनोरंजक शैली में पिरोया गया है। इसमें जीवन के उतार चढ़ाव को एक यात्रा के रूप में दिखाया गया है और आप लिखते हैं कि इसमें प्रमुख भावनाएं शामिल हैं, वैराग्य, स्वीकृति, जीवन की अनिश्चितताएं और भी बहुत सारी भावनाएं, सहजता से स्वीकार करने का भाव, कठिन परिस्थितियां, तूफानी यात्रा में किसी योग्य गुरु मल्ला या आध्यात्मिक ज्ञान की जो हमें तलाश करनी होती है उसके बारे में भी इस इबारत में आपने लिखा है। तो हमारे श्रोता ने बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात कही है। और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जिंदगी की इस नैया को पार लगाने के लिए हमें न जाने कितने तूफानों का सामना करना पड़ता है। सुख दुख के थपेड़ों के बीच जब हमारी ये नाव डगमगाने लगती है तब दिल किसी मझधार या भंवर में फंसा हुआ महसूस करता है। ऐसे वक्त में जब दूर दूर तक कोई किनारा दिखाई न दे तो उम्मीद का दामन थामे रहना ही समझदारी है। इस जीवन रूपी कठिन यात्रा में सही राह दिखाने के लिए हमेशा एक कुशल मल्लाह यानी माझी या सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है जो इस कश्ती को सुरक्षित किनारे तक पहुंचा सके।

जी तो हमारे श्रोता जो फेसबुक पेज से नहीं जुड़े हैं उन्हें हम आज की इबारत भी बता दें। हमने एक छोटी सी इबारत आपके लिए लिखी है जिसे आप आसानी से समझ सकें और अपनी बात लिख सकें। हमने आज लिखा था कि जीवन रूपी नैया और हमारा ये जीवन का भटकाव हमें ये बताता है कि जिंदगी के सफर में हम ता उम्र भंवर यानी मझदार में खुद को फंसावा पाते हैं। जीवन रूपी सफर में जब कोई किनारा नजर न आए तो हर पल को स्वीकारना ही इस नैया को पार लगाने जैसा होता है। जब भी जीवन रूपी नाव डगमगाए तो जान लीजिए कि इस तूफानी यात्रा को शुरू तो पूरा करने के लिए एक योग्य मल्लाह या आध्यात्मिक ज्ञान की आवश्यकता है। तो ये आज की इबारत थी जिसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो हमारे द्वारा चुने गए गीतों से मेल खाता हो। आज हमने वो शब्द नहीं रखे ताकि आप श्रोता थोड़ा सा सरलता से गीत चुन सकें, इसीलिए आप सबकी खातिर हमने आज थोड़ा सा इस इबारत को इस रूप में रचा। और एक शब्द नैया जिस पर आज हमने कार्यक्रम केंद्रित किया यानी कि सुरीला सफर हम आज इस नाव पर करने वाले हैं। जो गाने नावों पर फिल्माए गए हैं उसी पर आज हमने इस सुरीली यात्रा को रखा है। तो कैसी लगेगी आपको ये यात्रा तो ये कार्यक्रम के अंत में हमें पता लगेगा। इस बीच हम दो सवाल आपके लिए लाए हैं हमेशा की तरह। बहुत ही सीधे साधे सवाल हैं कि आप किसी नौका विहार पर कभी गए हैं? हमारे एक दो श्रोताओं ने लिखा भी है तो आप भी बताइए कहाँ गए थे, कैसे गए थे, क्या रहा नौका विहार का, वो वर्णन आप कर सकते हैं कम से कम शब्दों में। आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी बात कहनी है। और हाँ, नौका विहार पर फिल्माए गए गीतों में आपकी पसंद का कोई गीत जिसे आप बहुत पसंद करते हो, वैसे तो आपने बहुत सारे गीतों को लिखा है लेकिन आप जो बहुत गीत को पसंद करते हो और आपकी नज़र में वो गीत बहुत ही शानदार तरीके से फिल्माया गया है। उदाहरण के लिए अगर मैं बात करती हूँ कि मैं अपनी बात करती हूँ कि फिल्म कश्मीर की कली का गीत जो है ना, ये चांद सा रोशन चेहरा तो वो गीत जो है मुझे बहुत पसंद आता है क्योंकि डल झील श्रीनगर की जो हसीन वादियों में शिकारा पर फिल्माया गया गीत है और शिकारा की जो धीमी गति है और बैकग्राउंड में आपने देखा खूब सारे जो हैं कश्मीरी हाउस बोट्स रखे हुए हैं और वो अपनी बारीक हस्तशिल्प कला से एक शानदार नायाब नमूने हैं। तो कितना सुंदर समा लगता है इस गीत को सुनने के बाद, देखने के बाद। और शम्मी कपूर साहब के तो कहने ही क्या, जब वो जिस एक झटकते अंदाज में अपनी बात कहते हैं। तो इस तरह से आपको भी कोई गीत पसंद होगा उसका जिक्र करें। चलिए चलते हैं अगले गीत की ओर। आवाज़ें लता मंगेशकर और साथियों की, ये फिल्म है सवेरा, गीतकार हैं शैलेंद्र और संगीत दिया है शैलेश ने।

अच्छा बताइएगा कि ये गीत फिल्माते समय आपको कौन से नायक और नायिका एक नाव पर बैठे दिखे, और साथ ही हमने आपको बताया था कि संगीतकार हैं शैलेश, ये संगीतकार कौन से हैं, इनका पूरा नाम क्या है, आपको ये भी बताना है।

तो ये था फिल्म सवेरा का गाना। आवाजें लता मंगेशकर और साथियों की थी। गीतकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे शैलेश। इनका पूरा नाम आपको बताना है और साथ ही ये भी बताना है कि ये गीत यानी ये गीत जो फिल्माया गया है इसमें कौन नायक और नायिका एक नाव पर अलग से बैठे हैं और बाकी दूसरी नावों पर एक कोरस गान हो रहा है जो कि अभी आपने सुना था। हमारे श्रोता का कहना है कि जिंदगी तो एक नैया है जिस पर एक नाव को तूफानी दरिया में पार लगाने के लिए धैर्य संतुलन और सही दिशा की जरूरत होती है। वैसे ही जीवन रूपी नैया को संभालने के लिए कुछ बातों का संतुलन रखना पड़ता है। जीवन में काम परिवार और अपने व्यक्तिगत समय के बीच संतुलन बनाना बेहद जरूरी हो जाता है। जैसे नैया पानी के बहाव के साथ चलती है जिंदगी में उसी तरह दिशा रखनी पड़ती है और इन सबको संभालने के लिए धैर्य सहन शक्ति की जरूरत होती है। जब जीवन में परिस्थितियां विपरीत हो जाए तो घबराने के बजाय धैर्य रखें और सही समय का इंतजार करें क्योंकि सिर्फ खेवैया है जो पार तो वो ऊपर वाले के हाथ में है। जीवन का ये सफर निश्चित रूप से कठिन है लेकिन चुनौतियों का सामना करने से ही अनुभव और मजबूती मिलती है। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का लिखना है कि आज बहुत ही गहरी और दार्शनिक सोच के साथ गद्यांश को रखा गया है और सिर्फ एक शब्द नैया पर ही इसे सीमित कर एक बार फिर नई पहल की है। वैसे आपके नाम में भी नदी का रूप है। अरे वाह क्या बात है, आपको हमारे नाम का अर्थ पता है। आपने लिखा है कि जिंदगी के जल भ्रम में जब जीवन नैया फंस जाए तब जीवन में आए इस तूफानों से विचलित न हो और विश्वास साहस धैर्य सत्कर्म सकारात्मकता और सच्ची श्रद्धा की पतवार थामे तुम अपनी जीवन नैया को खेते जाओ। तब भगवान केवट बनकर इस भवसागर में जीवन नैया को जरूर पार लगाइए। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि प्रदत्त इबारत में संगीत में सुरीला सफर संजीवन भवसागर पार लगाने की महात्म्य पर बखान है। सकारात्मक विचार को पतवार बनाकर जीवन नैया को खेते रहें। जीवन के ज्वार भाटा तूफानी थपेड़ों को सिर झुकाकर सामना कर जीवन नैया चलाते रहें। कभी भी ये सफर किसी भंवर में नहीं फंसेगा। सागर की तरह अपने आंतरिक तूफान को अपने तक हृदयंगम कर शांतचित रहना चाहिए। तूफान सामयिक होते हैं, स्थायी नहीं। नवकल्पना नए रूप की सुरीली सफर स्मरणीय होगी और क्यों न हो स्वयं मंदाकिनी साक्षात संग चलेगी। क्या बात है, क्या बात है। और हाँ, हमारे श्रोता तो भाई बड़ी अच्छी बात लिखते हैं और बड़े प्यारे अंदाज में अपनी बात कहते हैं। एक श्रोता लिख रही है कि आज तो बड़ी ही प्यारी इबारत के साथ आप आई हैं और हमें लग रहा है कि आज आप ही नाव में बैठकर आने वाली है। प्रोग्राम में अगर ऐसा है तो रास्ते में हमारा घर भी आएगा, हमें भी उसी नाव में बिठा ले रहा है। इस बारे हम विविध भारती भी देख लेंगे और मुंबई शहर भी। हम इंतज़ार करेंगे, 1 बजे से पहले पहुँचना भी तो है। बिल्कुल सही कहा, हम नाव पर सवार ही हैं। आज हम सभी इस नाव पर और जीवन रूपी या पर तो हम वैसे ही भी सब सवार ही हैं, लेकिन हाँ इस कार्यक्रम में खास नौका विहार पर हम आज निकले हैं तो मजा लेते हैं इस नौका विहार का। और बताइए हमें कि भाई जो 2 गीत हमने आपको सुनवाए वो आपकी लिस्ट में शामिल थे कि नहीं। थे मुझे पता है क्योंकि मैंने देख लिया है। लेकिन जिन श्रोताओं की लिस्ट में वो गीत शामिल नहीं थे तो कोई बात नहीं, नौका विहार का तो हम

लता मंगेशकर और साथी थे, फिल्म का नाम था चोरी चोरी। हमारे दो सवाल आपने नोट कर लिए होंगे कि आप कभी किसी नौका विहार पर गए, बताइए उसके बारे में, कब गए, कहाँ गए और कैसा रहा नौका विहार। और हमारा दूसरा सवाल ये था कि नौका विहार पर फिल्माए गए गीत जो आज हम बजा रहे हैं या जो गीत फिल्माए गए हैं, वो आपको सबसे, जो आपकी पसंद का गीत है वो कौन सा है और क्यों पसंद है, उसकी फिल्मोग्राफी, मतलब किस तरह से डायरेक्टर ने उस फिल्म को, उस गीत को फिल्माया है, उसके बारे में कम से कम शब्दों में बताइएगा। जैसे कि हमने आपको फिल्म कश्मीर की कली का उदाहरण दिया कि उसमें जिस तरह से गीत को फिल्माया गया है वो मुझे खासतौर से बेहद खूबसूरत लगता है।

हमारे एक श्रोता का कहना है कि जीवन रूपी नैया को पार तो सिर्फ एक खेवैया ही लगा सकता है और वो है हमारे प्रभु श्री राम, लेकिन ईश्वर भी उसी का साथ देते हैं जो खुद अपना साथ देता है। इसलिए इस जीवन रूपी नाव को बड़ी समझदारी और सच्चाई से खेते जाइए और फिर हम पार हो ही जाएंगे। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अपने पापा की पोस्टिंग के कारण मेरा बचपन प्रयागराज यानी तत्कालीन इलाहाबाद में बीता। प्रयागराज में यमुना जी के तट से संगम तक मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ कई बार नौका विहार

आनंद लिया जो बेहद मनोरम लगता है। पिछले वर्ष दिसंबर में चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के रामघाट पर पत्नी और बेटे के साथ मैंने नौका विहार किया है। इससे पूर्व भी चित्रकूट में कई बार हम लोग नौका विहार का आनंद ले चुके हैं। मजे की बात तो ये है कि आज के कार्यक्रम को पेश करने वाली भी वही है जिनका नाम चित्रकूट में और एक क्या कहें आपकी तारीफ के लिए सर आंखों पर। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि ये पंक्तियां जीवन के उस शाश्वत सत्य को रेखांकित करती हैं जिससे हर इंसान कभी न कभी गुजरता है। हम अक्सर जीवन को एक सीधी लकीर मान लेते हैं लेकिन हकीकत में ये एक अनिश्चित समंदर है जहां भंवर जिन्हें हम चुनौतियां कह सकते हैं और मजेदार जो असमंजस का पर्याय है का आना तय है। ये विचार हमें सिखाता है कि जब जिंदगी की नाव डगमगाए तो घबराने की बजाय अपनी स्वीकार्यता की पतवार को थामें और ज्ञान के मल्लाह पर भरोसा रखें, नैया पार लग ही जाएगी। चलिए तो नौका विहार पर जब हम निकले हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म आवारा का गीत। क्या ये गीत आपकी लिस्ट में है? जरा खंगालिए। आवाजें हैं मोहम्मद रफी और साथियों की, शैलेंद्र की बोल, शंकर जयकिशन की धुन।

हमारे श्रोता का कहना है कि नाव वैसे तो समुद्र किनारे रहने वाले मछुआरों की जीविका का प्रमुख साधन है, लेकिन फिल्मकारों ने नाव पर बेहतरीन गाने फिल्माए हैं। पाकिजा का चलो दिलदार चलो तो कश्मीर की गली का ये चांद सा रोशन चेहरा और जिस गली में तेरा घर, चिंगारी कोई भड़के, ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो सुनते सुनते कभी मन भरता ही नहीं है। आज नौकामय संगीत का सफर आनंदमय होगा ऐसा हम मानते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत हैं, इस पार कुछ मगर उस पार बहुत हैं, जिस शहर में तूने खोली है शीशे की दुकान उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत हैं। बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता का कहना है कि इस कश्ती की भी अजब बात है, अक्सर दूसरों को पार करवा कर खुद पानी में ही रह जाती है। इंसान और नाव में बस इतना ही फर्क है। क्या खूब बात कही है आपने। एक श्रोता लिखते हैं कि नदी के किनारे घाट पर बैठकर चांदी से चमकती लहरों के बीच धीमे धीमे चलती नाव देखने का जो सुख है वो अवर्णनीय है। ये पल बिल्कुल ऐसा है जैसे दिन और ढलती शाम के बीच कोई मीठी सी बात हो जो सिर्फ शांत लहरों

भी सुनी जा सकती है। नदी की लहरों पर नाव में बैठे हुए अपनी परछाई इस खूबसूरत पल को चुपचाप निहारती रहती है। सब कुछ सादा और प्यारा, पेड़ों की धुंधली सी दिखाई देती पंक्तियां, गीली घास की गंध अंधकार को चीरता हुआ नदी किनारे स्थित मंदिर का कलश, ये सब नदी के हृदय हैं। और चप्पू चलाता मांझी पानी के सुर से सुर मिलाकर पूरी कायनात को जैसे संगीत से भर देता है। बहुत सुंदर क्लासिक लिखी है आपने इबारत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि रामायण में जब भगवान श्री राम जी केवट की नाव में जाते हैं तो पहले माता सीता जी को हाथ पकड़ नाव में चढ़ाते हैं, यानी कि कोई भी यात्रा हो धर्म पत्नी को आगे रखकर उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज की जो इबारत है आध्यात्मिक चौखट पर लाने का एक अच्छा प्रयास किया गया है और इस भव सागर में विभिन्न प्रकार के भव जंजाल रूपी उर्मियों से ही हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार लगाने हेतु कुशल ही नहीं अपितु चतुर सेवक केवट जैसे मल्लाह की अपेक्षा की गई है। ये हर एक के हिचकोले खाती जीवन रूपी नैया को पार करते रहने का बहुत ही सरल उपाय है, किंतु इस दर तक भी कितने पहुंच पाते हैं, और वो भी जबकि हम केवल इतने शब्दों के बीच जीवन नैया पे ही उलझे रहेंगे, फिर मल्लाह के गुण और अवगुणों पर कैसे पहुंच पाएंगे। अरे भाई, इसके लिए हमें कुशल ही नहीं अपितु चतुर नाविक भी तो बनना पड़ेगा। बहुत सुंदर इबारत लिख रहे हैं हमारे श्रोता, हमें तो पढ़कर बड़ा मजा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि नैया जब पानी पर उतरती है तो लहरों से समझौता नहीं करती, उनसे रिश्ता बना लेती है, शायद इसलिए वो हर मुश्किल सफर को आसान बना देती है। किनारे पर खड़ी नैया सुरक्षित जरूर रहती है, लेकिन उसकी असली पहचान तो सफर से ही बनती है। एक श्रोता का लिखना है कि आज की इबारत तो सीधे तौर पर जीवन और अध्यात्म से जुड़ी है। जीवन की क्षणिकता, नश्वरता, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवन जीने के साहस का प्रतीक है। मनुष्य जीवन एक कागज की नाव के समरूप है। मानव जीवन शरीर सांसारिक आशाओं का द्योतक है। जिस प्रकार कागज की बनी नाव का संसार रूपी सागर के अथाह पानी की अनंत गहराई में कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, उसी प्रकार मनुष्य जीवन भी क्षणभंगुर होता है। बहुत सुंदर, आपने अब सभी ने अपनी इबारत हमें लिख भेजी है। मन तो कर रहा है कि इन इबारतों को पढ़ते ही जाएं, लेकिन अब हमें थोड़ा सा संगीतमय भी होना पड़ेगा। तो आपके लिए लेकर आए हैं हम फिल्म उपहार का गाना, मुकेश और साथियों की आवाज़ों में आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की धुन। ये गाना भी आपकी लिस्ट में शामिल है, ज़रा खंगालिए है।

हमने आपसे सवाल किया था कि फिल्म सवेरा का जो गीत आपने सुना था ओ परदेसी, उसमें नायक और नायिका कौन बैठे दिखाई देते हैं नाव पर। आपने अभी तक जवाब ही नहीं दिया, हम तो ढूंढ रहे हैं। खैर, आपने जवाब दिया कि नहीं, हमें तो जवाब देना पड़ेगा। मीना कुमारी और अशोक कुमार एक नाव पर अलग से बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने ये भी पूछा था कि इस फिल्म के संगीतकार कौन है, जिनका नाम हमने शैलेश बताया था। पूरा नाम है शैलेश मुखर्जी। अगर आपने सही जवाब दिया है तो हमें मिल जाएगा, तो हम ज़रूर उसको पढ़ेंगे। और अब हमने जो सवाल हमारे श्रोताओं से किए थे, श्रोताओं ने जवाब देने शुरू कर दिए हैं। आप लिखते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में मुकेश जी के गीत बहुत ज़्यादा हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि वाह वाह, गीत संगीत में ही खो गए हैं और इस गाने में ही नौकायन में हो गए हैं। माँ जी नैया ढूंढी किनारा, इस गीत से हमें बेहद मज़ा आ रहा है। एक श्रोता लिखते हैं कि ऐसी कोई मौज नहीं जिसको कोई खोज नहीं, कोई ना कोई सबको लगता है प्यार, क्या कहना है इस गीत का। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि नौका विहार तो बहुत बार किया है, पर पन्ना सफारी के दौरान कैन नदी में किया हुआ नौका विहार ताम्र याद रहेगा। साफ स्वच्छ पानी, नीचे तक स्पष्ट दिखाई देती रेत और पत्थर, साथ में चारों ओर घना जंगल, आह क्या ही खूबसूरत नजारा था। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि केवट बड़ा चतुर और होशियार था, उसने प्रभु राम से कहा कि हम और आप दोनों एक ही हैं, मैं नाव से नदी पार करता हूं और आप भवसागर से पार करते हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि चेन्नई, गोवा, थाईलैंड, इजिप्ट सभी समुद्र से घिरे हैं और सब जगह घूम के आई हूँ, क्या बात है। थोड़ा सा बताते कैसा लगा आपको वहाँ घूमना, तो हमें भी अच्छा लगता, हम भी मन की आंखों से नौकायन कर लेते। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि कटी पतंग का जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद आता है और ये जो गीत आपने बजाया मांझी नैया, ये गीत बहुत ही प्यारा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मेरी 14 गीतों की लिखी हुई इबारत में पहले नंबर पर लिखा हुआ गीत शामिल हुआ है मांझी नैया ढूंढे किनारा, तो बधाई हो आपको। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बहुत सारे गाने हैं जो हमें पसंद हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं बिहार से हूँ जहाँ नदियों पर पुलों की बहुत कमी थी। हमारे ज़माने में गंगा नदी पर एक ही पुल था, इसलिए सभी गंगा पार नावों से ही करते थे। पर मुझे गंगा की वो शाम की याद आ रही है जब मैं और मेरा दोस्त नाव पर यूं ही सवार थे। सूर्य भगवान अस्ताचल में प्रवेश कर चुके थे, आकाश में लालिमा छाई हुई थी और हम दोनों और मेरा नाविक बस इतने ही थे। तभी मेरे दोस्त ने गुनगुनाना शुरू किया, वो शाम कुछ अजीब थी। उस समय मैंने फिल्म खामोशी नहीं देखी थी।

वो गाना मुझे उस समय बहुत सुंदर लग रहा था। और एक बात मैं आपको कहूँ, हमारा अगला गाना भी यही है। हाँ चलिए थोड़े से और संदेश पढ़ लेते हैं, फिर आपको सुनवाते हैं फिल्म खामोशी का ये गीत। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारा गीत आपको याद है ना मंदाकिनी जी? याद तो है, लेकिन वो गीत आज हमने शामिल किया है कि नहीं, ये तो आपको अंत तक कार्यक्रम में सुनना पड़ेगा। वहीं श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार करना मुझे बहुत पसंद है। हम जब कश्मीर घूमने गए थे तब हाउस बोट में 3 दिन रहे और शिकारे पर बैठकर लेक की सैर की। वहीं चार चिनार नामक स्थल देखा। जहां भी घूमने जाती हूं वहां झील होगी तो नौका विहार जरूर करती हूं। केरल में पेरियार नदी में, नैनीताल के झीलों में, अरे वाह आप नैनीताल भी गई, महाबलेश्वर जैसी बहुत सी जगहों का आनंद मैंने लिया है, बहुत खूब। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि मैं पहले आसाम में रहता था, तब एक नौका में बैठने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। उस समय डर भी लगा, सोच रहा था कि उस समय पता नहीं नौका कैसे पार लगेगी नदी पर, साथ में और भी व्यक्ति थे, हौसला बना रहा था। पर उस समय मेरे मन में एक सवाल उठा कि पानी तो बहुत ज़्यादा है, इतना जैसे दुनिया में पानी ही पानी है, ज़मीन तो दिखाई नहीं दे रही, इतना पानी तो शायद पूरी दुनिया को ही डुबो देता है, ऐसा मुझे डर लग रहा था। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि बहुत सारी जगह मैंने घूमा है, अभी 2-1 साल पहले ही भेंट द्वारका जाते समय नए समुद्री पुल के उद्घाटन से पहले स्टीमर से समुद्र पार कर बेट द्वारका गए थे। और कन्याकुमारी में भी स्वामी विवेकानंद स्मारक स्टीमर से गए, भले ही अपने गंगा जी में नाव पर सवार न हुए हों, लेकिन अमरकंटक नर्मदा नदी पर जाना चाहते हैं। अच्छा, और वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि नौका विहार का सबसे अच्छा गाना मुझे लगता है फिल्म सफर का, नदिया चले चले रे तारा तुझको चलना होगा। बहुत ही प्रेरणादायी शब्दों से इस गीत को लिखा है। आदमी कितना ही हताश परेशान हो, उस गाने को सुनकर नए उत्साह से आगे बढ़ने की और कूच कर देता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आवारा फिल्म का गाना कम ही सुना है, सिर्फ देखते समय ही सुना है, कयास लगाना कठिन है लेकिन गाना बेहद सुंदर है। तो चलिए सुनते हैं फिल्म खामोशी का गीत, किशोर कुमार की आवाज़ में, गुलजार साहब की बोल है, हेमंत कुमार साहब की धुन।

हमारे श्रोता ने लिखा है कि वो शाम कुछ अजीब थी, ये गाना जो अभी आप सुना रहे हैं वो शाम कुछ अजीब थी मेरा सबसे पसंदीदा नौका विहार का गाना है, जहां प्यार की उत्कटता और विषाद को एक साथ दिखाया गया है और सिर्फ चेहरे के हाव भाव गीत के अनुपम शब्दों को सजीव कर रहे हैं। बहुत सुंदर लिखा है आपने। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि दिल ने फिर याद किया, फिल्म का शीर्षक गीत का सुंदर नैसर्गिक प्राकृतिक सौंदर्य के बीच नाव का दृश्य मन मोह लेता है। रहमान, धर्मेंद्र और नूतन की प्रभावशाली भूमिका वाली ये जो गीत है वो मुझे बेहद पसंद है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि परदेसियों से ना आंखियां मिलाना वाला गीत मुझे बेहद पसंद है। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि करीब 2000 के आसपास मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा केव्स आते जाते और दूसरे दिन आपके हॉल के कार्यालय के पास के गोराई बीच से एसलवर्ड जाना हुआ था। अच्छा, वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि सुरीला सफर में अभी तक जितने भी गीत बजे हैं उनमें से तो एक भी हमारी लिस्ट में नहीं है। अरे, फिर आपकी लिस्ट में कौन से गाने थे? वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म मिलन का गीत मुझे बेहद पसंद है, सुनील दत्त और नूतन जो नाव में बैठकर गाने गाती हैं वो गाना बहुत ही पसंद आता है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप लोग जो गीत सुनवा रहे हैं वो बहुत ही बकवास गीत हैं, एक भी ऐसा गीत लोकप्रिय नहीं सुनवाया है जिसको सुनकर मन खुश हो। जब हमने विषय सुना था तब लगा था कि एक से बढ़कर एक मनभावन गीत सुनने को मिलने वाले हैं, लेकिन बिल्कुल बेकार चयन किया गया है। क्या कहें आपको, आपकी पसंद और हमारी पसंद शायद नहीं मिलती होगी, यही कह सकते हैं, है ना? वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आज की इबारत बहुत ही शानदार है और वास्तविकता से जुड़ी हुई है। है कौन यहाँ पर जिसकी जीवन रूपी नैया दुखों तो रूपी तूफानों से न डगमगाई हो, लेकिन जिसने भी सच्चे मन से अपने परम पिता परमेश्वर को याद किया उसका जो है उसकी डगमगाती नहीं है, सही हो गई है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन में कागज़ की नाव बनाते थे, अब नाती के लिए बनाकर फिर से बचपन को जी लेते हैं। क्या बात है, बहुत सुंदर। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि आप बीच में जो चिंगारी कोई भड़के वाली गीत की धुन सुनवा रही हैं उसमें बहुत ही आनंद आ रहा है। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो आज जो गीत आप सुनवा रही हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं और आप ही के नाम पर आधारित नदी पर बात हो रही है, लेकिन हम अगर 1986 की बात करें तो रेलवे सर्विस की परीक्षा देने के लिए कलकत्ता गया था। आने जाने का रेलवे पास रेलवे डिपार्टमेंट ने ही हमें दिया था। परीक्षा देने के बाद भी वो पास 3 दिन तक मान्य था। इस दौरान मैंने कलकत्ता और हावड़ा शहर घूम लिया। इसी दौरान हावड़ा ब्रिज के नीचे बहती हुगली नदी में नाव की सवारी करने का मौका मिला, जो बहुत ही रोमांचित रहा। इसी तरह ब्रिज घाट गढ़मुक्तेश्वर में नाव की सवारी करने का मौका मिला। इसके अलावा दिल्ली में यमुना नदी और कर्तव्य पथ इंडिया गेट के पास बहती हुई धाराओं में भी नैया में सफर करने का मौका मिला है। और उम्मीद करते हैं कि आज ये सभी गाने उन पुरानी यादों को ताजा कर देंगे। बिल्कुल ताजा तो कर ही रहे हैं, आपको लग ही रहा है कि आज हम जो गीत सुनवा रहे हैं आपको अपने उन बीते दिनों की याद आ गई है ना। चलिए सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज, फिल्म का नाम कटी पतंग, आनंद बख्शी की रचना, राहुल देव बर्मन की धुन। आपकी लिस्ट में एक गीत था ना।

हमारे श्रोता लिख रहे हैं कि दो लफ्जों की है कहानी ये गाना और कहां ले चले हो मुसाफिर दुर्गेश नंदिनी का, ये दोनों गाने अभी तक नहीं बजे क्यों? बिल्कुल सही कहा आपने, दो लफ्जों की है कहानी तो हमने इसलिए नहीं बजाया कि हमने सोचा कि फिर आप श्रोता शिकायत करेंगे कि भाई कितनी बार तो ये गीत और सभाओं में बज गया है और आज फिर इस गाने को मंदाकिनी जी लेकर आ गई हैं, तो हमने उस गाने को इस कार्यक्रम में शामिल नहीं किया। हाँ, दुर्गेश नंदिनी का गाना तो शामिल नहीं हुआ, चलिए फिर किसी और कार्यक्रम में इस गाने को हम लेकर आएंगे, ठीक है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि अरे वाह क्या बात है, दो जासूस का गीत पुरवैया लेके चलूं वाला, ये तो अब अगला गीत है आपकी पसंद का जो आप सुनने वाले हैं। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि हमारे देश में कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर से रोज नदी या समुद्र के किनारे दूसरे किनारे डेली अप एंड डाउन करते हैं, नौकायन से सफ़र करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे कि लोग मुंबई में ट्रेन से सफ़र करते हैं, बसों से सफ़र करते हैं, ऐसे नौकायन लोग करते हैं, रोज नौका के द्वारा सफ़र होता है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि जब हम कनाडा गए वहाँ गाँव नाव में बैठे किसी जन्नत से कम नहीं लगा, हम उसे कैसे बयां करें समझ नहीं आ रहा है। वहीं एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो गाने आप सुनवा रही हैं हमें तो ये गाने बहुत पसंद आ रहे हैं। वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि एक से बढ़कर एक गाने प्रस्तुत कर तीव्र गति से कार्यक्रम का संचालन प्रशंसनीय है। वहीं एक श्रोता कहते हैं कि आज वो शाम अजीब हो न हो लेकिन सुरीले सफर की दोपहर बड़ी ही सुंदर हो गई है नौका विहार करते हुए छोटी बहना के संग, क्या बात है, शुक्रिया। एक श्रोता लिखती है कि सिर्फ मुझे ही फील हो रही है आज, हर गीत सुन कम रही हूँ फील ज़्यादा कर रही हूँ, हूबहू नाव वाला दृश्य जहन में और जल तरंग की ध्वनि गूंज रही है जैसे तिलस्मी इबारत है ये, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि एक गाना कश्ती का खामोश सफरिया आपने नहीं आज लिया, बिल्कुल नहीं लिया, अगली बार किसी कार्यक्रम में इसे ज़रूर शामिल करेंगे। वहीं श्रोता लिखते हैं कि मैंने कन्याकुमारी मथुरा थाईलैंड फुकेट दुबई यूएसए नायगरा फॉल पटना से गंगा जी और चंदोद में नर्मदा जी में सभी जगह नौका विहार किया है और मुझे सबसे अच्छा नायगरा फॉल बहुत ही पसंद आया है, क्या बात है। एक श्रोता लिखते हैं कि फिल्म नैया का गीत लेना था, तेरे आने से सज गई ये टूटी फूटी नाव, बिल्कुल सही कहा आपने, इतने सारे गीत हैं किसे लिया जाए किसे छोड़ा जाए समझ नहीं आता है, लेकिन आज हमने उन गीतों को याद किया, ये क्या कम है। चलिए बढ़ते हैं अगले कदम की ओर।

0: लता मंगेशकर, शैलेंद्र सिंह और साथियों को आपने सुना। फिल्म का नाम था दो जासूस। गीतकार हसरत जयपुरी थे और संगीत दिया था रविंद्र जैन ने। इस गाने के साथ ही आज का सुरीला सफर कार्यक्रम की अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, ये पूछते हुए कि कैसा लगा आपको आज का ये नौका विहार। अच्छा लगा ना? तो चलिए, याद रखिएगा इस नौका विहार को, मन में संजो कर रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसी उम्मीद के साथ कि आज का ये नौका विहार आपको पसंद आया होगा। अब इस कार्यक्रम से, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम से, मंदाकिनी जोशी को दे दे इजाजत। फिर मिलूंगी किसी और कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।
1: जन जन जब अपनाए योग, जीवन सदा रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, योग फॉर हेल्दी एजिंग के मौके पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय की पहल योग संगम,
2: 21 जून सुबह 6 बजे जंतर मंतर जयपुर में जुड़िए विशाल योग संगम में। NIA और आयुष मंत्रालय आपको सादर आमंत्रित करते हैं।
3: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
4: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
5: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली। प्रायोजक हैं देवदर्श।

दोस्तों नमस्कार। जीवन और मृत्यु एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जन्म का मतलब है एक अलग सीमित रूप में आना। जैसे हम जन्म लेते हैं, हम एक नाम, एक शरीर, एक समय और एक कहानी में बंध जाते हैं। ये आना अपने साथ एक वादा या सच्चाई लेकर आता है, वो ये कि ये देह रूप एक दिन चला जाएगा। इसीलिए जन्म के क्षण में ही मृत्यु का बीज बो दिया जाता है। जन्म मृत्यु की ओर पहला कदम है। ये जीवन का सबसे अटल और अनिवार्य सत्य है। हम सब इस हकीकत को जानते हैं, फिर भी मृत्यु के नाम से, उसके भय से ही हमें कपकपी महसूस होने लगती है। यूं देखा जाए तो हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की यात्रा में अकेला ही होता है। सुख दुख साझा किए तो जा सकते हैं, लेकिन उन्हें भुगतना तो अकेले ही पड़ता है। जीवन की शुरुआत और अंत तय है, इसीलिए हर पल को पूरी तरह से जीना बहुत महत्वपूर्ण है।

अपने कर्मों को सुधारना ही वास्तविक जीवन है। मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जो जीवन हमें मिला है उसे किस तरह जीना है ये तो हमारे हाथ में है। इसीलिए जब तक हम जी रहे हैं और हमारे प्रियजन भी जी रहे हैं, तब तक इस जीवन के एक एक क्षण को जी लें और इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाएं।

दोस्तों, हम यही सुनते आए हैं कि इस संसार का संचालन और नियंत्रण एक सर्वोच्च शक्ति के द्वारा होता है। हर प्राणी में परमात्मा का अंश मौजूद है। संसार का नियम है कि जो इस संसार में आया है उसका अंत निश्चित है। सुख दुख, लाभ हानि और जीवन के उतार चढ़ाव आते जाते रहते हैं। इन्हें समान भाव से स्वीकार कर लेना ही सच्चा ज्ञान है। हर एक चीज़ का आरंभ उसके अंत के साथ ही होता है। सूर्य का उदय होता है तो अस्त भी होता है। वसंत में नए पत्ते की कोपल फूटती हैं तो पतझड़ में पूरा पत्ता ही गिर जाता है। जब हमारा कोई प्रियजन हमें छोड़कर चला जाता है तब जीवन में एक खालीपन आ जाता है जिसे कोई नहीं भर सकता। ऐसे में कई दुख हमें घेर लेते हैं और जीवन की क्षणभंगुरता को लेकर मन में कई सवाल उठ खड़े होते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। टेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और PM जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने

0: निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
0: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्णा राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में

0: सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ORS, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए DTC बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर हॉर्मुस जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं आएगा और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में

0: जे हुआ, शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। घरेलू शेयर बाजारों में आज मामूली बढ़त देखी गई। समाचार तैयार किए जाने तक सेंसेक्स 158 अंक बढ़कर 77,314 पर और निफ्टी 41 अंक बढ़कर 24,127 पर कारोबार कर रहा था। अब जानकारी मौसम की। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक तेलंगाना, ओडिशा, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। विभाग ने असम, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना व्यक्त की है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में अगले 2 दिनों में मूसलाधार वर्षा हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, ओडिशा और उत्तरी कर्नाटक के आंतरिक हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ आंधी की आशंका है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के प्रमुख कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इनकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

लीजिए सुनिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत। यह आवाज़ लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम है आरजू। गीतकार हसरत जयपुरी, संगीतकार शंकर जयकिशन।

0: यह आवाज थी लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम था आरजू।
1: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
2: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: एक टुकड़ा धूप का।
1: इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
2: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: कार्यक्रम का अगला गीत सलील चौधरी के संगीत निर्देशन में शैलेंद्र का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का है और फिल्म का नाम है चांद और सूरज।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे कार्यक्रम की अगली पेशकश अनिल बिस्वास का संगीत, शैलेंद्र के बोल, लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें, फिल्म का नाम छोटी छोटी बातें।

0: एक जानी मानी पेंटर जो अपनी कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने फिल्म सिकंदर ए आजम से लिया है। गायिका लता मंगेशकर है, रचनाकार राजेंद्र कृष्ण और धुन हंसराज पहल की।

0: आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: कार्यक्रम का अगला गीत हमने कैफी आजमी का लिखा हुआ लिया है, इसे संगीतबद्ध किया है हेमंत कुमार ने, स्वर है लता मंगेशकर और साथियों की, फिल्म का नाम दो दिल।

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविद भारती पर।
2: मदन मोहन की संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनिए। आवाज लता मंगेशकर की है और ये फिल्म है अकेली मत जाइयो।

जीवन में करे योग, रहे निरोग और बढ़ती उम्र में भी बने स्वस्थ और सक्रिय। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनाएं योगा फॉर हेल्दी एजिंग का संदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ इस 21 जून सुबह 6 बजे जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का हिस्सा बनिए।

0: बिल्कुल चंचल, आपको और सभी सखियों को, सभी सखाओं को आरती श्रीवास्तव का बहुत बहुत नमस्कार।
1: अब बताते हैं कि भाई आज किन विषयों पर बात होने वाली होगी। तो जैसा हमारे सभी श्रोता जानते हैं, गुरुवार का दिन है और होता है कहानी पद्मश्री की। एक ऐसी महिला जिसने कुछ ऐसा काम किया है जिसे पूरे देश दुनिया में जाना गया, उन्हें मिलता है पद्मश्री, उनकी हम बात करेंगे। तो वो कौन है?
0: वो है बसंती देवी बिष्ट, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला जागर लोकगायिका हैं।
1: बिल्कुल, इनके बारे में आज बातचीत होगी।
0: हाँ।
1: और आज एक खास दिन भी है, सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, इसके बारे में थोड़ी जानकारी दी जाएगी।
0: बिल्कुल, और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा

0: बिल्कुल। और आज मुझे कुछ कहना भी होगा, तो उसके अंतर्गत हम बात करेंगे ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा क्या रहा आपका।
1: बिल्कुल, सबका कुछ ना कुछ अनुभव रहा होगा,
0: क्योंकि शॉपिंग सभी करते हैं ऑनलाइन।
1: हाँ।
0: तो आपने अगर शॉपिंग करी है तो उसमें आपने ऐसी क्या चीज ली कि आपको पछतावा कि अब हम कभी नहीं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे।
1: तो इस बारे में जरूर अपने अनुभव हमारे साथ ही हमसे साझा करेंगे, और कुछ उपयोगी टिप्स होंगे जो हमारी सखियां हमें बताएंगी कि खाना बनाते समय कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत उपयोगी हो सकती हैं। भाई खाना अगर जल्दी पकाना है तो क्या, तुरंत घर पे मेहमान आ गए तो फटाफट क्या बन सकता है, तो इस तरह के जो भी
0: क्या चीज अगर कुछ कम ज्यादा हो गया है तो उसको कैसे बैलेंस कर सकते हैं उसके बारे में भी बात।
1: इसके अलावा लंबे समय तक अगर आपको सहेज कर रखना है किसी खाने पीने की चीज को, चाहे वो पकी हुई है या कच्ची है, उसके बारे में भी उपयोगी टिप्स हमें सखियां बता सकती हैं।

0: तो हम बात कर रहे हैं भाई
1: बसंती देवी बिष्ट की
0: जो है उत्तराखंड की पहली जागर गायिका। और हम बता दें कि इनका जन्म हुआ 1953 में उत्तराखंड के चमोली जिले के लुबानी गांव में। और उनकी माँ बहुत अच्छा गाया करती थी और अपनी माँ के साथ जो वो जो गीत सुनते सुनते बड़ी हुई तो गांव में जो मेले लगते थे जो त्यौहार होते थे तो माँ के साथ वो गाने भी गाया करती थी। और इसी दौरान गाते गाते उन्हें भी इन गीत से उस संगीत से जो लोक संगीत था वहाँ का उससे प्यार होने लगा। और भाई जब आपके खून में कोई चीज़ रच बस जाती है ना तो जब आप उस चीज़ को गाते हैं तो वो बड़ी दिल से आवाज़ निकलती है।
1: बिल्कुल, और वो पूरा जो माहौल था ना वो बचपन से उनको मिल गया था और गायन के इस प्रेम की वजह से उन्हें पारंपरिक जागर गायन शैली को नई पहचान दिलाने के लिए जाना जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो जागर गायन करने वाली पहली प्रमुख महिला कलाकार मानी जाती हैं। ये जागर कला उत्तराखंड की लोक परंपरा से जुड़ी हुई है जिसमें देवी देवताओं और लोक देवताओं को याद किया जाता है।
0: और आरती ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो जागर शैली परंपरागत रूप से पुरुष पहले प्रस्तुत किया करते जैसे आपने भी कहा ना कि वो पहली महिला गायिका है तो महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में आ सके ना इसीलिए इस परंपरा को तोड़ने वाली बसंती देवी ही रही। और तब से लेकर आज तक वो लोक गायन की जो परंपरागत शैली है यानी कि जागर गायन की हम बात कर रहे हैं इसको संरक्षित करने के प्रयास में लगी हुई हैं वो और कैसे इसको आगे बढ़ाया जाए इसके भी प्रयास कर रही हैं। और उनके बारे में एक बात और भी गौर करने वाली है कि 5वीं कक्षा की जिला बोर्ड परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त करने वाली थी वो पहली छात्रा।
1: मतलब बहुत कुछ उन्होंने पहला काम किया है तो और उन्होंने आगामी 3 वर्षों के लिए आगे की पढ़ाई के लिए प्रति माह 20 रुपये की छात्रवृत्ति से भी सम्मानित किया गया था लेकिन वो आगे की पढ़ाई जारी नहीं रख सकी क्योंकि उच्च विद्यालय उनके घर और गाँव से बहुत दूर था और गाँव के स्कूल में 5वीं कक्षा से आगे की जो पढ़ाई होती है वो नहीं होती थी। यही मुख्य कारण था कि वो आगे की पढ़ाई अपनी जारी नहीं रख पाई थी।
0: और फिर क्योंकि पहले के ज़माने में भी बच्चियों के विवाह भी छोटी उम्र में हो जाया करते थे गांव में खासतौर पे ऐसा हुआ करता था तो उनके साथ भी ऐसा हुआ कि जब वो सिर्फ 15 साल की उम्र थी तो उनका विवाह हो गया और तोपखाने के एक सैनिक में जो थे उनके साथ उनका विवाह हुआ और जीवन का अधिकांश समय एक गृहिणी के रूप में ही उन्होंने अपना बिताया। पेशेवर संगीत करियर की शुरुआत उन्होंने की जब वो 40 बरस की हो गई थी और अपने पति के साथ जब वो जालंधर गई तो वहाँ उन्होंने एक प्राचीन कला केंद्र में फिर से एक बार संगीत सीखने की शुरुआत की और उनकी बेटी ने उनके शिक्षक के तौर पर हारमोनियम बजाने की शुरुआत की।

0: 1986 में नजीबाबाद स्थित अखिल भारतीय रेडियो स्टेशन में काम करना शुरू किया, यानी वो रेडियो से भी जुड़ी हुई थी और वो
1: जुड़ी हुई नहीं, वो ए श्रेणी की
0: कलाकार थी। देखिए मतलब जमीनी स्तर से उन्होंने अपना काम करना शुरू किया।
1: और साल 1996 की हम बात कर रहे हैं, तब वो पहली महिला प्रधान भी बन गई अपने क्षेत्र की। और कुछ समय के बाद जब उनको लगा कि बचपन में अपनी माँ

0: लिस्ट की सबसे प्रसिद्ध रचनाएं हैं गोरिया रे, धोखेबाज दगड़िया, न्योली, प्यारी सुमना, दाजीऊ बॉर्डरा और फ़ोन करना, ओ स्याली साली रुकमा, पारा भीड़ा जादियो और देवारा जारेजू और भी बहुत सारी हैं।
1: तो हमारे जितने भी सुनने वाले हैं, अगर वो सुन रहे हैं और इस क्षेत्र के वो लोग हैं, तो वो ज़रूर जानते होंगे इन पंक्तियों को जो तो आपने बताई भी कि उनके प्रसिद्ध गीत कौन से हैं और ये किस तरह गाए जाते हैं, वो इस बारे में भी जानते होंगे।
0: ये रुकमा वाला तो मैंने सुना हुआ है
1: जी। और बसंती देवी की जो उपलब्धियाँ हैं, उनके जो पुरस्कार हैं, अगर इनकी बात करें तो बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा राष्ट्रीय मातोश्री अहिल्या देवी सम्मान से उन्हें नवाजा गया। लोक संगीत के क्षेत्र में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। तो बात लोक धुनों की हो रही है, एक ऐसा गीत सुने जिसमें कुछ लोक धुन जैसी झलक मिलती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में हम बात कर रहे थे ना कि सबका कुछ ना कुछ अच्छे के साथ साथ बुरे अनुभव भी जुड़े होते हैं।
1: बहुत सारे लोगों के रहते हैं अनुभव, कभी अच्छे भी रहते हैं तो बुरे भी रहते हैं।
0: और आज हम इसी के बारे में बात कर रहे हैं, अगर कोई बुरा अनुभव रहा और आपको पछतावा हुआ कि क्यों आपने ऑनलाइन शॉपिंग कर ली, इसे तो अच्छा होता कि थोड़ी से हम कष्ट लेते, बाजार जाते और वो चीज़ खरीद लाते।
1: बिल्कुल, क्योंकि बाजार जाके उस चीज़ को छू के देखना, पकड़ के देखना, उसके बारे में पूरी जानकारी लेना उस दुकानदार से, वो एक अलग बात हो जाती है। और जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हम उस ऐप पे देखते हैं कि उसके बारे में क्या जानकारी दे रखी है, और पूरी दे रखी है भी कि नहीं वो भी हमें नहीं पता होता है।
0: कई बार तो हम सिर्फ लुभावने ऑफर देखकर वहां से शॉपिंग के लिए चले जाते हैं।
1: बिल्कुल, या हम देखते हैं कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है।
0: हाँ, और जब सामान हमारे पास आता है तो या तो उसकी क्वालिटी बहुत खराब होती है, या तो एक के साथ एक फ्री वाला जो ऑफर था ना, वो फ्री की चीज मिली नहीं और हमसे डबल पैसे में वो चीज हमें सिंगल ही दे दी गई। तो इस तरह के अगर अनुभव रहे हैं तो इसके बारे में देखो ना कितने सारे कमेंट्स आ रहे हैं। एक श्रोता हमारे लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग आजकल बहुत सुविधाजनक है, लेकिन कई बार लोग आकर्षक ऑफरों और छूट के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत ही नहीं होती, और बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या फिर बेहतर और कीमत से बेहतर नहीं होता, कीमत कहीं ज़्यादा होती है तो पछतावा होता ही है। इसीलिए ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी और उसके जो रिव्यू हैं वो कीमत की जानकारी अच्छी तरह कर लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल। और एक और श्रोता है मेरे जो लिखते हैं कि बात कोई भी हो उसके दो पहलू होते हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू, उसी तरह ऑनलाइन शॉपिंग के भी दो पहलू होते हैं। आप कोई भी चीज़ कहीं से भी कभी भी घर बैठे ऑर्डर देके मंगवा सकते हैं, खरीद सकते हैं, डिस्काउंट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अन्य खरीदारों के रेफरेंस पढ़ सकते हैं, फिर भी इसमें नुकसान होने की संभावना रहती है।

0: आप उत्पाद को फिजिकली देखकर या छू नहीं सकते, फिटिंग का भी पता नहीं लगा सकते। उसके अलावा आजकल ऑनलाइन फ्रॉड की ज़्यादा संभावना रहती है, असली के बदले नकली उत्पाद भेज दिया जाता है, तब या कोई चीज़ पसंद नहीं आने पर वापस भेजने के बाद रिफंड प्राप्त करने में ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये प्रलोभनों से आप बच के रहिए।
1: बिल्कुल, हमें किसी ब्रांड नेम को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि इतने बड़े ब्रांड का सामान हमें कम कीमत में मिल रहा है, लेकिन उसी की जो दूसरी तीसरी कॉपी होती हैं, अब दरअसल ये वो वाली कॉपीज होती हैं जिन्हें सेकंड या थर्ड में हम निकाल कई लोग निकालते हैं। तो हमें सिर्फ फोटो देखकर अंदाजा नहीं हो पाता और इस तरह की जो प्रलोभन है उनमें फंसकर हम गलत चीज़
0: बिल्कुल। और कई बार ऐसा होता है ना, जो हम कपड़े मंगाते हैं उसकी फिटिंग उसमें दे रखी होती है जो वो नहीं निकलती, या रंग एकदम अलग होते हैं उससे।
1: हाँ।
0: तो इस तरीके की चीज़ें भी काफ़ी होती हैं। कपड़ा जो दिया होता है कि ये वाला कपड़ा है, वो कपड़ा भी नहीं होता। तो इस तरीके के फ्रॉड काफ़ी होते हैं।
1: रंग की तो जब आपने बात कही, तो मान लीजिए आपके और मेरे दोनों लोगों के हाथ में अलग अलग फ़ोन है, एक ही रंग पर हम जब पिक्चर क्लिक करते हैं तो आपके फ़ोटो से वो कलर अलग आ सकता है, मेरे मोबाइल से जब पिक्चर क्लिक की जाएगी तो उसका रंग थोड़ा अलग हो सकता है। तो इसी तरह की कुछ बातें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, जो रंग हमें दिखते हैं वो असल रंग से थोड़े से भिन्न हो सकते हैं। और किसी भी तरह की चीज़ें हम खरीद सकते हैं ना। तो हमारे एक श्रोता जिन्होंने कुछ पौधे खरीदे वो अपना अनुभव लिख रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में पौधों की खरीदारी मैं करती हूँ, कुछ पौधे अच्छे मिलते हैं, कुछ ख़राब भी निकल जाते हैं, और कुछ पौधे जिनकी मैं ख़रीदारी करती हूँ वो आम नर्सरी में नहीं मिलते हैं, तो ऑनलाइन ही हमें ख़रीदने पड़ते हैं।
0: और लेकिन ये चंचल जी, हमने भी मंगाए हैं कई बार पौधे जब हम मंगाते हैं तो ये देखना चाहिए हमें कि उसमें वो क्या दे रखा है, उसमें पूरी डिटेल क्या रखी कि वो वापस हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि फिर हम बाद में उसे वापस करने की कोशिश करते हैं तो उसमें लिखा हुआ आता है कि नहीं, वापस नहीं हो सकता है ये।
1: इसी बात पर देखिए एक बड़ा अच्छा सा कमेंट है, नॉन रिटर्नेबल आइटम। आगे हमारे श्रोता ने लिखा है कि सामान पसंद ना आने पर पता चलता है कि इसे वापस या एक्सचेंज किया जा सकता है या नहीं। कई बार हिडन चार्जेस भी इसके लिए होते हैं और रिटर्न करने के लिए अलग से शॉपिंग चार्जेस भी देने पड़ जाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह की जो भी पॉलिसीज हैं आप उनको पहले से पढ़ना चाहिए ताकि आपके साथ में कोई धोखेबाजी दगाबाजी ना हो।
0: बिल्कुल। एक हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि कई बार लोग आकर्षक ऑफर्स के और छूट के चक्कर में ऐसी चीज़ें खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत नहीं होती, बाद में जब सामान उम्मीद के अनुसार नहीं निकलता या बेहतर कीमत कहीं और मिल जाती है तो उन्हें पछतावा होता है। इसलिए ऑनलाइन ख़रीदारी करते समय उत्पाद की जानकारी, रिव्यू और कीमत उस अच्छी तरह से जान लेनी चाहिए।
1: और इसी में आगे एक और कमेंट हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा उम्मीद बनाम हकीकत, यानी एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में लिख रहे हैं। इसका शिकार हमें होना पड़ता है। स्क्रीन पर दिखने वाली चीज़, चमचमाती चीज़ जब घर पे पहुंचती है तो वो पूरी तरह से अलग निकलती है। और नॉन रिटर्नेबल आइटम्स भी होते हैं, पसंद ना आने पर पता लगता है कि इसको तो एक्सचेंज किया ही नहीं जा सकता और अलग से हमें बहुत सारा भुगतान करना पड़ जाता है।
0: बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऑनलाइन शॉपिंग में। जब करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें कि आपको क्या ख़रीदना है, उसकी ज़रूरत है भी कि नहीं है, इस तरह करें और पढ़ लें पहले पूरी जो चीज़ें दे रखी हैं कि वो क्या चीज़ है, वो वापस हो सकती है कि नहीं हो सकती है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको पछतावा ना होता। कि
1: कुछ बार तो ऐसा भी हो जाता है कि हम तोहफे में देने के लिए कोई चीज़ ले रहे होते हैं, हमने मंगाई बिना खोलकर भी नहीं देखा और वो जिस तरह की पैकिंग में आई थी उसी पर एक और गिफ्ट रैप हमने लगाया और हमने सामने वाले को तोहफे के रूप में वो दे दिया। जब सामने वाले ने खोला तब हमें पता लगता है कि उनके पास कोई अगर कम उच्च स्तरीय वाली चीज़ गई है तो वो जब वो शिकायत करते हैं या नहीं भी करते, सिर्फ कहकर उस बात को बता देते हैं तो बड़ा अफसोस मन में आता है।
0: बिल्कुल। और अच्छा भी नहीं लगता ना कि किसी को एक ऐसे उपहार दे रहे हैं हम और वो भी अच्छा ना निकले। तो ज़रूरी है हम बेहतर होगा कि जितना ज़्यादा हम जा सकें बाहर वहाँ से खरीदें।
1: बिल्कुल, देने वाले की नीयत भले अच्छी थी, उसने उसके लिए कीमत भी अच्छी चुकाई, लेकिन कंपनी ने अगर कोई धोखा किया है तो आपके पास उसका कोई जवाब नहीं होता क्योंकि वो निम्न स्तरीय सामान था। इस तरह की धोखेबाजी ना हो। और भी कमेंट्स हम पढ़ेंगे, पहले एक गीत सुन लें।
0: बिल्कुल, एक गीत सुन लेते हैं।

0: आरती, ये सही है कि ऑनलाइन शॉपिंग ने ख़रीदारी को बहुत आसान बना दिया है, लेकिन कई बार एक क्लिक के बाद में जो हम फैसला हमने लिया था और क्लिक कर दिया, वो पछतावे का कारण बन सकता है। और सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वो चीज़ होती है जो तस्वीर या विज्ञापनों में बड़ी शानदार दिख रही होती है, लेकिन उम्मीदों पर हमें ख़रीद नहीं उतरती जब वो हमारे हाथ में होती है। सेल देख कर खरीद ली जाती हैं चीज़ें, कपड़ों के रंग और गुणवत्ता जो है वो तस्वीरों से बहुत अलग होती है।
1: और एक और श्रोता है जो कहते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग से बड़ा में सबसे बड़ा पछतावा, भाई अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये तो ऑनलाइन शॉपिंग करने के निर्णय से पहले ही आपको सोचना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, अब एक बार खरीद ही लिया तो मिले रद्दी के सामान को देखकर घबराइए मत, अभी तो उसे सीख लेकर अग्रिम खरीदारी बाजार बैठ जाकर ठोक बजाकर ही करिए। जैसे कि कोई सामान खरीदते हैं तो उसे अच्छे से देखभाल करके ही खरीदें, मगर लगता है कि इसके लिए महानगरों में समय का भी अभाव है। और ऐसे में सब्जियों की ऑनलाइन शॉपिंग रात्रि 8 बजे की बात करें तो सस्ती और अच्छी सब्जी प्राय मिल जाती है। ऐसे ही विवेकपूर्ण वस्तुओं की खरीदारी ऑनलाइन कर सकते हैं, लेकिन पके हुए भोजन की ऑनलाइन शॉपिंग मेरे ख्याल से नहीं करनी चाहिए।
0: बहुत सही सलाह दी है उन्होंने। और ये बात भी सही है कि जो महानगरों की जिंदगी है, कई बार लोगों के पास काम के चलते समय नहीं होता, या त्योहारों का समय जब होता है ना, जब हमें बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, खासतौर पर बाजारों में इतनी भीड़ होती है, तो उस भीड़ में जाने से बचने के लिए भी कई बार लोग ये काम करते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब ऐसी हो गई हैं जो घर पर 5 से 10 मिनट में जब हमें उपलब्ध हो जाती है, घर पर कोई है नहीं सामान लाने के लिए, तब तो उनमें भी धोखाधड़ी हो जाती है, चाहे वो घर के दूध दालें सब्जियां ऐसी चीज़ें ही क्यों ना हो, तो सोच समझ कर ही।
1: और बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें जो ऐसी चीज़ें जो इतनी ज़रूरी नहीं भी हैं आज ऑनलाइन मंगानी, वो भी ऑनलाइन ही मंगाने लगते हैं कि चलो हम क्या करेंगे, बाजार जाके यहीं से मंगा लेते हैं, तो फिर फ्रॉड होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें पकी हुई जैसे उन्होंने बताया वो चीज़ें हमें नहीं मंगानी।

0: चाहिए ऑनलाइन, और जैसे कि और भी सामान है जो हम बाहर जाके ला सकते हैं आसपास से, तो वो बाहर जाकर ही खरीदारी करनी चाहिए।
1: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा पछतावा होता है गलत साइज़ के कपड़े, ख़राब क्वालिटी, उत्पादों की तस्वीरों से बिल्कुल अलग दिखाई देना। इनसे बचने के लिए हमेशा ग्राहक समीक्षाएं यानी रिव्यूज़ जो होते हैं और जो रेटिंग्स दिए जाते हैं और रिफ़ंड की जो नीतियाँ हैं, इन सब चीज़ों को एक बार जाँच लेना चाहिए। केवल प्रतिष्ठित ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करना है। यहाँ ऑनलाइन शॉपिंग के मुख्य पछतावे से बचना हमें होगा।
0: बिल्कुल। और चंचल देखो, एक अंतराल का समय हो गया।
1: जी
2: जन जन जब अपनाए योग, जीवन सदा रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर हेल्दी एजिंग के मौके पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय की पहल योग संगम
3: 21 जून सुबह 6 बजे जंतर मंतर जयपुर में जुड़िए विशाल योग संगम में। NIA और आयुष मंत्रालय आपको सादर आमंत्रित करते हैं।

विविध भारती पर कार्यक्रम सखी सहेली चल रहा है और हम बात कर रहे थे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में। कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, बातें और भी हैं, लेकिन पहले गीत सुन लेते हैं।

0: याद रखोगे कि भूल जाओगे नजराने। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग के विषय में ही हमारे जो एक श्रोता हैं वो लिखते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग में सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी फरवरी में छोटी बेटी की शादी थी, बच्चों को ऑनलाइन शॉपिंग करने का कुछ ज़्यादा ही शौक होता है। शादी के कपड़े, बिंदिया, गहने, ड्रेस मटेरियल और भी बहुत कुछ उसने देखा और मंगवाया भी। इसमें से कुछ सामान ऐसा भी आया जो कि दिखाया गया वो नहीं भेजा गया, वापस करने की कोई सुविधा नहीं थी। कुछ कपड़े भी जिस साइज़ के मंगवाए थे उसे साइज़ में आए ही नहीं। जूते चप्पलों का भी यही हाल था। इसे नुकसान भी हुआ क्योंकि वापस भेजने की सुविधा नहीं थी। कुछ कंपनियों ने जैसा कहा था वैसा ही भिजवाया तब अच्छा लगा। तो मेरा तो अनुभव ये रहा कि सामान वही मंगवाना चाहिए जिसमें वापस भेजने की सुविधा हो, नहीं तो हमें धोखा हो सकता है।
1: हमारे एक श्रोता का कमेंट है, उफ ये ऑनलाइन शॉपिंग कभी खुशी कभी गम। अभी हाल ही ऑर्डर किया गया एक सामान है, उम्मीद है जो मंगवाया गया वही आइटम मिलेगा। मतलब इन्हें अभी तक उस सामान की डिलीवरी मिली नहीं है, उसके बारे में लिख रही हैं। और तब मुझे कोई पछतावा नहीं चाहिए। पिछली बार पछतावा मिला जब गोल्डन और वाइट पर्ल का ऑर्डर दिया था मगर ड्रेस एक धुलाई में ही ऐसी निकली कि मेरे सारे अरमान भी धुल गए।
0: तो वैसे एक हमारे श्रोता है वो लिखते हैं कि मैंने भी सभी बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से खरीदारी करें, और मैं भी सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्म पत्नी भी ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद नहीं करते हैं।
1: आगे श्रोता लिखते हैं कि बेटे ने एक बार लैपटॉप, टैबलेट, स्क्रीन पर काम करने वाली स्टाइलिश पेन, इस तरह की कुछ चीज़ें मंगवाई थी जिनमें 7 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, और जैसे ही इन चीज़ों को उपयोग में लाया तो पता लगा कि वो काम ही नहीं कर रहे हैं। तुरंत संपर्क किया और बहुत तकलीफ हुई इन चीज़ों को रिटर्न करने में और अमाउंट को वापस अपने प्राप्त करने में। इसीलिए मैंने बच्चों को समझाया कि जितना हो सके लोकल दुकानदार से ख़रीदारी किया करें, और जैसा कि आपने बताया था कि इनकी पत्नी है वो ऑनलाइन शॉपिंग पसंद नहीं करती हैं, बच्चे हैं वो कर लेती हैं।
0: देखिए बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी आ जाती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ चीज़ें खराब भी आती हैं,
1: लेकिन आज हम फिलहाल वही अनुभव ले रहे हैं जो इनको कभी पछतावा हो।
0: और एक और हमारे श्रोता है जो लिखते हैं कि शॉपिंग की कहूँ तो भतीजे की शादी में बिटिया रानी ने कुछ कपड़े मंगवाए, सब गड़बड़ हो गया एन समय पर, फिर आखिर बाजार से तुरंत फुर्ती से दूसरे खरीदने पड़े तो पैसे गए और जो बुलाए वो भी नहीं आए। इससे बाजार से अपनी पसंद के ही खरीदें, यही बेहतर होगा कि उनको दो बार पैसे खर्च करने पड़े।
1: बिल्कुल, आप बहुत सारे अति उत्साहित होकर ऐसे कोई चीजें ना खरीदें, ध्यान रखिएगा। और आज बता दें कि गुरु अर्जुन देव शहीद जो हैं, उन गुरु अर्जुन देव जी का शहीद दिवस है और ये सिख धर्म के 5वें गुरु माने जाते हैं, और इनका बलिदान दिवस ज्येष्ठ माह की 24वें दिन अत्यंत श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जहांगीर के विद्रोही बेटे राजकुमार खुसरो ने अपने पिता के खिलाफ जब विद्रोह किया तो लाहौर की तरफ वो चल पड़ा, और रास्ते में गुरु अर्जुन देव जी ने उसे आशीर्वाद दिया और उसकी सहायता भी की, और जहांगीर ने इसे राजद्रोह मानकर उन्हें सजा सुना दी और उन्हें बहुत सारी यातनाएँ देकर शहीद किया गया था। और वो इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांतों पर समझौता करने से मना कर दिया था, और सिख धर्म के इतिहास में उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
0: जी बहुत ही बड़ी बात है, उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।
1: और आज एक ये जो दिन होता है ना, इस पर बहुत सारे जो गुरुद्वारे होते हैं वहाँ पर शब्द कीर्तन होते हैं, श्रद्धालु आते हैं, और छबील यानी कि मीठे प्याऊ, मीठे पानी की जो प्याऊ होते हैं वो लगाई जाती है, और लंगर यानी कि जो भोजन लंगर होता है उसकी व्यवस्था की।
0: बिल्कुल, और लंगर का खाना चंचल जी इतना अच्छा, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है ना कि मन करता है कि आप वहाँ रोज जाके खाएं, क्योंकि लंगर की सेवा वो हमेशा करते हैं
1: और वो बहुत श्रद्धा से पकाया गया भोजन होता है, वो सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रसाद।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और अब हम एक और दिवस है इसके बारे में बात करें कि गीत सुनने पहले
1: गीत सुन लेते
0: बिल्कुल गीत सुन लेते हैं।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आज़मी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आज़मी।
1: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
0: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तो भाई खाना बनाते समय कुछ ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। और बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त आ गई है हमारे पास, हमारे श्रोताओं ने हमें लिख कर
3: बहुत कुछ लिख डाला है भाई जी। और एक हमारे श्रोता जो लिखते हैं कि खाना बनाते समय सबसे पहला काम सारी तैयारी पहले कर लेनी चाहिए, इससे गैस की भी बचत होती है और परेशानी से भी बच सकते हैं। और खाना बनाते समय अपने मन को भी खुश रखना ज़रूरी है और उसके लिए विविध भारती है ना, वो तो है। और वैसे एक बात हम कहना चाहेंगे कि क्या कभी किसी ने भजन सुनते हुए खाना बनाया है, बना कर देगी, स्वाद में अंतर ज़रूर नज़र आएगा। आप चाहे भजन सुने या फिर कोई गीत अपने मनपसंद सुने, खाने में स्वाद तो आएगा ही आएगा जब हम खुश होकर बनाएंगे।
2: और बिल्कुल सही बात है, अगर आप कुछ भी नहीं सुन रहे हैं, आपकी भावना बहुत अच्छी है उस खाने को बनाने के लिए, बहुत प्रेम से किसी के लिए कुछ पका रहे हैं, तो वो खाना वैसे भी स्वादिष्ट बनेगा। अमूमन खाना जो है घर में महिलाएं ही पकाती हैं, पुरुष नहीं पकाते हैं, लेकिन हमारा जो कार्यक्रम है,
3: चंचल जी ऐसा मत कहिए क्योंकि आजकल पुरुष बहुत ज्यादा काम करने लगे हैं,
2: लेकिन मैंने कहा अमूमन की।
3: हाँ, ये तो है
2: ना। तो हमारे जो पुरुष होता कार्यक्रम को सुनते हैं और जो कभी कभार रसोई में खाना भी पकाते हैं, उन्हीं का संदेश मैं पढ़कर सुना रही
3: हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
2: मैं खाना नहीं बनाता इसलिए कोई खास टिप्स नहीं है मेरे पास।
3: अच्छा।
2: पर सुबह की पहली चाय मैं हमेशा बनाता हूँ, तो एक टिप है मेरे पास
3: जी। बिल्कुल।
2: चाय की एक बूंद भी प्लेटफॉर्म पर गिरती ही इसे तुरंत साफ करता हूँ, यानी कि खाना बनाते वक्त साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। ये बहुत बड़ी टिप है,
3: बहुत जरूरी।
2: ऐसा इसलिए भी होता है कि अगर पुरुष जो होते हैं अगर किचन में खाना बनाया तो वो क्या करते हैं, बस खाने में स्वादिष्ट होना चाहिए इसका तो ध्यान रखेंगे, लेकिन किचन वही पूरी फैली पसरी छोड़कर वो आते
3: तो है।
2: तो इन्होंने इस बात का खास ध्यान रखा है कि इनकी श्रीमती जी उस चीज से नाराज ना हो कि भाई चाय की बूंद भी गिरी है तो वो ना हो,
3: एकदम साफ सुथरा किचन मिले। बहुत अच्छी बात है। और एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि अनाज दाल और बेकिंग के टिप्स बता रहे हैं वो, तो इसमें चावल के बारे में बता रहे हैं। तो चावल उबालते समय पानी में कुछ बूंदे नींबू के रस या घी की डाल दी जाए, इससे चावल के दाने आपस में चिपकेंगे नहीं। और अगर आपको दाल जल्दी पकाना है तो सूखी दालों या छोलों को पकाने से पहले कुछ घंटे पानी में भिगो दीजिए, इससे वो जल्दी पकते हैं और गैस की बचत भी होती है। और आटा गूंथते समय गुनगुने पानी या थोड़ी सी दूध का इस्तेमाल करने से रोटियां बेहद नरम और फूली हुई बनती हैं।
2: इसी तरह से कुछ और टिप्स हमारे पास आए हैं कि हरी सब्जियों का रंग, जैसे मटर पालक इस तरह की जो भी होती हैं सब्जियां, उनका रंग बरकरार रखने के लिए चुटकी भर चीनी डालने से उनका हरा रंग बना रहता है। विटामिन का अगर संरक्षण करना है तो सब्जियों को बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में काटने की बजाय या पानी में उबालने की बजाय बड़ा थोड़ा मोटा काटें, और पानी में उबालने के लिए उनके विटामिन नष्ट हो जाते हैं तो ऐसा ना करें, इसीलिए इन्हें मध्यम आकार के आकार में काटें। और आलू बैंगन अक्सर काले पड़ जाते हैं तो इन्हें जैसे ही काटें तुरंत नमक वाले पानी में रखें जिससे वो काले नहीं पड़ेंगे। और लहसुन की कलियों को कुछ देर गर्म पानी में भिगोकर रखने से छिलका बड़े आसानी से निकाला जा सकता है।
3: अरे वाह क्या बात है। और एक हमारी श्रोता है जो बहुत ही, इन्होंने तो बहुत ही मज़ेदार सा कमेंट किया है, गाना ही लिख दिया है। उन्होंने लिखा है कि खाने बनाने का समय का टिप्स हम क्या दे सकते हैं भला, जिसे खाना बनाना ना आया, ना गाना आया, ना बजाना आया, सिर्फ और सिर्फ दिलबर के हाथों का खाना खाना आया। तो मतलब ये इन्होंने खाना खाना सीखा है, खाना बनाना नहीं सीखा है। कोई बात नहीं, आप अभी भी आप सीख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं,
2: नहीं भी खाना बनाते तो सिर्फ अगर मदद भी करेंगे ना अपनी बहन की, माताजी की, श्रीमती जी की, तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान ले आइए, ये भी बहुत बड़ी बात।
3: बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी सी तैयारियां करा दीजिए, सामान ले आइए या उनके लिए कुछ अच्छा ले आइए जिससे वो खुश हो जाए और अच्छा अच्छा खाना खिला पाए।
2: और हमारे श्रोता लिखते हैं कि खाना बनाना एक कला है जिसे थोड़ी सावधानी और सही तरीकों से और बहुत आसान बनाया जा सकता है। खाना बनाने से पहले सभी आवश्यक सामग्री तैयार कर लेनी चाहिए जिससे समय की बचत हो जाती है। मसालों और नमक का प्रयोग संतुलित मात्रा में करना चाहिए और गैस और बर्तनों को सावधानी पूर्वक उपयोग करें। बीच बीच में स्वाद चखते रहना चाहिए ताकि कोई चीज़ कम या ज़्यादा ना हो जाए।
3: बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता हैं जो लिखते हैं कि प्याज को अच्छी तरह सुनहरा भूरा होने तक भूनने से भोजन में गहरा स्वाद और प्राकृतिक मिठास आती है। सब्जी या दाल में ज़्यादा नमक अगर हो गया है तो करी या सूप में नमक तेज हो जाए तो उसमें उबला हुआ आलू या गूथे हुए आटे की छोटी सी गोली छोटी छोटी गोलियाँ बनाकर डाल दीजिए, वो अतिरिक्त नमक सोख लेंगी। गाढ़ी और मखमली ग्रेवी के लिए टमाटर प्याज ग्रेवी को गाढ़ा करने के लिए आप उसमें भुना हुआ बेसन, काजू का पेस्ट या उबले आलू को मैश करके मिला सकते हैं। और ग्रेवी में दही मिलाते समय आप आंच को धीमा रखिए, इससे लगातार चलाते रहिए ताकि दही जो है वो फटेगी नहीं।
2: अगले टिप में लिखा है कि अगर आप घर में ही घी बनाते हैं मलाई से और मलाई जमा कर रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी दही मिला दें और उसके बाद उसे फ्रिज में रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसे थोड़ी देर ही पहले बाहर निकाल कर छोड़ दीजिए। इससे थोड़ा सा फर्मेंट हो जाता है और मक्खन निकालने के बाद स्वादिष्ट मट्ठा भी तैयार होता है। मलाई को 8 दिन, अगर मलाई से निकाल रहे हैं तो उसे 8 दिन में ही कंज्यूम कर लें और इसे फ्रिज में ही रखें, और जिस दिन मक्खन निकालना हो उसी दिन फ्रिज से बाहर निकालें। मथने के बाद ठंडे पानी में बर्फ़ डालकर मक्खन को तुरंत रखें और गर्मियों में जो मट्ठा है वो निकलता है उसमें बड़ा स्वाद होता है।
3: बिल्कुल। और चंचल जी, हम एक संदेश को सुन लेते हैं, इसके बाद हम बात करें आगे की।
2: जी
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हमारे सुनने वाले लिखते हैं कि इस मौसम में अरबी बहुत मिलती है और अरबी गले में भी लगती है, उन्हें छूने से हाथों में खुजली भी होती है, तो अच्छा है ग्लव्स पहनकर यानी कि दस्ताने पहनकर इसे छीला जाए। अगर आपके पास दस्ताने नहीं हैं तो पूरे हाथ को हाथ पर सूखा आटा लपेट लें और उसके बाद अगर अरबियों को छीलेंगे तो वो हाथ पर चिपकती नहीं है और खुजली भी नहीं होती है। बड़ा अच्छा टिप दिया है।
3: बिल्कुल सुनते हैं।

0: आरती, तुम्हें ध्यान है कार्यक्रम की शुरुआत में हमने बताया था कि आज है 18 जून जो कि होता है सतत गैस्ट्रोनॉमी दिवस, और ये स्वस्थ और सुरक्षित बेहतर भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको मनाना। और जब भी हम किसी सांस्कृतिक विविधता की बात करते हैं तो सबसे पहले वहाँ के पहनावे और खान पान की ही बात की जाती है।
1: बिल्कुल, और गैस्ट्रोनॉमी भोजन और संस्कृति के बीच संबंधों का अध्ययन है जिसे अच्छे खान पान की कला और विज्ञान के रूप में भी जाना जाता है। गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी भोजन की कला भी कहा जाता है। इसे किसी विशेष क्षेत्र के खाना पकाने की शैली या फिर स्थानीय भोजन के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। और सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कोई भी कार्य जैसे कि कृषि हो, मछली पकड़ना हो, भोजन तैयार करना हो, इस तरह से किया जाए जिससे हमारे प्राकृतिक संसाधनों की बर्बादी ना हो और भविष्य में भी इसे जारी रखा जा सके बिना हमारे पर्यावरण या स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए हुए।
0: बिल्कुल, भोजन की बर्बादी से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं उसके बारे में जागरूकता बढ़ाता है और इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। अपने आहार में जो भी पारंपरिक फसलें हैं उन्हें हम शामिल कर सकते हैं जो हमारे क्षेत्र में पाई जाती हैं, जो खनिज और विटामिन से भरपूर भी होती हैं, और कई तरह के जो व्यंजन है उनको तो हम अपनी यात्राओं में भी आजमा सकते हैं। और अब एक गाना सुन लें।
1: बिल्कुल।

0: भाई ये था कार्यक्रम का अंतिम गीत और समय हो चला है सखियों से विदा लेने का।
1: तो आरती श्रीवास्तव को और
0: चंचल वर्मा को दीजिए इजाजत।
1: नमस्कार, नमस्कार। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपके रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। दोस्तों, गर्मी की इस चिलचिलाती दोपहरिया में कोई चीज सुकून देता है तो वो है पानी या फिर शरबत या फिर आइसक्रीम। लेकिन इसके अलावा इन सब से परे जो सुकून और ठंडी छांव देता है वो है सुरीले गीतों की सौगात। सुरीले गीतों की फरमाइश करते हैं आप सभी श्रोता, मीठी और दिलचस्प बातें करते हैं आप सब। तो चलिए फिर शुरू करते हैं सिलसिला बातों और गीतों का। ये है आज के प्रोग्राम का पहला कॉल। हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी, मैं ठाणे महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ।
0: जी बताइए, आपका नाम क्या है?
1: मेरा नाम रामेश्वर प्रसाद चौहान है।
0: रामेश्वर जी, क्या काम काज करते हैं आप ठाणे में?
1: मेरा काम है, छोटा मोटा दुकान है, घर के अंदर ही है, हॉल और अस्तर ये सब है।
0: अच्छी बात है, ठीक है। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सभी काम अच्छे होते हैं, काम करना चाहिए, कोई काम छोटा नहीं होता।
1: जिंदगी तो इसी में निकल गई हमारी, पिछले 32 साल से ही कर रहा हूँ।
0: तो आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रमेश जी?
1: ओ, एक कुल दो मालिक का है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा,
0: तुझे दीप कहूँ या तारा। तो किसके लिए सुनना चाहते हैं? कभी बच्चे को गाकर सुनाया है ये गाना आपने?
1: बच्चे लोग को मैं बहुत सुनाता हूँ, लेकिन आजकल पुराना गाना सुनने के लिए तैयार ही नहीं रहता इन लोग।
0: अच्छा, नए गाने पसंद करते हैं बच्चे। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें फोन किया। अब बातचीत करते हैं खत्म। आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना।
2: तुझे स...

0: बहुत बड़ा है मैम, यहाँ की मतलब आबादी 5,000 की समथिंग है मैम।
1: और पैदावार क्या होती है?
0: सर यहाँ पे सोयाबीन मुख्य खेती मतलब बोनी होती सोयाबीन की।
1: और सोयाबीन बहुत पौष्टिक होता है खाने के लिए, बहुत रिच
0: जी
1: प्रोटीन होता है।
0: जी जी मैम।
1: तो व्यापार भी करते हैं, मतलब बिकता भी है सोयाबीन या फिर खाने भर का?
0: हाँ मैम, मंडी के लिए भी ले जाते हैं।
1: अच्छा, और बाकी चीजों में जैसे दाल चावल और गेहूं धान, इन सब में क्या होता है ज्यादा पैदावार?
0: अरहर होती है मैम यहाँ पे, मूंग भी होती है, उड़द भी होता है, मूंगफली भी होती है मैम।
1: भाई देखिए, गांव मतलब जब आम का मौसम है, गर्मी का मौसम यानी आम का मौसम, और इस समय आम जो लोग गांव में रहते हैं उनको आम खाने का बड़ा सुख मिलता है। तो बाग आपके पास भी है?
0: 4-5 पेड़ लगे हैं मैम हमारे खेत पे।
1: अच्छा, सिर्फ 4-5 पेड़? भाई हमने
0: जी,
1: तो
0: 4-5 ही
1: बाग देखे हैं, वो बड़े बड़े बाग दूर दूर तक फैले, आम के पेड़, जामुन के पेड़। संख्या पेड़ों की कम हो रही है ऐसा लगता है आपको?
0: नहीं नहीं मैम, गाँव में तो बहुत है, लेकिन हम खेत पे लगाए हैं 5-6 पेड़।
1: अच्छा अच्छा जी, बताएं कौन सा गाना आपको सुनवाए?
0: देवफासनम का सुनना है मैम।
1: कौन सा?
0: अच्छा शिमला दिया तूने मेरे प्यार के, ये गीत की बोल है मैम।
1: अच्छा, क्या कभी दिल टूटने की बात आई थी क्या जीवन में, ऐसा गाना?
0: नहीं नहीं मैम, तरफ पर नहीं, नहीं पसंद नहीं है मैम।
1: अच्छा अच्छा जी, एक समय जब फिल्म आई थी ना तो ये गाना बहुत मशहूर हुआ था, हर किसी की जबान पर ये गाना होता था। तो चलिए, शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका, आपने हमें फोन किया। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं और कहाँ से बोल रहे हैं
1: जी? मेरा नाम नई मलिक है, मैं सेंट्रल कश्मीर से बात कर रहा हूँ।
0: अच्छा, कश्मीर की किस जगह से?
1: जी मैं बड़गाम डिस्ट्रिक्ट से बात कर रहा हूँ। हमारे गांव का नाम है बड़गाम, ये एक खूबसूरत एरिया में पड़ता है, एक टूरिस्ट एरिया में ये पड़ता है।
0: वाह भाई वाह। तो श्रीनगर से कितनी दूर है आपका गाँव?
1: हम 45 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से।
0: अच्छी बात है। तो अगर पर्यटक वहाँ जाते हैं तो वहाँ तक पहुँचने के लिए क्या सुविधा है, गाड़ी से या घोड़े से, कैसे जाया जाता है?
1: बस गाड़ी से आते हैं। और जो कश्मीर का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही मौजूद है, और एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हमारे बड़गाम में ही मौजूद है। और अब तरह तरह की सड़कें भी है और गाड़ी से भी आते हैं, और जो हमारा जो टूरिस्ट एरिया है वहाँ पर कोई सैलानी घोड़े को भी पसंद करते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो आपका क्या काम काज है वहाँ?
1: जी मैं बिजनेस करता हूँ, टैल मार्बल और सिटी की सामान बेचता हूँ, जैसे दीवार पर पेंट पेंट लगाती है वही मैं बिजनेस करता हूँ।
0: अच्छी बात है। तो इस समय वहाँ का मौसम कैसा है, ठंडा है, गर्म है?
1: थोड़ी गर्मी भी है, तो जून का महीना चले गर्मी भी है, लेकिन साथ साथ कभी कभी बारिश भी होती है, और पिछले हफ्ते और इस हफ्ते में भी बारिश भी हो रही है और गर्मी भी है। और अच्छी बात यह है कि बहुत सारे सैलानी भी आते हैं, हमारे कश्मीर के अंदर बहुत सारी टूरिस्ट जगह है, वहाँ बहुत सारे लोग आते हैं।
0: क्या बात है। गर्मी तो आपके लिए होगी क्योंकि आपकी आदत ज्यादा ठंड की है, जो सैलानी आते होंगे उनके लिए ज्यादा गर्म नहीं लगता होगा।
1: यहाँ पर ज्यादा 35-35 डिग्री यहाँ पर सबसे ज्यादा गर्मी होती है, लेकिन जो हमारे हिंदुस्तान के कई शहरों में 40 से भी ऊपर डिग्री गर्मी होती है,
0: अड़तालीस
1: तो नॉर्मल सी लगता
0: जी।
1: है।
0: तो बहुत ज्यादा गर्मी से जूझते हुए जब वहाँ लोग पहुँचते होंगे तो ठंडक महसूस होती होगी। वहाँ की कुछ नदियों, वहाँ की झील के बारे में बताना चाहते हैं तो बताइए, अगर आपको जानकारी है तो।
1: हमारे इलाके में सबसे एक मशहूर झील है, उसको दूध गंगा कहते हैं। उनका जो पानी बिल्कुल साफ और नेचुरल पानी होता है, और अगर आप हम जंगल के उस पार जाएंगे या जंगल के उन जगहों पर जाते जहाँ पर टूरिस्ट है, वहाँ पर बहुत सारे नदियाँ हैं। जाए अगर आप पहलगाम की बात करेंगे, सोनमार्ग, गुलमार्ग या दूध पत्थर की तरह की नदियाँ हैं, जो बहुत ही उनका पानी भी मीठा है और साफ भी है। और अगर आप कश्मीर में रहते हैं तो कश्मीर का आपको ऐसा पानी मिलेगा।
0: पहलगाम और गुलमर्ग के पास तो लिद्दर नदी भी बहती है, हमें याद है कि
1: आपको सबसे मान
0: वो,
1: जी आपको पता है ये पहलगाम
0: हाँ,
1: कश्मीर में पड़ता,
0: उस नदी का पानी हमने छुआ भी, बहुत ठंडा पानी था क्योंकि हम ठंड के
1: ठंडा
0: मौसम
1: पानी।
0: में गए थे। अच्छी बात यह है कि पानी बिल्कुल पारदर्शी लगता है। बताइए इस समय गाना कौन सा सुनना चाहते हैं आप?
1: ये साजन फिल्म का नगमा है, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें फोन किया और कश्मीर के बारे में इतनी उम्दा बातें आपने शेयर की श्रोताओं के साथ। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: मैं मध्य प्रदेश से देवास जिले से गोविंद प्रसाद जलोदिया बोल रहा हूँ।
0: तो गोविंद जी, देवास मध्य प्रदेश किसी खास व्यक्ति के लिए संगीत के लिए मशहूर है, शास्त्रीय संगीत के एक मर्मज्ञ, वहाँ के मूर्धन्य संगीतज्ञ पैदा पंडित कुमार गंधर्व जी, जो उनका निवास है, देखा है आपने, बाहर से देखा होगा, बहुत सुंदर बना हुआ है
1: वो। क्या है, वैसे खातेगांव से देवास की दूरी 100 किलोमीटर है करीब।
0: अच्छा, तो गए हैं आप
1: देवास, वो तो आना जाना रहता ही रहता है।
0: जी बिल्कुल, शास्त्रीय संगीत के चाहने वाले वहां तक जाते हैं, पंडित कुमार गंधर्व के दरवाजे तक मत्था टेक कर आते हैं। कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सर वो बरसात का गाना है, लता मंगेशकर की आवाज में, हवा में उड़ता जाए लाल दुपट्टा मलमल का।
0: क्या बात है, बहुत सुरीला गाना चुना है आपने। तो क्या पुराने गाने ज्यादा पसंद आते हैं आपको?
1: अच्छा हाँ, वो क्या है, पुराने गाने ही पसंद करता हूँ मैं। और दूसरी बात ये है कि वो शुरू से ही मेरे को लगाव है ये गाने पिक्चर से। क्या है कि मेरे रेडियो का बहुत शौकीन था शुरू से ही, 1967-1968 से ही।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो घर वालों ने मेरे को रेडियो ट्रेनिंग में भेज दिया था। पहले वाल वाले रेडियो चलते थे, लगती थी कि उसकी ट्रेनिंग होती थी।
0: अच्छा।
1: सीखने के लिए तो मेरे को इंदौर में भेज दिया था सीखने के लिए। तो फिर मैंने इंदौर में भी काम किया और फिर खातेगांव में दुकान खोल दी रेडियो की।
0: अरे वाह,
1: वाल रेडियो।
0: क्या बात है, तो अभी भी है रेडियो वाली दुकान आपके पास?
1: अब तो मैंने बंद कर दी, अब तो मेरे से बनता नहीं है।
0: तो क्या करते थे, रिपेयरिंग करते थे?
1: हाँ, रिपेयरिंग करता था और वाल वाले रेडियो बनाते भी थे।
0: अच्छा, क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी बात बताई आपने। वाल वाले रेडियो अब मिलते नहीं है?
1: हाँ, 5 बार 3 बार 2 बैंड 3 बैंड ऐसे चलते थे वो।
0: जी जी, तो अभी लोग आपसे कहते हैं कि मेरा रेडियो खराब हो गया, जरा रिपेयरिंग करके दे दो?
1: नहीं, अब तो अपने से बनता भी नहीं है, अब रेडियो का जमाना है ही नहीं। अब रेडियो का जमाना खत्म हो गया, धीरे धीरे करके फिर ट्रांजिस्टर शुरू हो गए सेल वाले, अब सेल वाले से अब मोबाइल पे आ गए।
0: लेकिन सुनना कहाँ बंद हुआ, रेडियो से प्यार तो वैसे ही है।
1: सुनना तो नहीं रहा अब तो, सुनना तो और ज्यादा होगा क्योंकि पहले, आजकल तो क्या है कि बड़ी मुश्किल से बीस भारतीय आकाशवाणी लगता था, और आजकल तो क्या है कि घर बैठे ही, मतलब घर में मिल रहे हैं सभी स्टेशन में,
0: मोबाइल पे भी सुन सकते हैं आप।
1: और मोबाइल,
0: पहले वो जो रेडियो बड़ा वाला होता था उसमें आप वो जो बटन होता था, बटन को घुमाते रहो, कई बार विविध भारती पकड़ने में बहुत दिक्कत होती थी, मुश्किल होती थी,
1: दिक्कत होती थी। हाँ, इधर से उधर तक नहीं लगता था।
0: जी, लेकिन उसका एक अलग आनंद था उस रेडियो का।
1: हाँ, वो तो अलग ही था, उसकी उस प्रकार की उसकी बॉडी भी इतनी अच्छी बनती थी कि संगीत में मजा आ जाता था। और इतने सारंगी वगैरह इतने भी उस टाइम समा, मतलब उसका जमाना नहीं था संगीत का,
0: बिल्कुल
1: हारमोनियम इतने अच्छे लगते।
0: बहुत सारे कलाकारों को रेडियो ने मंच दिया, बहुत सारे कलाकार को रेडियो ने गढ़ा, तो रेडियो का बहुत बड़ा योगदान रहा है जीवन में हम सबके। तो बरसात फिल्म का गाना आपने पसंद किया है, शुक्रिया अदा कर रहे हैं हम।

0: अब आपको सुनवा रहे हैं यही गाना।
1: जीवन में करे योग, रहे निरोग और बढ़ती उम्र में भी बने स्वस्थ और सक्रिय। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनाएं योगा फॉर हेल्दी एजिंग का संदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ इस 21 जून सुबह 6 बजे जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का हिस्सा बनिए।

0: हेलो फरमाइश
1: मैडम जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: हाँ जी मैडम जी, मैं करणवीर सिंह पॉल जलंधर पंजाब से।
0: करणवीर सिंह जलंधर पंजाब के बारे में बताइए, क्या हाल चाल है जी?
1: बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी तो थोड़ी दो दिन बारिश हुई है तो मौसम अभी ठंडा हो गया है। पहले तो बहुत ज्यादा तपिश थी, तो अभी फिर वैसे बारिश होने के चार शाम तक बारिश हुई।
0: और गर्मी के बाद जब बारिश आती है तो राहत बहुत मिलती है, लेकिन उसके बाद जब बारिश रुक जाती है
1: राहत मिलती है। इधर तो पहले तो 45 टेम्परेचर हो गया पंजाब में, अभी कुछ राहत मिली है पहले से। तो आप सुनाओ, मुंबई का कैसा हाल है?
0: बस मुंबई में भी गर्मी बहुत पड़ रही है इस समय, बारिश का इंतजार है हम सबको, और बारिश के छींटे आप अपनी बातचीत के जरिए और गानों के जरिए बता दीजिए। वैसे भी पंजाब का लोकगीत बहुत समृद्ध है।
1: बिल्कुल जी, हम तो विविध भारती थे, हम प्रसार भारती थे, 1970 से लेकर जुड़े हुए हैं।
0: क्या बात है,
1: तो आज तक बहुत हमें हमारा इन्होंने साथ दिया है, तो 90 वर्ष भी पूरे हो गए हैं। तो हम तो कहते हैं अभी 10 साल और बाकी है, सेंचुरी हो जाएगी पूरी, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। और
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, और सेंचुरी होगी वो तो सेलिब्रेट किया जाएगा, उसके बाद भी विविध भारती चलती रहेगी, रेडियो चलता रहेगा।
1: बिल्कुल चलती रहेगी, वो तो चलती रहेगी, लेकिन हमें बहुत लगेगी हमें देखो इतना साल हो गया छोटे।
0: तो कोई पंजाबी लोकगीत वगैरह याद है आपको?
1: पंजाबी लोग हमारे सुरेंद्र कौर और प्रकाश कौर ने बहुत लोकगीत गाए हैं, लेकिन मेरे को उनका तो याद नहीं। मेरे को गुरदास मान का एक गीत बहुत ज्यादा है,
0: गा के सुनाइए ना श्रोताओं को हमारे।
1: गुरदास मान जी का गीत है बह के वेक। हाँ। वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने, वो बह के वेख जवाना बाबे भंगड़ा पौंदे ने। बस इतनी जी दो लाइन बोलनी थी।
0: जी जी बढ़िया। और वहाँ का खान पान भी बड़ा मशहूर है, बहुत अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल जी, सर्दी होती है तो सर्दी में तो हमारे मक्के की और सरसों का साग।
0: हाँ जी हाँ जी,
1: मक्खन घी दही सब कुछ।
0: क्या बात है,
1: फिर तो
0: वाह वाह वाह। आप अपने वहाँ के बारे में बताइए, किस चीज की पैदावार वहाँ पर होती है आपके गाँव में?
1: हमारे पंजाब में ज्यादा करके ना गेहूँ होता है, तो जैसे अभी धान की खेती शुरू हो गई है। गेहूँ होता है, गन्ना होता है, ये खास चार फसलें ये खास होती है, बाकी पशुओं के लिए चारा भी होता है। ये चार फसलें तो वैसे हमारे पॉपुलर है ना, ज्यादा करके होती है, जैसे गन्ना हो गया, मक्का हो गया, गेहूँ हो गया और धान हो गया।
0: तो मक्का होता है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग तो मशहूर है ही है। तो
1: बिल्कुल जी, मक्के की रोटी सरसों का साग, जैसे मक्के के भुट्टे भुट्टा भी बाजार में आने लग गया ना हमारे इधर, भुट्टा हम खा लेते हैं, तो जो उसका जो तना होता है वो पशुओं का चारा बन जाता है।
0: अच्छा अच्छा, क्या बात है, ये तो बड़ी उम्दा बात बताइए भाई। हमारे श्रोता अगर सुन रहे हैं तो इसका उपयोग कर सकते हैं कि मक्का खाने के बाद जो उसका तना होता है वो पशुओं के खाने के काम आ सकता है। बताइए कौन सा गाना आप सुनेंगे?
1: गीत मैडम सुना दीजिए, आज मुझे फिल्म का नाम है पाकिजा, गीत के बोल है चलते चलते मुझे कोई मिल गया था।
0: क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है आपने। मीना कुमारी और राजकुमार है इस फिल्म में, है ना? देखी थी फिल्म?
1: जी देखी है जी मैंने फिल्म।
0: हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें फोन किया। अब सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम पाकीज़ा।

0: हेलो फरमाइश
1: जी, मैं मोहम्मद कोरा श्रीनगर से, जवान मोहम्मद ऋषि
0: जी, बताएं क्या हाल है आपका और श्रीनगर का क्या हाल है?
1: श्रीनगर का हाल तो बहुत ही अच्छा है, आजकल तो मौसम बहुत ही अच्छा है, सुहाना है मौसम है।
0: अच्छा, बारिश हो गई है, गर्मी पड़ रही है, गर्मी के मौसम में भी सुहाना मौसम।
1: जी बिल्कुल, बारिश भी हो रही है, आज धूप अच्छी है, फिर भी मौसम बढ़िया है और आपके प्रोग्राम सुनते हैं हम, बहुत ही मजा आता है।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। कौन कौन से प्रोग्राम सुनते हैं आप?
1: सुबह से लेकर शाम तक तकरीबन हम सभी प्रोग्राम सुनते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है ना वो पश्चिम का काम, मजा आता है इसमें, रेडियो दिन भर ऑन होता है, बहुत ही अच्छा लगता है।
0: पश्मीने का काम?
1: जी बिल्कुल
0: जी, पश्मीने का शॉल।

0: बहुत मशहूर है, लोग जाते हैं जब कश्मीर तो वहाँ से खरीद कर ले आते हैं।
1: जी जी।
0: तो उसकी खासियत क्या होती है थोड़ा सा बताइए हमारे श्रोताओं को, कितनी मेहनत लगती है, कितना वक्त लगता है?
1: जी बिल्कुल, कौनी जामा होता है ये, मतलब महंगा ही होता है, 1,50,000 1.5 लाख तक भी होता है।
0: जी जी।
1: मतलब एक थोड़ा बहुत कठिन ही काम है, धागे मतलब जैसे पीली से बनाते हैं हम, मतलब हैंड से बनाते हैं हम।
0: इसमें धागे का प्रयोग करते हैं, ऊन का प्रयोग करते हैं?
1: ऊन का होता है, उसमें फिर हम फिर धागे बनाते हैं ना, फिर वो हम पीली पे लगा मतलब उसमें लगाते
0: जो हैं। डिजाइन बनाते हैं वो धागे से बनाते हैं?
1: हाँ वो धागे से बनाते हैं।
0: तो काफी मेहनत होती है, काफी वक्त लगता है ना। अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: सहेली फिल्म है, इसी में एक गाना है, इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, लता और हिम्मत कुमार।
0: क्या बात है, बेहद सुरीला गाना पसंद किया आपने, और बहुत दिनों बाद इस गाने की फरमाइश आई है। खुद भी आप गाते गुनगुनाते हैं क्या?
1: थोड़ा बहुत गाते हैं।
0: गाना चाहे तो गा के सुनाइए, हमारे श्रोता भी सुनेंगे, आप गुनगुनाएंगे तो।
1: चलिए आपने कहा तो कोशिश करेंगे। इतना तो कह दो हमसे तुमसे ही प्यार है, तुमसे ही प्यार है, मेरी खामोशी सजना तेरा इकरार है।
0: बहुत शुक्रिया, सुनते हैं सहेली फिल्म का ये गाना।
2: इतना तो कह दो हमसे।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। नमस्कार।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं जी?
1: जी मैं मनोहर लाल गांधी विजयनगर चाणक्य चौक गाजियाबाद से बोल रहा था।
0: जी मनोहर लाल जी, बताइए क्या हाल है आपका और गाजियाबाद का क्या हाल है?
1: बस ठीक है जी, गाजियाबाद का तो बहुत ही अच्छा हाल हो गया क्योंकि मेरी कॉल लग गई आज विविध भारती।
0: पर गर्मी बहुत पड़ रही है ना, दिल्ली पूरा इलाका बहुत गर्म सुना है हमने।
1: गर्मी तो बहुत पड़ रहा था लेकिन आज मौसम ठीक हो गया। सुबह सुबह अपना बादल आए, थोड़ी बूंदाबांदी हुई तो मौसम ठीक है आज।
0: बादलों ने सुकून दिया आपको, तो इस सुकून के बाद आप बताइए कौन सा सुकून दे गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये गाना सुनना चाहता हूँ मैं, फिल्म चमत्कार का, जिसके बोले हैं इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो।
0: जी आप तो गाते भी अच्छा खासा।
1: जी यहाँ पे हम गाते रहते हैं करोके म्यूजिक से, हमारे दोस्त हैं बहुत सारे बुजुर्ग दोस्त हैं, यहाँ अपना हफ्ते में एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं और गीत संगीत के साथ ही हम जुड़े रहते हैं और बचपन से हम विविध भारती सुनते आए हैं, आज भी सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, ये जो सब ग्रुप में गाने वाली बात कही, हमारे बहुत सारे श्रोता इससे प्रेरणा ले सकते हैं कि जब आपके पास फुर्सत के लम्हे होते हैं तो आप सब साथ में गाने गुनगुनाने का, सुनने का एक अलग मजा होता है।
1: संगीत साथ होता है, विविध भारती साथ होता है तो सकारात्मक सोच भी उत्पन्न होती है और दिल भी हमारा खुश रहता है
0: और बहुत सारे झंझावात तनाव भूल जाते हैं गानों के साथ जब होते हैं, है ना?
1: तनाव तो खैर होता ही नहीं है और बीमारियों से भी हम जो दूर रहते हैं क्योंकि संगीत एक थेरेपी की तरह है।
0: क्या काम काज है वैसे आपका?
1: ये मेरी कपड़े की शॉप है यहाँ पे,
0: तो साथ में रेडियो चलता रहता है।
1: हाँ जी रेडियो चलता रहता है, ऐप के थ्रू अपना साफ आवाज में हम सुनते रहते हैं यहाँ पे।
0: जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, फोन किया आपने। सुनते हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम चमत्कार।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार ममता जी।
0: नमस्कार, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं गुजरात से बात कर रहा हूँ, धीरज जबारी
0: जी। बताएं धीरज जी, क्या हाल है आपका?
1: मौसम अच्छा है, मेरा भी अच्छा हाल है, और मैं पेड़ों के नीचे से बात कर रहा हूँ। यहाँ मोर भी बहुत है, लेकिन जब हमारी बात हुई जो अगर मोर एक दो टोके तो अच्छा रहे। हाँ। लेकिन ये पक्षी है, हमारे कहने से कुछ नहीं बोलते, अपने आप में बोलते हैं।
0: अच्छा, कौन सा पक्षी है?
1: मोर है, बहुत है मोर, लेकिन
0: हाँ, हाँ,
1: अभी बादलों में कई बार बोलते हैं, लेकिन जब हमें पता है कि जब बोले तब नहीं बोल पाएंगे।
0: उन्हें नहीं पता है ना कि हमें कब बोलना है, कैसे बोलना है। वो किसी के डिसिप्लिन वाले नहीं है ना, वो तो आजाद हैं और उन्हें
1: बिल्कुल
0: आजाद
1: बिल्कुल
0: रखना भी चाहिए। तो आपके तो दिन बन जाता होगा, बड़ा खुशगवार दिन
1: बिल्कुल
0: होता
1: बिल्कुल
0: होगा।
1: ममता जी, हम प्रकृति के अंडर में नौकरी करते हैं, बहुत अच्छा लगता है।
0: कहाँ काम करते हैं?
1: हम एक फार्म में नौकरी करते हैं और
0: अच्छा,
1: फार्म में पेड़ों की संख्या बहुत है, और
0: अरे वाह,
1: मोर है, कबूतर है और पक्षी है, बहुत
0: हाँ
1: अच्छा
0: हाँ
1: लगता है।
0: वाह,
1: और जो पक्षियों का जो प्रेम होता है ना, इसकी भी कोई सीमा नहीं है, क्योंकि वो उसको जब आप दाना डालते, रोटी डालते हैं मोर को, तो मोर बिल्कुल नजदीक आ जाता है, तो वो दृश्य बिल्कुल अच्छा लगता है दीदी।
0: क्या बात है। तो मोर का नृत्य भी देखा होगा फिर तो आपने, मोर का नाचना बड़ा
1: बिल्कुल
0: सुंदर
1: बिल्कुल,
0: लगता है ना।
1: मोरों के बीच में गांव में भी रहते थे और यहाँ भी रहते हैं।
0: विशेष रूप से क्या खिलाया जाता है मोर को?
1: मोर को देखा जाए तो उसको दाना, यानी दाने में ज्वार है, बाजरी है,
0: ये सब।
1: लेकिन हम रोटी डालते हैं तो बाजरे की, गेहूं की, तो वो खा जाते हैं। और
0: अच्छा,
1: वैसे देखा जाए तो वो जीव जंतु भी खाते हैं, लेकिन दाने भी खाते हैं और मकई का दाना भी खाते हैं, बाजरी, ज्वार, गेहूं, लेकिन रोटी का उनको बहुत अच्छा रहता है अगर कोई डालता है
0: तो बाकी पक्षी भी आते हैं, गौरैया आती है क्योंकि?
1: बिल्कुल आते नहीं, तो चक्री का या गौरैया का प्रमाण बहुत है अहमदाबाद सिटी में।
0: हाँ।
1: मेरा गांव डेर है, तहसील जिला पाटन, वहाँ गौरैया बहुत है,
0: हाँ।
1: अहमदाबाद में कम है।
0: तो गर्मी बहुत पड़ रही है, तो पक्षियों की पानी के लिए क्या व्यवस्था करते हैं क्योंकि?
1: ममता जी बहुत भले लोग है, अहमदाबाद हो गए, मुंबई हो, बहुत भले लोग है, पानी पक्षियों के लिए भी रखते है, पशुओं के, प्राणियों के लिए और इंसानों के लिए, यानी मानवता अभी भी है और ये मानवता के लिए हम जी रहे और हमारा जीवन यानी एक अच्छा जीवन जी रहा है, तो हमें अच्छा लगता है कि ऐसे इंसानों के बीच हम रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है ये
1: जी
0: जानकर। और पक्षियों की बात की है आपने, तो जितने
1: जी
0: श्रोता सुन रहे हैं इससे आपकी बात से प्रेरणा लेंगे कि जो बहुत छोटे छोटे घर होते हैं जहाँ पर जगह नहीं होती पानी रखने के लिए, लेकिन एक छोटा सा बर्तन, मिट्टी का बर्तन रख सकते हैं जिसमें पानी रख दिया तो बहुत गर्म भी नहीं होता है, तो पक्षी आकर वहाँ पानी पी सकते हैं।
1: खुला पानी ममता जी ठंडा ही रहता है,
0: हाँ
1: जैसे झील है, तालाब है, वो पानी ठंडा ही रहता है क्योंकि पवन रहता है, और पानी ऊपर ऊपर से लगे हमें गर्म है लेकिन नीचे से ठंडा रहता है, ऊपर वाले की देन है, वो भी रखवाली करता है सब जीव जंतु की।
0: लगता है आपके आसपास नदी और झील भी है घर
1: नहीं
0: के?
1: नदी तो साबरमती नदी है, और तालाब देखा जाए तो यहाँ कॉरपोरेशन ने बनाए हुए वही तालाब है
0: जी, और नदी साबरमती नदी का नामकरण हुआ है कैसे, वो भी आपको पता ही होगा ना
1: जी। बिल्कुल
0: जी।
1: बिल्कुल, यानी साबर एक नदी है और इसके पर एक जिला भी है साबरकांठा, और जैसे बनासकांठा है वो भी बनास की नदी पर ही है, लेकिन हमारा जो जिला है वो नदी है सरस्वती, उसको कुवारिका बोलते हैं, जो दरिया में नहीं जाती है, रण में जाती, रेगिस्तान में चली जाती।
0: क्या बात है, बड़ी अच्छी जानकारी दी। तो अब गाना आप कौन सा सुनना चाहेंगे?
1: फकीरा फिल्म का दिल में तुझे बिठा कर लता मंगेशकर के आवाज में गाना सुनना है।
0: तो अब बातचीत करते हैं खत्म, और आपको सुनवा रहे हैं आपकी पसंद का ये गाना, फिल्म का नाम है फकीरा।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं यशवंत साहू बोल रहा हूँ, कर्मा चौक लोहारडिया जिला के विधाम छत्तीसगढ़ से।
0: जी बताइए, क्या हाल है
1: जी
0: आपका और छत्तीसगढ़ का?
1: जी ममता दीदी बहुत अच्छे हैं हम।
0: जी क्या कर रहे हैं?
1: हम आम के बगीचे में अभी आम खाने हैं, मैं अपनी बेटी को लेकर।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई। कौन से आम हैं?
1: जी
0: कौन कौन से आम वहाँ पर?
1: अब आम के नाम तो मालूम, लेकिन देसी आम है अपना खुद के। इधर हमारे पूर्वज जो है ना, यहाँ पर लगाए हुए हैं आज से 100 साल के पहले ये आम।
0: वही खा रहे हैं?
1: हाँ, लकड़ी के सहारे से पेड़ में मार रहे हैं, उसके हिसाब से आम गिर रहे हैं, उसको हम खा रहे हैं। मतलब अभी 10-10 आम खा चुके हैं दोनों बाप बेटे।
0: अरे वाह, क्या बात है भाई, 10 आम। अब यहाँ महानगरों में, शहरों में तो लोग एक आम खा लेते हैं, उसी से पेट भर जाता है।
1: जी मैं महाराष्ट्र में रत्नागिरी में 2 साल तक वहाँ पर रुका हूँ।
0: जी
1: आम खाने के लिए हम वहाँ तरसते थे, हम आम खाने के लिए
0: जी और बाग से तोड़कर बाल्टी में भिगो के आम खाने का मजा अलग ही है। ये बताइए कि आपने
1: एकदम
0: कहा
1: सही
0: कि
1: बात है।
0: आपने के पूर्वजों ने आम लगाया और अब वो खा रहे हैं, तो आपने भी कोई पेड़
1: जी
0: पौधा लगाया है
1: मैं
0: आपकी
1: अपने
0: आगे
1: बाड़ी,
0: आने वाली पीढ़ी भी खाए?
1: हाँ बाड़ी पे लगाया हूँ और खेतों में भी एक दो पेड़ लगाया हूँ।
0: आम का जो बाग है,
1: जी
0: बाग में ही एक दो पौधा रोप दीजिए, पेड़ बन जाएगा कुछ महीनों में।
1: हाँ, लोगों को कहना चाहूंगा कि जैसे कि आम की गुठलियां होती हैं, जामुन की गुठलियां होती हैं, आप वहां पर कहीं भी टूर मतलब रास्ते पार करते हैं, अपने घूमने जाते हैं ना, तो अपने बाइक के डिग्गी में रख ले और कहीं कहीं अपने डाल दे, ताकि वहां पर जो बारिश होगी उसके बाद ना अंकुर होकर एक पौधा बन जाएगा, जिसे कोई कोई आम खाएगा तो कम से कम ऊपर वाला देखेंगे। फिल्म
0: जी बिल्कुल सही बात है। बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: का नाम है साजन की घर और कुमार सानू साधना सरगम जी की आवाज है। गीत के बोल है सावन आया बादल छाए।
0: ठीक है जी, सावन आए बादल छाए, बस इसी उम्मीद के साथ भेज रहे हैं आपके छत्तीसगढ़ में आपकी पसंद का ये गाना आपके रेडियो सेट तक।

0: हेलो फरमाइश
1: जी। दीदी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी दीदी, मैं रंजीता जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से।
0: रंजीता जी बताइए, अपने बारे में बताइए, क्या काम काज है?
1: जी दीदी, मैं हाउस वाइफ हूँ, घर का काम करती हूँ और मेरे बच्चे हैं और इसी परिवार में है। अभी गर्मी का सीजन है तो इन सारी बातों का ध्यान रखना, जैसे कि जैसे पानी वानी पीना है या कहीं जाना है तो जैसे टॉवेल लेके जाए, पानी की बॉटल लेके जाए, और साथ साथ में जैसे हमको पता है कि हमें पानी चाहिए, वैसी पक्षी हैं, गाय हैं, इन सभी का जैसे पक्षियों के लिए छोटे छोटे पोला होते हैं मिट्टी के, या फिर मिट्टी के जो घड़े होते हैं उसमें जाके छत के ऊपर पानी रखना ताकि पक्षी लोग आए और वो भी अपना प्यास बुझा सके।
0: लेकिन आप खुद ये काम करती हैं?
1: जी करते भी हैं, और जैसे बालकनी वगैरह है तो पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधे भी सूख जाते हैं गर्मी की वजह से, तो उनमें भी पानी डालते हैं ताकि पेड़ पौधे सूखे नहीं।
0: और पेड़ पौधों की देखभाल के लिए और घरेलू स्तर पर भी कुछ ध्यान रखना पड़ता है, सब्जी के जो छिलके होते हैं उसके माध्यम से खाद बनाया जाता है, तो घर पे भी कुछ खाद बनाया जा सकते हैं ना, अगर आप बागवानी करती हैं तो।
1: और हमारे इधर तो हम लोग गाँव में है तो घर में जैसे की गाय है भैंस है तो उन लोग का जो गोबर होते हैं उनको भी जैसे की खन की मिट्टी में दबा के उनका भी खाद बनाते हैं और उनको भी सब्जी के लिए खेतों के लिए डालते हैं।
0: ये तो बहुत बढ़िया खाद होता है, गोबर की खाद तो सबसे अच्छी होती है, और जो घरेलू पौधे होते हैं उनमें तो इस खाद का इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा होता है। तो आपके गांव में और क्या क्या है, क्या खासियत है गांव की बताइए, कौन से पेड़ पौधे हैं वहाँ पर, ज्यादातर खेती किस चीज की होती है?
1: हमारे तरफ तो धान की खेती होती है दीदी, और अभी पानी का इंतजार है, जैसे पानी गिरेगा तो धान की फसल डालेंगे हम लोग।
0: तो आपके यहाँ धान कूटने के लिए ओखली भी है, मूसल और ओखली?
1: नहीं अभी तो नहीं है, बहुत पहले
0: हुआ करता था,
1: दादी लोग, हाँ हुआ करता था दादी लोग के समय में। ओखली वगैरह का तो नहीं पता दीदी, लेकिन वो ढेकी वगैरह बोलते है ना, उस टाइप का था,
0: चक्की जात वगैरह, चक्री है ना।
1: जी जी,
0: अब बताइए कौन सा गाना आप सुनना चाहती हैं?
1: जी दीदी, मैं खुद गर्ज फिल्म का दिल बहलता है मेरा आप क्या जाने से।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपकी पसंद का यही गाना।

0: दोस्तों, ये था आज का हेलो फरमाइश कार्यक्रम। जिन श्रोताओं की कॉल आज लगी है उनसे हमारा करबद्ध अनुरोध है कि आगामी 2 माह तक हमें फोन ना करें, ताकि अन्य श्रोताओं को इसमें सहभाग का अवसर प्राप्त हो सके। हेलो फरमाइश के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं प्रत्येक सोमवार दिन में 11 बजे से। इसके लिए हमारे फोन नंबर नोट कर लीजिए। हमारे टेलीफोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का STD कोड 022। एक टेलीफोन नंबर और है जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 400-24662, मुंबई का STD कोड वही 022। टेलीफोन नंबर आपको एक बार फिर से बता देते हैं 28670288, और दूसरा टेलीफोन नंबर 400-24662, मुंबई का STD कोड 022। और हाँ, चलने से पहले आपको ये भी बता दें, आज के इस कार्यक्रम में हमारे रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, संपादन सहयोग सुशीला बेंगुर लेकर का, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह ने की। तो अब अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: हेलो फरमाइश।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम सुनिए अब से थोड़ी ही देर में।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: जीवन में करे योग, रहे निरोग और बढ़ती उम्र में भी बने स्वस्थ और सक्रिय। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनाएं योगा फॉर हेल्दी एजिंग का संदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ इस 21 जून सुबह 6 बजे जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का हिस्सा बनिए।

ताज़ा रहता है। पहला प्यार सिर्फ किसी को पसंद करने का नाम नहीं, बल्कि महबूब की मौजूदगी में सुकून और गैर मौजूदगी में एक मीठा सा खालीपन महसूस करने जैसा होता है। पहला प्यार प्रेम की गहराई और मासूमियत का वो जादुई दौर है जो हमें भीतर तक बदल देता है।

ये प्यार पहली नजर में, प्यार का वो जादुई एहसास, क्या कहने। प्यार में एक अलग ही दुनिया जीने लगता है मन। खुद से बातें करना, बार बार खुद को आईने में देखना, सजना संवरना, हर बात पे दिल की धड़कन का बढ़ जाना, सुर्ख चेहरा और एक अनजानी सी घबराहट लिए मन इधर उधर भटकता है। बस महबूब के ख्यालों में खोया रहता है ये मन।

0: जन जन जब अपनाए योग जीवन सदा रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर हेल्दी एजिंग के मौके पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय की पहल योग संगम
1: 21 जून सुबह 6 बजे जंतर मंतर जयपुर में जुड़िए विशाल योग संगम में। NIA और आयुष मंत्रालय आपको सादर आमंत्रित करते हैं।

इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एक भावनात्मक सफर है प्यार, खुमारी, बेचैनी, उम्मीद और रोमांस का अद्भुत मिश्रण। मन बेताबी से अपने प्यार को थामे रखना चाहता है, प्रेम को पकड़ना चाहता है, छूना चाहता है, उसे महसूस करना चाहता है और यही प्यार धीरे धीरे मन के भीतर एक पूरा ब्रह्मांड रच लेता है।

प्रेम के सावन में पहली बार भीगा हुआ मन का कोना जीवन में कभी नहीं सूखता। किसी के होने से भीतर एक ऐसा स्पंदन होता है जो खामोशियों में भी शब्द ढूंढ लेता है। कितना तेज, कितना सुंदर, कितना गहरा होता है ये प्यार। और जब दो टूटे बिखरे उजड़े हुए लोग आ मिलते हों अपने खोए हुए टुकड़ों को, बिखरे हुए वजूद को और उजड़े हुए चमन को खोजते खोजते, तो यही प्यार और तीव्र हो जाता है।

वो पहला प्यार जो अब आपका संसार बन चुका होता है, इस शोर और भाग दौड़ भरी दुनिया में अब कोई तुम्हें बाहों का सहारा दे रहा है, अपने दिल में जगह दे रहा है, तो तुम बिना किसी डर के समा जाओ उसकी बाहों में, बैठ जाओ उसके दिल के आंगन में, दुनिया का सारा बोझ उतार दो, खिलखिलाकर हंस पड़ो, निश्चिंत हो जाओ उसके आगोश में। कभी कभी एक गहरा आलिंगन वो कह जाता है जो शायद हजार शब्द नहीं कह पाते।

0: और अब छाया गीत से मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत। नमस्कार।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन ओवरसीज।
4: जीवन में करे योग, रहे निरोग और बढ़ती उम्र में भी बने स्वस्थ और सक्रिय। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनाएं योगा फॉर हेल्दी एजिंग का संदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ इस 21 जून सुबह 6 बजे जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का हिस्सा बनिए।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं विविध भारती देश की सुरीली धड़कन। चाय की चुस्की के साथ शाम की महफिल सजाने पेश है आपके लिए कार्यक्रम तराने नए पुराने। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म से सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना, आनंद बख्शी के बोल, जतिन ललित का संगीत।

तराने छेड़ रहे हैं ख्वाबों का फसाना। सुनिए तीन देवियां फिल्म से ये गाना किशोर कुमार और साथियों की आवाज में, मजरू सुल्तानपुरी के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

0: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
1: खून से है क्यों भीगा जिस्म ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं, और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
0: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेल्यूलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।

0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ख्वाबों से निकल कर आ बैठी है मोहब्बत हकीकत में, जानिए कैसे। कर्मयोगी फिल्म से आशा भोसले की आवाज में वर्मा मलिक के बोल इस गाने का म्यूजिक तैयार किया है कल्याण जी आनंद जी ने।
3: जन जन जब अपनाए योग, जीवन सदा रहे निरोग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग फॉर हेल्दी एजिंग के मौके पर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान और आयुष मंत्रालय की पहल योग संगम
4: 21 जून सुबह 6 बजे जंतर मंतर जयपुर में जुड़िए विशाल योग संगम में। NIA और आयुष मंत्रालय आपको सादर आमंत्रित करते हैं।

कार्यक्रम का अगला गाना अजनबी फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में समीर के बोल, संगीत अनु मलिक का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: बम बम मकलब, बम बम मकलब, बम बम मकलब, बम बम मकलब, बम बम कुक कुक, अरे बम बम।
3: जिंदगी के स्कूल में जब लिख जाता है मोहब्बत का नाम, तो लाइफ की फिलॉसफी कुछ ऐसी हो जाती है।

0: चलती का नाम जिंदगी। इस फिल्म से सुन रहे थे आप ये गाना किशोर कुमार और महेंद्र कपूर की आवाज में, नूर देवासी के बोल और किशोर कुमार का संगीत।
1: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
2: परेशान हूं मैं।
1: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
3: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
1: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
3: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
1: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
4: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं
5: सखी सहेली।
0: शाम के 6 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में फ्रांस के कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
1: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमएसीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में शामिल होंगे। श्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। विवाटेक सम्मेलन के इस संस्करण में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंडप है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। श्री शाह ने बताया कि इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री इस समय विवाटेक सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका संबोधन।
2: For the 10th edition of VivaTech. This is Europe's biggest technology event. I congratulate President Macron and the organizers for the success of VivaTech. Friends, 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement.
0: सरकार ने कहा है कि सभी तेल शोधन संयंत्र पर्याप्त कच्चे तेल के भंडार के साथ उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक बनाया जा रहा है।
3: पत्तन रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही है। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं।
0: पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,370 मेट्रिक टन एलएनजी से लदा मालवाहक जहाज दिशा के कल सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि मंत्रालय ने अब तक 3,639 से अधिक भारतीय नाविकों की सुरक्षित स्वदेश वापसी की सराहना की है। पिछले तीन दिन में 47 नाविक वापस आए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उपराष्ट्रपति और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त परिसर अभियान के अंतर्गत दिल्ली विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण प्रगति की सराहना की है। विश्वविद्यालय के 53,000 से अधिक छात्रों ने देश को नशा मुक्त बनाने की प्रतिज्ञा ली है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: विविध भारती पर आप सुन रहे हैं तराने नए पुराने। ख्वाबों से तरानों का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो पहुंच चुका है जिंदगी की तरफ। आइए अब सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से ये गाना, अलका याग्निक की आवाज में, समीर के बोल म्यूजिक है नदीम शाह।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये कौन चित्रकार है, ये कौन चित्रकार।
3: जिंदगी में छिड़ा है त्योहार, लेके आए हैं सजना बहार। सुनिए परख फिल्म से ये गाना लता मंगेशकर की आवाज में, शैलेंद्र के बोल, सलिल चौधरी का संगीत।
4: सजना

0: मृत्युदंड फिल्म से सुनिए ये गाना, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज में जावेद अख्तर के बोल आनंद मिलिंद का संगीत।
1: जीवन में करे योग, रहे निरोग और बढ़ती उम्र में भी बने स्वस्थ और सक्रिय। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपनाएं योगा फॉर हेल्दी एजिंग का संदेश। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर एवं आयुष मंत्रालय भारत सरकार के साथ इस 21 जून सुबह 6 बजे जयपुर के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर सामूहिक योग कार्यक्रम का हिस्सा बनिए।

0: सजना ने भेजा है एक पैगाम। अब वो पैगाम सबके सामने पढ़े या ना पढ़े, इस पर है सवाल। तो कहें या ना कहें इस पैगाम को, सुनिए इस गाने को। दीवार फिल्म से किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में साहिर लुधियानवी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।
1: दूं तुम्हें
2: हाँ,
1: क्या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है,
2: क्या है

0: बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: तराने नए पुराने, इस कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए, बॉम्बे फिल्म से चित्रा की आवाज में महबूब के बोल ए आर रहमान का संगीत।

तराने नए पुराने, अब ये कार्यक्रम समाप्त होता है। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार, उसके बाद जिले की चिट्ठी और फिर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में, राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और आरपीएससी ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के तहत कल लगभग 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस प्रोत्साहन वितरण से 15 लाख से अधिक अतिरिक्त रोजगारों को समर्थन मिलने की संभावना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की ओर से ये राष्ट्रीय कार्यक्रम नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। आज जयपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार ने बताया कि देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान में ये कार्यक्रम जयपुर सहित 7 स्थानों पर होंगे।
1: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
0: केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है, साथ ही खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण ने खाद्यान्न वितरण में पारदर्शिता को मजबूत किया है। श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में करीब 98.5% खाद्यान्न वितरण ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तकनीक से अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान करने में मदद मिली है। वहीं एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल ने देश भर में प्रवासी लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है।
2: हमने वन रेशन कार्ड तो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे, उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ दी को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
0: अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने इस वर्ष की हज यात्रा को सफलतम बताया है। श्री रिजिजू ने आज नई दिल्ली में अगले साल की हज यात्रा की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत की। उन्होंने बताया कि इस बार भारत को हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 पुरस्कार मिले हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार जल्दी ही 2027 की हज यात्रा के लिए नई नीति की घोषणा करेगी। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के तहत इन सड़कों के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आवंटित की गई है। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल की अगुवाई में हुई बैठक में राजस्थान सहित 6 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में सभी तेल शोधन संयंत्रों में कच्चे तेल के पर्याप्त भंडार हैं और ये संयंत्र उच्च क्षमता पर काम कर रहे हैं। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि पिछले 3 दिनों में 1,47,00,000 LPG सिलेंडर उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
3: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति दिए जाने की मंजूरी दी है। इन खिलाड़ियों को माध्यमिक शिक्षा विभाग आवंटित किया जाएगा। इस निर्णय से युवाओं को खेल क्षेत्र में आगे बढ़ने और प्रदेश में खेलों के विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। प्रदेश में कृषि उपज मंडी समितियों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 18 करोड़ 86 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी। इस राशि से मंडी यार्ड निर्माण, संपर्क सड़कों का विकास और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवाई जाएगी। इससे सोजत, पलसाना, श्रीमाधोपुर, बीकानेर, नागौर और दूदू कृषि उपज मंडियों में विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिससे कृषि विपणन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय पर आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत कृषि विभाग की ओर से डीडवाना में हुई वर्कशॉप में पीएचईडी और जिला प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने किसानों से कुल कृषि भूमि के कम से कम 10% हिस्से में प्राकृतिक खेती शुरू करने को कहा, जिसे भविष्य में व्यापक स्तर पर विस्तार दिया जा सके। उधर नागौर में आयोजित कार्यशाला में किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने प्राकृतिक और जैविक खेती पर जोर देते हुए कहा कि इससे किसान

0: किसानों की आय में बढ़ोतरी संभव है। राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना की उच्चाधिकार समिति की आज जयपुर में बैठक हुई। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में चालू वित्त वर्ष की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने परियोजना के तहत अधिकारियों को ग्रीन कवर बढ़ाने और भूजल स्तर में सुधार करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पौधरोपण और चारागाह विकास कार्यों में स्थानीय तथा क्षेत्र विशेष के अनुकूल प्रजातियों को प्राथमिकता दी जाए। मुख्य सचिव ने जल संरक्षण और जल संरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावी प्रयास करने पर जोर दिया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू ने आज आयोग मुख्यालय पर प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पिछले एक साल में आयोग द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों और तकनीकी नवाचारों की जानकारी दी। श्री साहू ने कहा कि आयोग ने परीक्षा प्रणाली की शुचिता और समयबद्धता बनाए रखने के विशेष प्रयास किए हैं। उन्होंने बताया कि एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया गया और 10,000 अभ्यर्थियों की चयन अनुशंसा संबंधित विभागों को भेजी गई।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 डीपीसी की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस डीपीसी के माध्यम से मिला है।
0: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एनटीए ने विद्यार्थियों को नीट यूजी 2026 परीक्षा सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से आयोजित करने का आश्वासन दिया है। एजेंसी ने कहा है कि परीक्षा में किसी भी प्रकार की नकल और अनुचित गतिविधि के प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा। एनटीए ने अपने संदेश में कहा है कि परीक्षा में केवल 3 दिन शेष है। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर भरोसा रखते हुए परीक्षा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 144-16 से मदद ली जा सकती है। एजेंसी ने अभिभावकों, शिक्षकों, विद्यार्थियों और आम जनता को अफवाहों पर विश्वास नहीं करने और अपुष्ट जानकारी साझा नहीं करने की सलाह दी है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन के तहत प्रदेश भर में योगाभ्यास के कार्यक्रम हो रहे हैं। शिक्षण संस्थानों और पार्कों तथा खेल मैदान में बड़ी संख्या में लोग सामूहिक योगासन करते नजर आ रहे हैं। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आज मुख्यमंत्री आवास पर योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया। इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने RAC जवानों के साथ योग और प्राणायाम का अभ्यास किया। उधर उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने भी आज जयपुर में अपने आवासीय परिसर में परिजन और सहायकों के साथ योगाभ्यास किया। इस मौके पर श्री बैरवा ने लोगों से योग से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि योग को केवल एक दिन तक सीमित नहीं रखा जा सकता, इसे स्वस्थ जीवन शैली का स्थायी आधार बनाया जाना चाहिए। वहीं राजस्थान विधानसभा परिसर में कल सुबह सामूहिक योग कार्यक्रम रखा गया है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की अगुवाई में यह कार्यक्रम होगा। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री अर्जन देव जी का शहीदी दिवस आज मनाया जा रहा है। उन्होंने धर्म और मानवता की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। त्याग और सेवा के प्रतीक गुरु अर्जन देव को शहीदों का सरताज भी कहा जाता है। इस मौके पर गुरुद्वारों में विशेष दीवान सजाए गए हैं और गुरुवाणी तथा शबद कीर्तन के आयोजन रखे गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए राहगीरों की जल सेवा भी की जा रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम कल नई दिल्ली में राजस्थान सहित देश भर में 200 स्थानों पर समानांतर क्षेत्रीय कार्यक्रम होंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 98.5% खाद्यान्न वितरण EPOS उपकरणों से किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय स्पर्धाओं में पदक प्राप्त करने वाले 50 खिलाड़ियों को कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति की मंजूरी दी और RPSC ने बीते एक साल में 47 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के लिए 187 से ज्यादा परीक्षाओं का आयोजन किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से बालोतरा जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बंशीलाल ने तैयार किया है। बालोतरा जिले में राज्य सरकार की ओर से ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। जिले के अलग अलग क्षेत्रों में प्रतिदिन शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से सरकार के 22 विभागों की सेवाएं आम जन तक पहुंच रही हैं। ग्रामीण सेवा शिविरों के जरिए ग्राम पंचायत स्तर पर लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। साथ ही विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देकर पात्र लोगों को उनसे जोड़ा जा रहा है। वर्षों से लंबित कई कार्य एक ही स्थान पर पूरे किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव इन शिविरों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। वे गांवों में पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। जिले के सभी स्थानीय निकायों में शहरी सेवा शिविर भी लगाए गए हैं। जिले के 8 नगरीय निकायों में नियमित रूप से शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में पट्टों का वितरण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार की अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे हैं तथा पेंशन प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया जा रहा है। जिले में परंपरागत जल स्रोतों के संरक्षण और जल संरचनाओं के पुनरुद्धार के लिए वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान चलाया गया। अभियान के तहत विभिन्न तालाबों जल स्रोतों पर श्रमदान किया गया तथा पूजन के कार्यक्रम हुए। रेवाड़ा तालाब पर जिला स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रभारी मंत्री जोराराम कुमावत और राज्य मंत्री के विश्नोई ने भाग लिया। उन्होंने लोगों को जल संरक्षण का महत्व बताया और जल बचाने की शपथ दिलाई। जल ग्रहण विकास और भूमि संरक्षण विभाग की ओर से भी कई ग्राम पंचायतों में श्रमदान कार्यक्रम आयोजित किए गए। ग्रामीणों को वर्षा जल संचयन और जल स्रोतों की सफाई के महत्व के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर पूजा अर्चना की गई। बालोतरा के प्राचीन खेड़ मंदिर में भगवान रणछोड़ राय की पूजा की गई। वहीं गुड़ामालानी के स्वामी नारायण मंदिर में राज्य मंत्री के विश्नोई ने पूजा अर्चना की। इस अवसर पर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की गई। वहीं जिला सूचना और जनसंपर्क विभाग की ओर से पंचायत समिति परिसर में प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी आमजन को दी गई। जिले में बदलते कृषि परिदृश्य और भूमि की घटती उर्वरता को देखते हुए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पंचायत समिति परिसर बालोतरा में कार्यशाला रखी गई। कृषि विभाग की ओर से आयोजित इस कार्यशाला में किसानों को रसायन मुक्त खेती और प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित कृषि पद्धतियों के बारे में बताया गया। किसानों को प्राकृतिक खाद और जैविक तरीकों के उपयोग के बारे में भी जानकारी दी गई। इस वर्ष अधिक मास होने के कारण पूरे महीने जिले में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। कई स्थानों पर नगर परिक्रमा निकाली गई। लोगों ने पूजा अर्चना और दान पुण्य के कार्यक्रमों में भाग लिया। मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर विशेष अनुष्ठान आयोजित किए गए। श्रद्धालुओं ने सुख समृद्धि और अच्छी वर्षा की कामना की। पचपदरा रिफाइनरी को लेकर क्षेत्र के लोगों में उत्साह बना हुआ है। कुछ समय पहले एक यूनिट में आग लगने के कारण काम प्रभावित हुआ था, लेकिन अब फिर से कमिश्निंग का काम शुरू हो गया है। जुलाई के पहले सप्ताह तक रिफाइनरी के शुभारंभ की संभावना जताई जा रही है। रिफाइनरी से क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। विभिन्न स्थानों पर योग शिविर और योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह के समय बड़ी संख्या में लोग योग कर रहे हैं। जिले में पश्चिमी विक्षोभ के असर से तेज आंधी और हल्की बारिश हुई है। इससे गर्मी और लू से लोगों को राहत मिली है। तापमान में कमी आने के बाद किसान खेतों की ओर लौटने लगे हैं। खरीफ सीजन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। किसान खेतों की सफाई कर रहे हैं और अनावश्यक पौधों को हटाने का काम कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश से पहले खेतों को तैयार किया जा रहा है ताकि समय पर जुताई और बुआई का काम शुरू किया जा सके। ग्रामीण क्षेत्रों में खेती किसानी से जुड़ी गतिविधियां फिर से तेज होने लगी हैं और किसान आगामी मौसम की तैयारियों में जुट गए हैं। बालोतरा जिले की चिट्ठी में इतना ही। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर में पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रातेत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली में देश माए 200 ठोणा क्षेत्रीय कार्यक्रम भेला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98.5% अन्न वितरण EPOS मशीनों करियो चार्यो है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरी होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और RPSC लारला एक साल माए 47 लाख हूँ बत्ता उम्मीदवार सारू 187 बत्ती परीक्षा मां कराई। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत काल करीब 2400 करोड़ रुपया री प्रोत्साहन राशि पात्र लोगां ने देवेला। इणु नौकरी धंधा रा 15 लाख हूँ बत्ता मौका मिलेला। श्रम और रोजगार मंत्रालय री ओर ओ कार्यक्रम नई दिल्ली माए राख्यो जावेला, जतका देश भर माए 200 ठोणा क्षेत्रीय कार्यक्रम वेला। अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त अजीत कुमार बतायो कि राज्य में यह कार्यक्रम जयपुर समेत 7 ठोड़ा रख्या जावेला।
4: राजस्थान के करीब 7 जगहों पे इस कार्यक्रम का जोधपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, कोटा, जयपुर, अलवर और पाली, ये 7 जगहों पे ये कार्यक्रम किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 2400 करोड़ रुपया का वितरण लाभार्थियों को दिया जाएगा। इसमें करीब 15 लाख से ज्यादा लाभार्थी होंगे जिनको ये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में करीब 29,595 जो लाभार्थी होंगे, जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयर होंगे, उनको करीब 13.37 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होगी।
3: केंद्रीय उपभोक्ता मामलात खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी कहो है कि खाद्य सुरक्षा तय करण सारू खेतीबाड़ी री उपज बढ़ावण और अन्न ने हिफाजत सागे भेड़ो करनो जरूरी है। श्री जोशी आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम रा स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम रा उद्घाटन जलसा में बोल रहा है। वह कहो कि प्रौद्योगिकी काम लेवण अन्न पात्र लोगां ताई पुगावण माए साफ गोई मजबूत हुई है। श्री जोशी कहो कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत करीब 98.5% खाद्यान्न वितरण EPOS मशीना रे जरिए करियो जा रियो है। मंत्री कहो कि तकनीकों अपात्र लोगां ने पिछाण माए मदद मिली है, जदक एक राष्ट्र एक राशन कार्ड पहल आखा देश माए प्रवासी लोगां सारू अन्न मुहैया करावणो तय किन्नो है।
5: हमने वन रेशन कार्ड जो गरीब बड़े बड़े शहरों में जाते थे उसको राशन नहीं मिलता था, उसका भी इंतजाम इससे हुआ है। तो रिसेंट हमारा जो है CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी बेस्ड द फूड सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक बहुत बड़ा एक स्टेप ऑफ द को टेक्नोलॉजी उपयोग करके, डिजिटाइजेशन उपयोग करके नेक्स्ट लेवल का एक बदलाव है।
3: केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलात मंत्री किरेन रिजिजू ई साल हुई हज यात्रा ने घनी कामयाब बताई है। वे आज नई दिल्ली में आवता साल री हज यात्रा री तैयारियां सारू बुलाई ची मीटिंग पछे खबर नवीसा सके बातचीत कर रहा है। रिजिजू बतायो कि ई साल भारत ने हज यात्रा सारू सऊदी अरब रा हज और उमराह मंत्रालय री ओरू 2 इनाम दिया जिया। वे बतायो कि सरकार आवता साल री हज यात्रा सारू नुवी नीति रो ऐलान करेला। केंद्र सरकार चालू माली साल माए गांवाई हलका माए 26,000 किलोमीटर उम्बत्ती लंबी सड़कां बनावेला। ग्रामीण विकास मंत्रालय रे मुजब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलां रा तहत आ सड़कां सारू 18,900 करोड़ रुपये उम्बत्ती रकम राखी जी है। ग्रामीण विकास विभाग रा सचिव रोहित कंसल रे सदारत माए भी मीटिंग माए राजस्थान समेत 6 राज्यां रा अहलकार शामिल भया। देश माए सगड़ा तेल शोधन कारखाना माए कच्चा तेल रा पर्याप्त भंडार मौजूद है और ए कारखाना पूरा बूताऊं काम कर रहा है। पश्चिम एशिया रा मौजूदा हालात रा बारा माए आज नई दिल्ली माए भी अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता माए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय रे संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि लाडला 3 दिन माए रसोई गैस री 1,47,00,000 टंकियां ग्राहकां ने दीरी जी।
6: हमारी रिफाइनरीज ऑप्टिमम कैपेसिटी पर वर्क कर रही हैं। रिटेल आउटलेट्स पर और डिस्ट्रीब्यूटरशिप्स पर ऑपरेशन नॉर्मल है। एलपीजी बैकलॉग घटकर 3.1 डेज हो गया है। पिछले तीन दिनों में 1.36 करोड़ बुकिंग्स के अगेंस्ट 1.47 करोड़ डिलीवरीज की गई हैं और मार्च से लेकर अब तक 10.02 लाख पीएनजी कनेक्शंस गैसिफाई किए गए हैं। 3.22 लाख कनेक्शंस के लिए एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है।
3: ऐसा समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारा एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक मथ AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इस आगे आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in मथ समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा राष्ट्रीय स्तरीय होड़ा माए तमगा जीतन वाला 50 खिलाड़ियों ने माध्यमिक शिक्षा विभाग माए कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी देवन री मंजूरी दीनी है। इन फैसलाओं नौजवाना ने खेलना रा हलका माए आगे बढ़न और प्रदेश माए खेलना रा विकास ने बढ़ावो मिलेला। राज्य में कृषि उपज मंडी समितियां रो बुनियादी ढांचों मजबूत बनावन सारू मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा 18,86,00,000 रुपया रा खर्च वाला विकास रा काम मंजूर कीना है। इन रकम सोजत पलसाना श्रीमाधोपुर बीकानेर नागौर और दुदू कृषि उपज मंडी में विकास रा काम कराया जावेला। इस आगे यार्ड और संपर्क सड़क बनावन और टूटोड़ी सड़क री मरम्मत रा काम ही कराया जावेला। नागौर और डीडवाना कुचामन जिला मुख्यालय माथे आज प्राकृतिक खेती कार्यशाला राखी जी। राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन रातेत कृषि विभाग री ओर डीडवाना माए राखी जी कार्यशाला माए जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी किसानाओं खेती री कुल जमीन कमों कम 10% हिस्सा माए प्राकृतिक खेती करण बाबत कहो। नागौर माए भी कार्यशाला माए किसान आयोग रा अध्यक्ष CR चौधरी प्राकृतिक और जैविक खेती माथे जोर देता था का कहो का इनु किसानारी आमदनी माए बढ़ोतरी फै सकेला। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास राजस्थान वानिकी और जैव विविधता विकास परियोजना रा तेत हरियाली बधावन और जमी हेठे पानी रा लेवल माए सुधार सारू जतन करण रा हुकम दीना है। वे आज जयपुर माए अहलकारा सागर मीटिंग रे दौरान बोल रहा है। मुख्य सचिव चालू माली साल री कार्य योजना नई मंजूरी दीनी व पौधा रोपण और चरागाह विकास से जुड़िया कामा माए स्थानीय और हल्का अनुकूल प्रजातियां माथे खास ध्यान देवन बाबत कहो। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA विद्यार्थियों ने उजू ली जावन वाली नीट UG 2026 परीक्षा साफ गोई सागे करावन रो भरोसो दिरायो है। एजेंसी रे मुजब परीक्षा माए नकल और गैर कानूनी काम करन री कोशिशा ने करडायों रोकी जावेला। NTA उम्मीदवारा ने तैयारी माथे भरोसो राखता थका परीक्षा देवन और जरूरत पड़िया मानसिक स्वास्थ्य सहायता मानस हेल्पलाइन 14416 मदद लेवन बाबत कहो है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC रा अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू आज अजमेर माए आयोग रा मुख्यालय माए खबरनवीसा ने लारला एक साल माए आयोग री उपलब्धियां और तकनीकी नवाचारा नी जानकारी दीनी। वे कहो के आयोग परीक्षा प्रणाली री साफ कोई बनाई राखण और परीक्षावां टेम सर करावण सारू खास कोशिशां कीनी है। वे बतायो कि एक साल माए 47,00,000 बत्ता उम्मीदवारा सारू 187 परीक्षावां करार 10,000 उम्मीदवारा री नौकरी री सिफारिश संबंधित महकमा ने करी जी।
1: 14,536 पदों के लिए सीधी भर्ती के करीब 16 विज्ञापन हमने जारी किए हैं और जो पेपर है उसकी सिक्योरिटी के लिए अभी 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम लागू किया गया है जो पेपर सुरक्षित रहे। करीब 14,485 अभ्यर्थियों का इस समय में इंटरव्यू लिया गया है। 666 DPC की बैठकें हुई है एक साल में और 34,986 राज्य कर्मचारियों को प्रमोशन उस DPC के माध्यम से मिला है।
3: अंतरराष्ट्रीय योग दिवस काउंटडाउन रा तहत प्रदेश में योगाभ्यास रा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हूँ पहली आज जयपुर में मुख्यमंत्री रा रहवास में थे योगाभ्यास कार्यक्रम राखी चियो। इनमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आरएसी रा जवाना सागे योग और प्राणायाम रो अभ्यास किन्नो। उप मुख्यमंत्री और आयुष मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवाई जयपुर में वारा रहवास में थे परिवार वाला और सहायका सागे योगाभ्यास किन्नो। वह लोगों योग जुड़बारी अरज कीनी। बैरवा कहो कि योग न केवल एक दिन ताई सीमित राखन री बजाय स्वस्थ जीवन शैली री बुनियाद बनायो जावणो चाहिए। राजस्थान विधानसभा परिसर में आई काल समारोह विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी री अगुवाई में योग अभ्यास कार्यक्रम राख्यो जावेला। राज्य में फेर रही आंधी बारिश हूँ पारो उतरियो है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर रे मुजब आवता 24 घंटा में प्रदेश रा उगनी हल्का में गरज चमक सागे बारिश रा आसार है, जबकि आतुणी हल्का में कठे कठे हल्की बरसात री संभावना है। इन बीच आज दोपहर पाछे चूरू झुंझुनू श्रीगंगानगर भीलवाड़ा और हनुमानगढ़ जिला में तेज अंधड़ सागे बारिश हुई। झुंझुनू और नवलगढ़ में ओला पड़िया। सिख धर्म रा पांचवां गुरु श्री अर्जन देव जी ने आज मारा शहीदी दिवस रे मौके श्रद्धा भाव सागे याद करया जा रहा है। त्याग और सेवा रा प्रतीक गुरु अर्जन देव ने शहीदा रा सरताज जी कहा जावे है। इस मौके गुरुद्वारा माए खास दीवान सजाई चिया और गुरबाणी और शब्द कीर्तन रा कार्यक्रम राखी चिया। आखिर माए खास समाचार एक कर फेरू सुन ले रहो। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना रा तहत राष्ट्रीय कार्यक्रम काल नई दिल्ली में। देश में 200 क्षेत्रीय कार्यक्रम फैला। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना रा तहत 98% अन्न वितरण EPOS मशीनों करियो जा रियो है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा राष्ट्रीय स्तर री होड़ा में तमगा जीतने वाला 50 खिलाड़ियों ने कनिष्ठ सहायक रा ओहदा माथे नौकरी री मंजूरी दीनी। और RPSC लारला एक साल में 47 लाख उम्बत्ता उम्मीदवार सारू 187 उम्बत्ती परीक्षा में कराई। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
7: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
8: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है FM बैंड 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगला कार्यक्रम सुनिए आपसे थोड़ी देर में।

नमस्कार, विविध भारती पर आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं देशभक्ति के इस गाने के साथ, सिकंदर आजान फिल्म से। मोहम्मद रफी की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल, हंसराज बैल का संगीत।

0: एक जाने माने पेंटर जो अपने कैनवस और ब्रश से रचते हैं एक जादुई दुनिया, एक सम्मोहक यात्रा।
1: हमारे देश के प्रमुख चित्रकार जगदीश स्वामीनाथन, उन्होंने आदिवासी कला को भी समकालीन कला की तरह रखा था और सारे आदिवासी कलाकारों से भी मिलना जुलना और फिर गांव जाना उसने बहुत मदद करी एक मनुष्य के देखने को समझने में।
0: कुछ बातें जो इतनी दिलचस्प हैं कि आप खो जाएं।
1: मैंने ये सोचना शुरू किया कि मेरे चित्र में ऐसा क्या है जो मनुष्य को संबोधित है।
0: जाने माने पेंटर अखिलेश से एक बातचीत।
1: जितना ज्यादा समय आप अपने काम को देंगे उतना ज्यादा आप उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं।
0: आज के मेहमान 24 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लगाए
1: अटक गया
2: क्यों
1: को को को को को को को को कोई फर्क नहीं अलबत्ता
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता।

आशा भोसले, किशोर कुमार, राहुल देव बर्मन, भूपिंदर, सपन चक्रवर्ती की आवाजों में सुन रहे थे सत्ते पे सत्ता। इस फिल्म से ये गाना, गुलशन बावरा के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में सुन रहे थे आप गाइड फिल्म से ये गाना, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं काला बाजार फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में, शैलेंद्र के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत।

जयमाला कार्यक्रम का अगला गाना हीरा पन्ना फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जाएंगे।
1: किशोर कुमार की आवाज में आप सुन रहे थे गैम्बलर फिल्म से ये गाना, नीरज के बोल, सचिन देव बर्मन का संगीत। जयमाला कार्यक्रम के बाकी गाने इस अंतराल के बाद।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, बसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्यालय नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256996 पर।

पर। सुनी बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, बसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141-256-9696 पर।
3: आप हैं विविध भारती के संग।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को नमस्कार। दोस्तों, हमारे व्यक्तित्व का सबसे महत्वपूर्ण और आकर्षक हिस्सा है हमारे खूबसूरत बाल। बालों का श्रृंगार तरह तरह से किया जाता है, पर अगर किसी के या किसी वजह से आपके पास आपके कुदरती अच्छे खूबसूरत बाल नहीं हैं, तो आज के ज़माने में आप विग लगा सकते हैं और जो आपके चेहरे को सूट करे और अपनी पर्सनैलिटी को बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो ऐसे ही एक कलाकार हैं अनवर पावस्कर, जो विग बनाते हैं, लोगों की पर्सनैलिटी को निखारते हैं। अनवर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मुझ जैसे इंसान को आपने आज यहाँ बुलाकर मुझे बहुत बहुत बड़ा मौका दिया है लोगों से बात करने का, क्योंकि मैं हमेशा पर्दे के पीछे रहता हूँ, कभी पब्लिक से आप लोगों से मिलने का मौका ही नहीं मिलता है। और मैं आज अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ कि आपने मुझे यहाँ तक बुलाया है।
0: तो आपकी ये जो खूबी है कि आप विग बनाते हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या मतलब आपके यहाँ ऐसा ये व्यवसाय चलता था?
1: देखिए, परिवार की जहाँ तक बात है, मैं हूँ रत्नागिरी से बिलोंग करता हूँ, मेरा नाम है अनवर पावस्कर। अब ऐसा है मैडम, हमारे गांव में तो इतना कोई इंडस्ट्री में या फिल्म लाइन में या ऐसे लोगों ऐसे कामों में कोई आगे नहीं था। मेरे घर के लोग भी एक छोटे से घर के कामों में रहते थे, जैसे हमारे आम के वहाँ बागात है, खेती वगैरह है।
0: अच्छा, अच्छा।
1: जब मैं बॉम्बे में आया था तो मुझे स्कूल के ज़माने से एक शौक था पेंटिंग का, यानी कि लोगों की शक्लों को, अगर किसी की दाढ़ी लगा दो तो उसकी शक्ल कैसी होगी, अच्छा। किसी के यहाँ मसाला लगा दो उसके मुंह पे तो उसकी शक्ल कैसी होगी, किसी को काणा कर दो एक आँख से तो कैसा लगेगा। ये बचपन से एक शौक सा था कि इंसानों के चेहरे को मैं बिगाड़ता था, बनाता था, बिगाड़ता था, बनाता था। जब बॉम्बे में मैं आया तो बॉम्बे में मैंने फिल्मों में देखा, एक आदमी जवान आदमी को बूढ़ा बना के दिखाया जा रहा है, एक गरीब आदमी को अमीर दिखाया जा रहा है। और वो जब मैंने मालूम किया, सीखा वहाँ से, कुछ पूछा लोगों को, तो मालूम पड़ा कि एक मेकअप नाम की ऐसी चीज़ होती है जिससे इंसान इंसान की शक्ल को बदली कर सकता। अच्छा, मेकअप के अंदर सबसे बड़ा हाथ होता है नकली बालों का, दाढ़ी का, मूंछ का। तो मैंने सोचा कि इस बारे में कुछ सोचा जाए, और सोचते सोचते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं। आज मैं 33 साल से फिल्म लाइन में काम कर रहा हूँ।
0: 33 साल?
1: 33 साल मेरी उम्र है, 54। और ये काम मैं आज तक, सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बोलते हैं कि बिन गुरु ज्ञान कहाँ से लाऊं, मगर मैं एक ऐसा इंसान हूँ कि बिना किसी गुरु के ज्ञान लेकर आया हूँ।
0: अच्छा।
1: क्योंकि मैं देख देख कर अपने आप को सीख।
0: खैर, हम में अगर सीखने की कोई ललक हो तो ये तो पौराणिक कथाएं भी कहती हैं कि आप गुरु अपने मन में मान लीजिए किसी को, और सच्ची लगन से अपना काम करिए तो आपको सफलता जरूर।
1: हाँ, तो गुरु हुआ ना उसके अंदर भी। हाँ। आपकी जो सच्ची लगन थी वही आपका गुरु हो गया।
0: जी हाँ। तो सबसे पहले फिल्म इंडस्ट्री में आपने किसको संवारा?
1: अभी भट्टाचार्य।
0: अभी भट्टाचार्य
1: बहुत पुराने एक्टर थे।
0: हाँ, करेक्ट,
1: बंगाल के थे। और जब मैं फर्स्ट टाइम उनके पास एक मूछ लेकर पहुंच गया था, तो मेरी उम्र उस टाइम पे बड़ी छोटी सी थी, और वो देखते रह गए, बोले बेटा किसने बनाई है? बोला मैंने बनाई है। तो उनको यकीन नहीं आया, फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, लगा के दिखाओ। तो जो उस वक्त एक मेकअप मैन थे जो मुझे थोड़ा सा पुश कर रहे थे, उन्होंने काफ़ी, मैं तो बहुत डर रहा था उस टाइम पे उनके नज़दीक जाते हुए, कि मैं पहली बार किसी फिल्म एक्टर के नज़दीक गया था। और जब मैंने वो मूछ हाथ कांपते हुए लगाई थी तो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी तो लगी थी, मगर मेरे को नहीं मालूम पड़ी वो टेढ़ी मेढ़ी है, मगर उनको मालूम पड़ गई थी। और उन्होंने मुझे कुछ ऐसा बोला नहीं कि भाई ये बराबर नहीं है, सही नहीं, ताकि उनको मालूम है बच्चा है, हिम्मत हार जाएगा। तो अभी भट्टाचार्य जी ने कहा बहुत अच्छी लगाई आपने मुझ, और बहुत अच्छी बनाई आपने। जबकि बाद में उन्होंने बोला था मेरे को कि बेटा इसमें ये प्रॉब्लम है जो मैं आपके सामने किसी सामने बोला।
0: मतलब उन्होंने एनकरेज किया।
1: बिल्कुल बिल्कुल, उस आदमी का आज तक मैं एक शुक्र ऐसा मानता हूँ, बेचारे इस दुनिया में अभी है ही नहीं हो, मगर उन्होंने मुझे जो धक्का दिया तो मैं लड़खड़ा था, वो आज तक यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसके बाद में मैंने जिंदगी में पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, समझ लीजिए। आज इस मकाम पर हूँ कि इंडस्ट्री के दिलीप साहब से लेकर अमित जी तक मुश्किल से कोई मेरे हाथ से बचा होगा।
0: चलिए, बहुत।
1: अगर किसी की विग नहीं बनी है तो किसी की दाढ़ी बना दिया हूँ, किसी की दाढ़ी नहीं बनी है तो किसी की मूंछ बना दिया हूँ, अगर कुछ नहीं बनाया तो मेकअप तो कर ही लिया हूँ।
0: बहुत अच्छी बात है। आपने कहा कि जैसे मूंछ लगाई, तो जो ये विग बनाते हैं आप, या मूंछ, दाढ़ी, जो भी कुछ बनाते हैं, तो इसके लिए ओरिजिनल जो बाल होते हैं उनका प्रयोग करते हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: अच्छा,
1: वैसे नायलॉन की भी बनती है, मगर उसमें जो नेचुरलिटी आनी चाहिए वो नहीं आती है। असली बालों से जैसे विग बनती है या दाढ़ी मूंछ बनती है, उसकी बात ही कुछ और आती, लगता है कि बिल्कुल नेचुरल ही आपकी दाढ़ी है या नेचुरल ही आपके बाल है।
0: तो कहाँ से आपको वो नेचुरल बाल?
1: एक बहुत बड़ा मंदिर है, उस मंदिर की ये खासियत है, बालाजी का मंदिर है वो, और काफी लोग मानते हैं उनको, वहां पर ऐसी श्रद्धा है लोगों के दिलों में कि वो अपने सारे बाल, बड़ी बड़ी जवान जवान लड़कियां अपने बाल पूरे वहां उतार के आ जाती है, फुल बॉल्ड होके, फुल टकली होके वहां से आती है, और वो सारे बाल, बहुत बड़ा कारोबार है बालों का, ये सारे बाल वहां से एक फैक्ट्री में जाता है, साफ होता है, साइज वाइज लगता है, और इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट होता है, यहाँ पे भी मिलता है उन लोगों को।
0: अच्छा, तो आप कैसे विग बनाते हैं?
1: एक्चुअली क्या होता है, जैसे फिल्मों की अगर कोई किसी की विग बननी है तो डायरेक्टर का जो कॉन्सेप्ट दिमाग में होता है वो हमको एक फोटोग्राफ बताएगा।
0: अच्छा,
1: कि भाई इस आदमी को हमको इसकी तरह बनाना है।
0: अच्छा, ये जो बाल आपने कहा कि एक्सपोर्ट भी होते हैं, आप भी उन्हीं लोगों से बाल लेते हैं जो असली होते हैं, तो ये क्या बहुत महंगा है?
1: अभी तक तो नहीं था, मगर अभी ये 2-3 साल से इतने महंगा हो गया है कि एक्सपोर्ट चालू हो गया बाहर
0: जी,
1: तो उसके रेट्स बढ़ गए सब अभी।
0: आम तौर पे अगर कोई व्यक्ति अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहे, अच्छा सा विग लगाना चाहे, तो क्या कीमत पड़ेगी एक विग की अपने इच्छानुसार जो आपको ऑर्डर करें?
1: अगर आप बनाना चाहें तो 5,000 की बन जाएगी, अगर आप बनाना चाहें तो 50,000 की बनती है।
0: अच्छा।
1: आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे लोग कहते हैं जितनी शक्कर डालोगे उतना मीठा बनेगा।
0: तो उसमें क्या क्वालिटी में क्या फर्क
1: रहता
0: है? क्वालिटी
1: में जैसे बालों की क्वालिटी अलग अलग आती है, किसी के बाल बहुत ही सिल्की मुलायम होते हैं जो काफ़ी महंगे मिलते हैं।
0: अच्छा।
1: किसी के बाल बहुत ही लंबे होते हैं वो काफ़ी महंगे मिलते हैं, किसी के बाल करली होते हैं जल्दी मिलते नहीं वो भी महंगे होते हैं। तो जैसे जैसे वो उसकी जो चॉइस होगी उसके हिसाब से उसकी प्राइसेस भी बढ़ती कम होती जाएगी।
0: पर अगर कुछ नहीं होते, आप विग ऐसा बनाते हैं जिसमें करली बालों की जरूरत होती, तो क्या करते हैं
1: उसको? हम लोग मशीन से करते हैं ना, केमिकल से वगैरह पम्पिंग वगैरह करते हैं, उससे करली हो जाते हैं,
0: उससे करली।
1: हाँ, अगर करली बाल है तो उसको स्ट्रेट हो जाते हैं, वो तो बेचारे मजबूर बाल होते हैं, उनको आप जैसे शेप दो जो बोलो बेचारे मान लेते हैं।
0: अच्छा, एक शंका मेरे मन में ये आ रही है कि आप विग तो लगा लिया, फिल्म में कई टेक होते होंगे, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि विग किसी का काम करते करते गिर गया हो, निकल गया, उसको फिक्स कैसे करते हैं?
1: वो क्या, उस जो हम लोग जिस मटेरियल से विग को फिक्स करते हैं वो एक गम आता है, वो हमारे इंडिया में बनता है, फिर एक फॉरेन का गम आता है, उसको हम लोग ला के जब फिक्स करते हैं तो आप उसको ऐसा पकड़ के आप उठा सकते हैं, इतनी उसमें ग्रिप होती है।
0: अच्छा, तो आम आदमी जिसको रोज अगर विग लगानी हो, आपसे उसने विग ली हो, तो उसको रोज ये अपने गम लगाना पड़ेगा और चिपकाना पड़ेगा?
1: यहाँ जो रोज पर्सनल यूज जो करते हैं उसमें तो एक टेप आता है जो डबल साइड टेप होता है, उससे आप लगा सकते हैं, या तो कैप की तरह पहन सकते हैं या क्लिप लगा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें आज के ज़माने में इतना इम्प्रूवमेंट है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।
0: अच्छा,
1: और जैसा आप बोलते हैं विग निकल जाएगा,
0: हाँ।
1: मैं तो बोलता हूँ लगने के बाद आप हाथ से बड़े खींचे बाल निकलेगा नहीं, वो
0: नहीं निकलेगा,
1: नहीं नहीं इसकी गारंटी इस बात से।
0: अच्छा, जैसे आपने पुरुषों के विग की बात की, महिलाएं अगर बहुत लंबे बाल चाहें तो ऐसा भी विग बनता है?
1: हाँ, बिल्कुल बनता है, बिल्कुल बनता है, जितने लंबे यानी जितनी आपकी हाइट नहीं है,
0: हाँ,
1: उतने लंबे विग बन सकते हैं, बालों के भी और नायलॉन के भी, सिंथेटिक के भी।
0: अच्छा, और उसके लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो आम आदमी पर्सनल यूज के लिए विग इस्तेमाल करता है?
1: सावधानी कुछ भी नहीं, ये कोई इसका तो आइटम नहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का कि यहाँ की वायर वहाँ लग जाएगी तो आईसी उड़ जाएगा, जल जाएगा, बस पेन लिए, कंघी कर लिए, तेल लगा लिए, जैसा असली वालों में जो होता है सब वही करना है, इसमें कोई ऐसा सावधानी वाली बात नहीं है,
0: कोई सावधानी की बात जरूरत नहीं, बस आपके पॉकेट पे निर्भर करता है कि आप किस तरह का
1: लंबे बाल अगर है तो पॉकेट भी लंबी रखनी चाहिए आपको, ये बात है। बालों की जितनी लंबाई होगी उसकी पॉकेट की लंबाई बढ़ जाएगी।
0: आप बेसिकली विग मेकर हैं या मेकअप मैन हैं?
1: बेसिकली तो प्रोफेशनल के हिसाब से विग मेकर हूं मैं,
0: अच्छा,
1: उसके बाद मेकअप मैन हूं, मगर इसके अलावा कुछ और भी मेरे शौक हैं, जैसे मैं गाने गाते रहता हूँ हमेशा।
0: अब हम फिर से आपकी विग वाली बात पर आ जाते हैं, आपके अनुभव कैसे रहे विभिन्न कलाकारों के साथ जिनके आपने विग बनाए?
1: मैंने जिनके जिनके साथ काम किया उनसे मैंने हर इंसान से एक एक चीज़ सीखी। जैसे इंडस्ट्री में बहुत बड़े सुपरस्टार हैं जिनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, उन्होंने मुझे कहा कि ज़िंदगी में हमेशा इंसान को वक्त पर चलना चाहिए।
0: कौन है वो?
1: अब सुपरस्टार तो मेरे ख्याल से इंडस्ट्री में एक ही है, और जिनको देखकर जो उनकी खासियत ये बताऊं मैं आपको, उनको देखकर लोग अपनी घड़ियां सीधी करते हैं।
0: अच्छा, और किन किन कलाकारों के साथ आपने काम किया?
1: एक मेरे मनचाहे कलाकार हैं जिनका नाम है सचिन पिलगांवकर। देखिए, वो इंसान एक्टर है, डायरेक्टर है, म्यूजिक डायरेक्टर है, सिंगर है, डांस डायरेक्टर है, एक्शन है, ये समझ लीजिए कि एक फिल्म के लिए जितनी चीज़ों की जरूरत पड़ती है वो पूरा पैकेज है। उनके साथ मैंने कम से कम 12-13 फिल्में की है मराठी, और सचिन साहब के मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार रहूंगा कि उन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ सिखाया है।
0: अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपने किसी के लिए विग बनाया हो और उसमें बहुत किसी ने मीन मेख निकाली हो?
1: ऐसा एक्ट्रेस जो होती है, एक्ट्रेस मतलब जो लेडीज स्टार होती है, उनके नखरे थोड़े ज़्यादा होते ही है, तो हमको प्रोड्यूसर पहले बोलता है कि वो थोड़ी नखरेबाज है, तो तुमको खाली उनके सामने हाँ हाँ बोलना है, बाकी करना वही जो हम बोलेंगे। तो हम लोग भी क्या, हम लोग प्रोड्यूसर के आगे हम लोग भी कठपुतली रह देते हैं, क्योंकि पेमेंट हमको वहीं से मिलना है, हीरोइन तो पेमेंट करेगी नहीं, तो हमको उनके हाँ में हाँ मिलाकर इनके साथ रहना पड़ता है। तो हम लोग भी यस मैडम करते रहते हैं, उससे बुलाओ हमको, तुम्हारे खाली यस मैडम बोलना, नो बोलने का ही नहीं।
0: अनवर जी, आपसे मैं ये जानना चाहती थी कि कई बार कैंसर जैसी बीमारी की वजह से जो उसमें इलाज होता है कीमोथेरेपी, बाल चले जाते हैं।
1: ये तो भगवान का दिया हुआ एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसको हर आदमी को फेस करना पड़ता है। और क्या होता है कि वो एक ऐसी चीज़ है ना मैडम कि वो जैसे इंजेक्शन बदन में जाता है, एक ही रात में तकिए पे सारे बाल रह जाते हैं। तो उस टाइम पे क्या पेशेंट बहुत डर जाता है।
0: हाँ।
1: तो मैं वीक तो बाद में रहता हूँ, पहले पेशेंट से 2-4 घंटा बात करता हूँ। तो कैंसर से जब बाल जाते हैं तो मैं तो मोस्टली अभी आपको एक बताऊँगा बात कि मैं यहाँ से पुणे तक गया अपने खर्चे से, अपने पेट्रोल से, उनका मेजरमेंट लेने के लिए, उनको वीक देने के लिए, और मैं उनसे चार्ज नहीं करता हूँ।
0: अच्छा,
1: ये मेरी खासियत है। जब भी
0: मतलब जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनसे आप चार्ज
1: नहीं, मैं चार्ज नहीं करता हूँ। कभी कभी कोई बोलता है नहीं इतना महंगा, हमने वहाँ पूछा था, वहाँ पे उसने 18,000 रुपये बताया था, यहाँ पूछा था उसने हमको 20,000 रुपये बताया था। मतलब उसने बताया था आप टेंशन मत लीजिए, आपका काम हो जाएगा। कुछ मेरे पास रेडीमेड भी रहता है, जैसे हमने शूटिंग में जो शूटिंग होने के बाद में बचते हैं,
0: हाँ,
1: वापस रहते हैं मेरे पास, तो मैं उनमें से एडजस्ट कर देता हूँ उनको। कभी कभी कुछ होता है ऐसे जो बहुत पैसे वाली होती है, बोले नहीं हमको मेरे जैसे थे ये फोटो देख के आपको ऐसा ही बनाना है, तब मैं क्या करता हूँ मजबूरी में बोलता हूँ मैडम अगर आपको पर्टिकुलर ऐसा बनाना है तो मेरे को खाली आपके बाल के पैसे आप दे दीजिए, या तो बाल ला के दे दीजिए, आपको ये आदमी से मिला देता हूँ जो हमारे एजेंट हैं, हम लोग बाल लेते हैं, आप उनसे फोन पे बात कर लीजिए कि मेरे 300 ग्राम बाल चाहिए मेरे को, अब कितना पैसा लोगे आप, उसको उसकी पेमेंट कर दीजिए, आई विल मेक फ्री, मैं उसका जो मेकिंग चार्ज लूँगा आपसे। ऐसा भी मैं कई बार करता हूँ, क्योंकि ये ऐसी बात है ना, क्योंकि आदमी जब कैमो लेता है तो उसको 2-4 लाख रुपये ऐसे ही खर्चा हो जाता है उसका, उसके बाद उसके ऊपर मैं और एक प्रदर्शन डाल दूँ बाल का तो अच्छा लगता नहीं।
0: तो ऐसा जो करता है उसका खुद अच्छा ही होता है ना?
1: मेरा तो हमेशा अच्छा हुआ है, और जो मैं कर रहा हूँ आजकल जो हेयर वीविंग का जो चक्कर है, हेयर पेस्टिंग जिसको मैं बोलता हूँ, वो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं, वो आपकी स्किन के ऊपर खाली पेस्ट हो जाएगा मगर लगेगा बिल्कुल नेचुरल।
0: अच्छा, उसको भी निकाल के रखना पड़ता है?
1: कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं,
0: वो लगा ही रहता है, एक बार लगा।
1: हाँ, यस यस,
0: मतलब जितने बड़े लगाए वो बड़े बढ़ेंगे नहीं, बस
1: बढ़ेंगे, बस उनके हाइट मुकरी की तरह
0: धो सकते हैं।
1: हाँ बिल्कुल,
0: शैम्पू कर सकते हैं,
1: शैम्पू लगाइए, तेल लगाइए।
0: अच्छा, खर्चा कितना आएगा? अगर
1: 5,000 से शुरुआत ड्रामा होता है उसका तो 50 तक जाना है।
0: अच्छा, ये विक के साथ इसका भी ऐसा ही खर्चा?
1: अभी आजकल विक कोई पहनता ही नहीं, जमाने खत्म, खाली फिल्म में यूज होती है बस।
0: हाँ, मतलब थोड़ी देर के लिए
1: बाहर जो आजकल लगाते हैं वो हेयर वीविंग करा लेते, पैच लगा लेते हैं आजकल।
0: अच्छा।
1: इतनों के लगे हुए यू कैन, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, आपको इतने नेचुरल लगते हैं आजकल।
0: अच्छा। अनवर पावस्कर जी, आपसे बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और सारे श्रोताओं को मैं फिर से एक बार हाथ जोड़ के उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ।
0: इनसे मिलिए कार्यक्रम में आज हमारे साथ थे विग मेकर अनवर पावस्कर। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया कांचन प्रकाश संगीत ने। अब इजाजत दीजिए निम्मी मिश्रा को, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: कहानी के किसी सीन के रिहर्सल चल रही थी, मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया।
0: जाने माने चरित्र अभिनेता जीवन, कैसे हुई थी अभिनय यात्रा की शुरुआत?
1: डायरेक्टर ने आओ देखा ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें या पत्थरों में और ढेलों में। सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।
2: जिनकी शायरी दिल के बंद दरवाजों पर दस्तक देती है।
3: खून से है क्यों भीगा जिसमें ये शकील अपना, जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था, मैं रूम पे गया और लेट गया, मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
2: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
3: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
2: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

आज के हवा महल कार्यक्रम में हास्य नाटिका हम सुनेंगे मशीन का चक्कर, लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी।

0: चली गई। ओहो कहाँ गई? अभी रोटी यहीं रखी थी मैंने, न जाने कहाँ चली गई।
1: कौन मम्मी?
0: तू अपना काम कर बेबी, चल यहाँ से। मैं जरा देर के लिए यहाँ से उठ के आ गई कि वो गायब हो गई। कोई काम करना मुसीबत, करो तो मुश्किल है, ना करो तो मुश्किल। अरे तू खड़ी खड़ी क्या कर रही है? मैं कोई गीत गा रही हूँ क्या? स्कूल नहीं जाना है?
1: नहीं नहीं मम्मी, जाना है जाना है, लेकिन अभी नहाने के लिए।
0: ठीक है तो जा। जब कोई काम करने चलती हूँ तभी एक न एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। बस कह दिया ये काम सीखो वो काम सीखो, लेकिन कहना आसान है, उसमें जो मुसीबतें आती हैं उसका आइडिया किसी को नहीं।
2: बहू जी मैं पूछूं कि आप किसको उबालना है? आलू तो उबल गए।
0: मुझको उबाल दे मुझको, तुझे भी इसी समय आना था। मैं तो वैसे ही परेशान हूँ और तू दूसरी ही प्रॉब्लम लिए चली आ रही। जा कुछ भी उबाल ले।
2: मैं पूछूं बहू जी क्या हो गया? कुछ चीज़?
0: देख मोहिनी मेरा सर मत खा, जाकर रसोई में अपना काम कर, मेरी लक में तो ट्रबल है।
2: लेकिन हमारा आदमी बोले है बहू जी कि तेरे भूल तो बहुत महंगा आवे हैं, आप कितने रुपए गज लाई हैं?
0: ओफो, जब नहीं समझती तो क्यों बोलती है? तेरे वुल नहीं ट्रबल, ट्रबल मुसीबत। जा अपना काम कर।
2: अच्छा अच्छा मैं चली।
0: ओहो इसमें भी नहीं है, कहाँ चली गई? किस बुरी घड़ी में लेकर बैठी थी। ठीक है ना मिल, आज मैं तेरा पता लगा कर ही रहूंगी।
3: अरे ये सब क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, लाल बार कहा कि मेरे बीच में मत बोला करो।
3: मैंने कहा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, होश तो ठिकाने हैं।
0: अरे आप कब आए? मैंने देखा ही नहीं।
3: ये तूफान क्यों आया हुआ है? पागलों की तरह तुम ये कपड़े इधर उधर क्यों फेंक रही हो?
0: आपने कहा कि फटे कपड़े घर पर ही सी लिया करो, पैसे बचेंगे। यही सोचकर मैंने 2 दर्जन सुइयां भी मंगा ली। कल से 3 खो चुकी हैं, एक आज लेकर बैठी थी, जरा देर के लिए उठी यहाँ से, वो भी गायब हो गई।
3: ओहो तो बंदरों की तरह कपड़े उछालने से तुम्हारी सुई मिल जाएगी।
0: तो और क्या करूं? आपसे इतनी बार कहा है कि हाथ से सीने वाली मशीन ला दीजिए, लेकिन आप सुनते ही नहीं। दूसरे की तकलीफ से आपको क्या मतलब?
3: मशीन कोई तुम्हारी बातों से तो आ नहीं जाएगी देवी जी, उसके लिए तो पैसा चाहिए पैसा। हाँ अब क्या है साहब, देखो जब मिल जाए।
0: मशीन आने से देखिए कितना आराम हो जाएगा, सभी कपड़े घर पर ही सी जाया करेंगे, और फिर सुइयों के खोने का भी डर नहीं रहेगा। बोलिए कब लाएंगे मशीन?
3: देखो भाई मैं तारीख तो नहीं बता सकता, मगर वादा करता हूँ कि ला जरूर दूंगा। अरे रे रे ये क्या कर रही बेबी? अरे अभी तो मैं जिंदा बैठा हूँ।
4: डैडी नहाने के बाद फ्रॉक पहनी, देखिए सुई घुस गई।
3: अरे सुई देखो तो ये रही। नहीं नहीं घबराने की कोई बात नहीं है बेबी, ये घुसी नहीं चुभी है, चुभी है। चल चल भाग जाए।
4: मैं तो इतनी जोर से और आपके लिए।
3: क्यों भाई तुम तो कह रहे थे कि तुमने सुई यहाँ रखी थी और ये उसकी फ्रॉक में कैसे निकली है? और भाई तमाम मशीनों में मुझे यही सबसे ज्यादा पसंद आई, इसीलिए मैं इस कंपनी की मशीन लाया हूँ, चलती भी बहुत हल्की है।
0: मेरे तो इतना ही चलाने में हाथ उठने लगे, दरअसल कभी चलाई नहीं है ना। वैसे जैसा आपने कहा हल्की तो चलती है।
3: भाई आप चाहे हल्की चले या भारी, मैंने तुम्हारे कहने से तुम्हें मशीन ला दी। और सुन लो अब कमीज पैंट छोड़कर कोई भी कपड़ा दर्जी के यहाँ सिलने नहीं जाएगा।
0: भाई देखिए अभी तो जाएंगे ही, जब मैं सीना सीख लूं तब बंद कर दीजिएगा। फिर सीखूंगी भी किससे?
3: क्यों मिसेस चोपड़ा हैं, वर्मा जी की वाइफ हैं, शीला जी हैं, किसी से भी सीख सकती हो, उन्हें घर पर बुला लेना और पूछ लेना। अरे भाई बस थोड़ी सी चाय का ही तो खर्चा है।
0: यही तो मैं भी सोच रही थी, लेकिन सिलाई इतनी इजीली तो आ नहीं जाएगी।
3: अब इजीली फिजीली मैं नहीं जानता, मैं तो इतना जानता हूँ कि अब कपड़े दर्जी के सिलने नहीं जाएंगे बस।
2: ओहो मशीन, मैं पूछूं बहू जी जो मशीन क्या लाया है? बड़ी सुंदर लगे हैं, मैं तो कब से भगवान से प्रार्थना करूं हूं कि हे भगवान हमारे बहू जी को मशीन दे दे। चलो मुझे भी आराम हो गया, अब मैं भी बहू जी से अपना ब्लाउज और साया सिलवा लूंगी।
0: हाँ हाँ सबों के सी दूंगी, अब मुझे और कोई काम तो रही नहीं गया है ना, बस तुम लोगों के कपड़े ही सीती रहूंगी। जा रसोई में जाकर अपना काम कर, ब्लाउज सिलवा लूंगी। ये तो हो गया, अब कैसे काटूं?
2: मैं बताऊं बहू जी?
0: तू क्या बताएगी, ये कोई रोटी थोड़ी है जो झट से बता देगी कि ऐसे बेली जाती है। ये पजामा है पजामा।
2: नहीं बहू जी, जे टाइम बर्मियाइन जी आपके काटना बताए थी, हम गौर से सुने थे।
0: अच्छा बता आप कैसे काटू? बड़ा सुने थी।
2: देखिए इसको जोर से कोई तानने, अच्छा फिर कैंची से यहाँ से काटने शुरू कीजिए और ऐसा ले जाते हुए यहाँ मिलो दीजिए, तब देखिए कैसा फिट बैठे।
0: बेबी बेबी।
1: क्या है मम्मी?
0: ये कपड़ा तान कर पकड़े रहे, यहाँ से ए ऐसे।
1: अच्छा मम्मी।
0: अरे रे इतना तान मत, रस्सा कशी मत कर इसके साथ, धीरे करना थोड़ा सा। हाँ अब ठीक है, फिर मत खींचना।
1: अच्छा,
0: मैं काटती हूँ।
1: काटिए। ये क्या है मम्मी?
0: ये कैसा हो गया?
1: ये तो
2: तिरछा हो गया।
1: ये पैजामा है बोला।
0: मैं तुझसे कब से कह रही थी कि ठीक से पकड़, लेकिन तुझसे तो एक सा बैठा ही नहीं जाता, अब क्या करूं?
2: एक काम हो सके है बहू जी, सिलते वक्त बड़े में भाग को पिच्छू की ओर दबा दीजिए।
0: हाँ हाँ ये बात तूने ठीक बताई, सिलाई में दबा देती हूँ।
2: यहाँ से दबाइए। हाँ ये आओ।
0: ठीक, जरा कपड़ा बाहर निकला जा रहा है। ये
2: उल्टा फेरो, हाथ निकल जाएगी।

0: आज जल्दी जल्दी कैसे खिला सकती हूँ?
1: बहू जी, बाबूजी आज लौटेंगे।
2: हाँ, आ जाते होंगे।
1: एक महीना तो हो गया होगा बाबूजी को गए।
2: हाँ, एक महीने से तो ऊपर हो गया। अरे राम, मोहिनी जरा मेरा हाथ इस पट्टी में लटका दे तो।
1: अच्छा अच्छा बाबूजी।
3: बेबी, बेबी, दरवाजा खोल बेबी।
2: आती हूँ। जा मोहिनी, देख वो आ गए शायद।
1: मैं जाती हूँ। बाबूजी, नमस्ते। बाबूजी
3: नमस्ते। कहो भाई, सब ठीक ठाक है ना? अरे लीना, ये तुम्हारे हाथ को क्या हो गया?
2: अरे क्या बताऊं क्या हुआ, वो शर्मियाइन एक दिन अपनी लड़की की 3 फ्रॉक सिलवाने आई थी, तो शटल लगाते वक्त उनकी लड़की ने मशीन गिरा दी और मेरा हाथ उसके नीचे आ गया।
3: मैंने तुमसे कितनी बार मना किया है नीना कि फालतू काम मत किया करो, लेकिन तुम्हें मोहल्लेदारी से ही फुर्सत नहीं। मैं क्या मोहल्ले वालों के लिए मशीन लाया हूँ?
2: अब मना भी तो नहीं किया जाता जरा से काम के लिए।
3: कौन है? मोनी, देख तो कौन है। और हाँ बेबी, तेरे हाथ का क्या हाल है?
4: अभी पूरी तरह ठीक नहीं मरे दी, अब शायद ही इम्तहान दे पाऊँ। कलमी नहीं पकड़ी जाती।
3: अरे नहीं नहीं, पकड़ लेगी पकड़ लेगी। जरा ध्यान से पढ़ती रहो, बस इम्तहान तक सब ठीक हो जाएगा।
0: बहू जी, जिंदल बाबू की नौकरानी कपड़े देगी है, जिंदलाइन ने भेजाए हैं ब्लाउज सिलाने के लिए, और उनकी नौकरानी एक अपना भी देगी है।
3: मोहिनी, नौकरानी गई?
0: हाँ बाबू जी।
3: जाओ जाओ, ये कपड़ा जिंदल बाबू के सर पर दे मारो और कह देना कि हमारा घर कोई दर्जी की दुकान नहीं है, समझी?
0: अरे सुनिए तो, मैं वापस करा दूंगी शाम को, अभी अभी ठीक नहीं है, वो बुरा मान जाएंगी।
3: मान जाए बुरा, मुझे कौन से इश्तराई थोड़ी नहीं बानी। जा जा, मेरा मुंह क्या ताक रही?
0: जी जी, जाती हूँ।
2: बेबी देख तो कौन है।
3: भाई ये तुम्हारी मोहल्लेदारी इस तरह की मुझे बिल्कुल नापसंद है।
2: देखिए आपस में ये सब करने ही पड़ता है, जरा से काम के लिए मना नहीं किया जाता।
3: बाहर वालों के लिए क्या मशीन मंगाई थी मैंने? जब से आई है घर का तो सिर्फ तुमने एक पैजामा भर सिया है, 2 महीने हो गए मशीन है।
4: डैडी, घोष बाबू की लड़की आई है।
3: क्या कह रही है?
4: कह रही है माँ ने पूछवाया है अगर मशीन खाली हो तो मैं कुछ कपड़े सी लूं।
3: सुन लिया तुमने नीना? बेबी जाकर कह दे मशीन खाली नहीं है।
2: अरे नहीं नहीं, सुन बेबी, कहना कि मिसेस झा के यहाँ मशीन गई है, वहां से मंगा लूंगी, तब आकर सी लीजिएगा। जा।
4: अच्छा।
3: क्या क्या कहा तुमने? यानी कि मशीन घर में नहीं है, मांगे गई है?
2: अच्छा, जब से मेरे हाथ में चोट लगी है तब से मशीन खाली ही तो थी, तो मिसेस झा ने एक दिन के लिए मांग ली, यही रखे रखे क्या होता, कोई खिस तो जाएगी नहीं।
3: हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, किए जाओ परोपकार, मोहल्ले वालों को भी ऐसा परोपकारी और कहां मिलेगा। मैं कहता हूँ नीना, एक दिन ना पछताओ तो कहना। मैं कहता हूँ वो यहाँ कर नहीं सी सकती क्या?
2: ओ, आप तो
3: ठीक है ठीक है, मेरा क्या है?
4: डैडी डैडी,
3: क्या है?
4: एक मिस्त्री आया है, उसने ये पंचा दिया है।
3: क्या है? दिखा। नीना, ये दुकान पर मशीन क्यों गई थी?
2: दुकान पर?
4: हाँ मम्मी, गई तो थी वही जब डॉली ने उसके अंदर सला करा कर पहिया चला दिया था।
2: हाँ, जरा सी खराब हो गई थी।
3: जरा सी खराब हो गई थी? ये देखो ये देखो, मैं पूछता हूँ कौन देगा ये रुपए? अब मांगो जाकर मिसेस जिंदल से या मिसेस झा से, कान खोल कर सुन लो नीना, मैं नहीं दूंगा ये रुपए, देना अपने पास से।
5: बाबूजी, बाबूजी।
3: ओ, ओ, आप कौन है? कौन है भाई?
5: मैं झा साहब के यहाँ से आया हूँ, मशीन लाया हूँ।
3: चले आओ अंदर।
5: अच्छा, कहाँ रख दूँ बाबूजी?
3: हाँ यही मेज पे रख दे। ये मशीन को क्या हुआ?
5: बहूजी ने कहा है कि बच्चों ने जरा सी छू दी थी, सो थोड़ी सी खराब हो गई
3: ये
5: है।
3: थोड़ी सी खराब हुई है?
2: क्या हुआ?
3: हुआ है हमारा सर और क्या। देखो देखो अपनी मोहल्लेदारी, पीछे का पहिया अलग है? आगे की रॉड के 2 टुकड़े, बीच से बॉडी क्रैक, और उन लोगों के लिए यानी कि जरा सी खराब हुई है। और भेजो 2-1 जनों के यहाँ, जो थोड़ी बहुत साबुत बची है ना वो भी किनारे लग जाए।
2: हाय राम, ये तो इतनी टूट गई, मुझे क्या मालूम था।
3: ठीक है, अब तो मालूम पड़ गया तुम्हें। ए तुम कहाँ किसके जा रहे हो? उठाओ उठाओ ये मशीन, चलो मेरे साथ।
5: कहाँ बाबू?
3: जहाँ मैं कहूँ वहाँ।
2: कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो, उनके घर मत जाइएगा।
3: तुम चुप रहो जी, ना होगी खैरात और ना बटेगी। मशीन वाले के यहाँ जा रहा हूँ, कम से कम आधे रुपए तो इसके अब मिल ही जाएंगे।

0: भगवान बचाए मशीन के चक्कर से।
1: मशीन का चक्कर, ये हास्य नाटिका अभी आपने सुनी। लेखिका शांति स्वरूप प्रधान, निर्देशक विनोद रस्तोगी। आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की ये प्रस्तुति थी।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार दिन में 3 बजे सुनिए कार्यक्रम सखी सहेली, प्रायोजक हैं देवदर्शन।

नमस्कार, चित्रलोक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मोहित चौहान और सुजैन डिमेलो की आवाज में सुन रहे हैं आप रॉकस्टार फिल्म से ये गाना। इरशाद कामिल के बोल, एआर रहमान।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी जीआई प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 29 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
4: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 1 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मोजी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, चेतन विहार, अनुपम विहार, बीलवा, बूरथल, हिंगोनिया, अटल योजना, वसंत कुंज, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, हनुमान नगर, सिरोली, निलय कुंज, विद्यालय नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, श्रीनाथ एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, अनंतपुरा, मनोहरपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, आदिनाथ सरोवर, कृष्णा सिटी, शिवार सिटी, संतोष विला, दहमी क्लब, बगराना, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशंस पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जून माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 0141256969696 पर।

कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए गजनी फिल्म से, बेनी दयाल और श्रेया घोषाल की आवाजों में, प्रसून जोशी के बोल, ए आर रहमान का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम का अगला गाना सुनिए। जोनिता गांधी और अरिजीत सिंह की आवाज में रिशाद खामिल के बोल, नीलाद्री कुमार का संगीत, लैला मजनू फिल्म से।

0: इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आठ बजकर 45 मिनट होने वाले हैं, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
2: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021, वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी, फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
2: AI must improve lives, widen access, drive growth and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
2: 2026 is a special year for India and Europe. At the beginning of the year, we concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology and tourism.
1: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
3: सेंट कोबा के चेयरमैन और CEO बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल AI के CEO आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, AI अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु AI पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। CMA CGM के चेयरमैन और CEO रडॉल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
1: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनः परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान QS विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के सर्जियो गुर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृह मंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
4: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
5: उन्होंने जो प्रॉमिस

0: किया वो पूरा करके दिखाया। तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
1: यहाँ पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
3: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉक्टर मुरुगन ने कहा कि डॉक्टर श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉक्टर श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। मुंबई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खारब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति

0: बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजना पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमस्कार। विविध भारती देश की सुरीली धड़कन पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। सुरेश वाडकर और आशा भोसले की आवाजों में परिंदा फिल्म से ये गाना, खुर्शीद हलौरी के बोल राहुल देव बर्मन का

कार्यक्रम का अगला गाना सुनते हैं 1942 अ लव स्टोरी फिल्म से। कुमार सानू की आवाज में जावेद अख्तर के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

0: जख्म क्यों मैं खाया हूँ पत्थरों को है मालूम। अंदर शायर पैदा हो रहा था। मैं रूम पे गया और लेट गया। मेरे बाजू में रेडियो था, एक गजल बज रही थी, दो जमा दिलों का गम दूरियां समझती हैं। और इस गजल के साथ साथ मेरी गजल शुरू। रेडियो स्टेशन का भी दखल है मेरे अंदर शायर पैदा होने में।
1: वो है शायर और गीतकार शकील आजमी। इस मंगलवार सेलुलॉइड के सितारे हैं मशहूर शायर और गीतकार शकील आजमी।
0: मुश्किल हालात पैदा कर दिए थे अनुभव सिन्हा साहब ने। हम स्टूडियो में रात में काम कर रहे हैं और मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मुझे क्या लिखना है। मुल्क के सभी गाने थे मुश्किल, क्योंकि वो फिल्म ही ऐसी थी और सिचुएशन ही सब ऐसी थी।
1: 23 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अलका याग्निक और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे हैं तुमको ना भूल पाएंगे फिल्म से ये गाना, सलीम बिजनौरी के बोल, डब्बू मलिक का संगीत।

0: इसी गीत के साथ आज का आपके लिए कार्यक्रम संपन्न होता है। दीजिए सुदक्षिणा को इजाजत।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना, आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। फिल्म संगीत संसार में कई ऐसे संगीतकार हुए हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में नहीं की, लेकिन जो फिल्में की उनके जरिए फिल्मी गीतों की दुनिया में अपनी गहरी और बुलंद पहचान बनाई है। ऐसे कम चर्चित संगीतकारों की एक लंबी फहरिस्त है। इनका काम अपनी क्वालिटी की वजह से ज्यादा जाना जाता है, क्वांटिटी की वजह से नहीं। और ऐसे ही संगीतकारों की फहरिस्त में नाम आता है फिल्म जगत के नामी संगीतकार दान

डांसिंग का जन्म जयपुर में सन 1927 में हुआ था। कहते ये हैं कि उनके पिता एक अध्यापक थे और ख्याल गायकी में भी अपना दखल रखते थे। जाहिर है कि संगीत डांसिंग के खून में था। उन्हें खेमचंद प्रकाश के रूप में संगीत के अपने गुरु मिल गए और हुआ ये कि खेमचंद प्रकाश के साथ उन्होंने संगीत सीखना शुरू किया। तकरीबन 1.5 बरस बीत गया। डांसिंग खेमचंद प्रकाश के पास रियाज करते चले जाते और खेमचंद प्रकाश सिर्फ और सिर्फ राग भैरवी की प्रैक्टिस करने को उनको कहते। हुआ ये कि एक बार वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि ये क्या मामला है कि आप लगातार मुझे एक ही राग की प्रैक्टिस करवाते चले जा रहे हैं। तब खेमचंद प्रकाश ने ये कहा था कि संगीत की ये साधना बहुत लंबी खिंचती है। उन्होंने अपने एक शिष्य की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस व्यक्ति ने भैरवी सीखनी शुरू की तो अब 8 साल हो गए हैं और वो लगातार सीखते चले जा रहे हैं। खेमचंद प्रकाश को पता था कि डांसिंग की प्रतिभा

आपको ये जानकर हैरत हो सकती है कि दान सिंह ने अपना करियर संगीत की दुनिया में आकाशवाणी जयपुर से शुरू किया था। बाद में जब उन्हें ये लगने लगा कि उन्हें ऊंचे आकाश की जरूरत है, अपने आयाम फैलाने की जरूरत है, तो वो मुंबई आ गए थे। थोड़े दिन तक वो खेमचंद प्रकाश के सहायक भी रहे और उन्हें इस समय में कुछ फिल्मों के ऑफर भी मिले, जैसे रेत की गंगा नाम की एक फिल्म उन्हें ऑफर की गई। ये अलग बात है कि ये फिल्म बन नहीं पाई। सन 1965 में दानसिंह को जेपी शर्मा की फिल्म मिली भूल न जाना। गोरा गोरा

यहाँ आपको बता दें कि असल में बी एन शर्मा जिन्होंने भूल न जाना का निर्माण किया था वो फ्लैट में दान सिंह के साथ ही रहा करते थे। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म भूल न जाना भारत और चीन युद्ध पर बनी थी। दान सिंह ने बड़े मन से इस फिल्म के गाने तैयार किए थे और बहुत ही कमाल का संगीत था फिल्म भूल न जाना का।

फिल्म भूल न जाना, ये फिल्म रिलीज नहीं हो पाई, इसलिए दान सिंह की उड़ान को वो आकाश नहीं मिल पाया जिसके दान सिंह हकदार थे। पर इस फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग से जुड़ी एक घटना आपको बताते हैं। सन 1964, मुंबई में ताड़देव का एक स्टूडियो, गीता दत्त दान सिंह का एक गाना गा रही हैं। ये वो समय है जब गीता दत्त की जिंदगी में, उनकी निजी जिंदगी में तूफान आया हुआ है, रिश्तों में दरार आ रही है और गीता दत्त ये गाना गा रही हैं।

लाइनें गाते गाते अचानक गीता दत्त की रुलाई फूट पड़ती है। रिकॉर्डिंग के बीच में वो सुबकने लगती हैं। एकदम स्टूडियो के माहौल तनाव से भर जाता है। दरअसल डांसिंग का ये गीत गीता दत्त के दिल पर बहुत भारी पड़ा है। जरा सोचिए, इतना गहरा था डांसिंग के संगीत का असर। भूल ना जाना के अलावा डांसिंग ने फिल्म माय लव में संगीत दिया। शर्मिला टैगोर और शशि कपूर के अभिनय वाली ये फिल्म असल में डांसिंग के गानों के लिए ही याद की जाती है। बहुत कम लोग जानते हैं कि इस फिल्म में डांसिंग के सहायक के रूप में लक्ष्मीकांत ने मैंडोलिन और प्यारे लाल ने वायलिन बजाई। पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर बजाया इस फिल्म के गानों में और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने बांसुरी बजाई। यही नहीं, मनोहरी सिंह का सैक्सोफोन भी फिल्म माय लव के गानों की शान है। जरा सोचिए, इतने बड़े नाम जुड़े थे इन गानों की रिकॉर्डिंग में। आगे चलकर शिव हरि की जोड़ी फिल्म संगीत के संगीतकारों की सरताज तो बनी ही। पंडित शिव कुमार शर्मा और पंडित हरि प्रसाद चौरसिया ने संतूर और बांसुरी की स्वर लहरियों को आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचाया, देश और दुनिया में नाम कमाया। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की जोड़ी तो हिट फिल्में देने वाली एक बेमिसाल संगीतकार जोड़ी बनी। और सैक्सोफोन के सरताज मनोहारी सिंह को भला कौन नहीं जानता। फिल्म माय लव के गानों की बात चल रही है तो चलिए अब ये गाना सुनते हैं।

जैसा कि हमने कहा कि डांसिंग फिल्म संगीत की दुनिया में जब बहुत ज्यादा नाम नहीं कमा पाए तो वो रेडियो से जुड़ गए थे। युवावस्था में उन्होंने सुमित्रा नंदन पंत की कविता को संगीतबद्ध किया था और मशहूर कवि सुमित्रा नंदन पंत ने उन्हें गले लगा लिया था। डांसिंग बहुत ही गुणी संगीतकार थे, पर उन्होंने केवल 4 फिल्मों में संगीत दिया, माई लव, तूफान, बवंडर और भोभर। कुछ ऐसे संगीतकार होते हैं जिनको उनका हक नहीं मिल पाता। हम संगीत के प्रेमी बस इसी विकलता में रह जाते हैं कि आखिर ऐसी प्रतिभाओं को और मौके क्यों नहीं मिले, ताकि हमें मिल सकते थे कुछ और बेमिसाल गाने। फिल्म भूल न जाना का मुकेश का गाया ये गाना सुनिए और दान सिंह की प्रतिभा की वानगी देखिए।

अफसोस, 18 जून 2018 को 78 बरस की उम्र में दानसिंह ने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गए तो बस उनकी कहानी और उनकी याद।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था बेमिसाल संगीतकार दान सिंह पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। अगला कार्यक्रम है छाया गीत, सुनिए आपसे थोड़ी ही देर में।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

छाया गीत के सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार। जिंदगी की भीड़ में बहुत से चेहरे मिले, मगर सुकून कहीं नहीं मिला। फिर तुम मिले और लगा जैसे भटकते हुए दिल को अपना किनारा मिल गया हो। अब हर मुश्किल आसान सी लगती है, क्योंकि तुम्हारा साथ मेरे साथ है। तुम मिल गए हो, बस अब और किसी सहारे की जरूरत रही ही नहीं।

तुम चाहे जितनी दूर चले जाओ, चाहे दुनिया की हर राह आजमा लो, दिल को सुकून आखिर मेरे पास आकर ही मिलेगा। क्योंकि कुछ रिश्ते दूरी से नहीं टूटते, वो हर मोड़ पर एक दूसरे को पुकारते रहते हैं। तुम्हारे कदम कहीं भी ठहर जाएं, मगर लौट कर आना तुम्हें मेरे पास ही है।

वो खफा क्या हुए, जैसे मेरी दुनिया ही खामोश हो गई। न बातों में पहले जैसी रौनक रही, न मुस्कुराने का कोई बहाना मिला। हर वक्त बस यही डर दिल में रहा कि कहीं उनकी नाराजगी उन्हें मुझसे दूर ना कर दे। अब तो हालत ये है कि उनकी एक मुस्कान के लिए दिल हर पल दुआएं मांगा करता है।

0: अंतराल के बाद एक बार फिर आप सभी का छाया गीत कार्यक्रम में स्वागत है। वो बड़ी मनचली और चुलबुली सी है, हर बात में कोई ना कोई शरारत छुपाए रखती है। कभी यूं ही बिना बात मुस्कुरा देती है, तो कभी छोटी छोटी बातों को लेकर अजीब सी बातें करने लगती है। उसकी आदतें कई बार समझ से बाहर लगती हैं, मगर वही अनोखापन उसे सबसे खास बना देता है। सच कहूं, उसकी ये नटखट अदाएं दिल को बार बार उसी का बना देती है।
1: अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूम घट तो जरा ओढ़ो, आह मानो।

0: मान कहा अब तुम हो जवां मेरी जान लड़कपन छोड़ो।
1: सावन की आहट क्या आई है, दिल फिर से पुराने ख्वाबों की बारिश में भीगने लगा है। हवाओं में जैसे तेरी यादों की खुशबू घुल गई हो और मन उसी एहसास में चुपके चुपके झूम रहा हो। तेरा ख्याल आते ही ये बेचैन दिल अब कहीं ठहरता ही नहीं, कभी इस राह पर निकल पड़ता है, कभी उस दिशा में खो जाता है। सच तो ये है कि मोहब्बत में पड़ा ये दिल अब एक दीवाने बादल की तरह घूम रहा है।

0: चुपके चुपके कोई ख्वाबों में आने लगा है, बिना आवाज दिए दिल के दरवाजे पर दस्तक होने लगी है। न जाने कौन है, मगर उसका एहसास हर पल साथ रहता है। कभी यूं ही मुस्कान बनकर होठों पर ठहर जाता है, तो कभी बेचैनी बनकर दिल को मचलाने लगता है। लगता है जैसे कोई धीरे धीरे मेरी दुनिया में उतर रहा हो, और दिल उसके आने की आहट से ही धड़कने लगता है।
1: कौन है जो सब

मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ, मंजिलों से बढ़ा जा रहा हूँ। कौन है जो सपनों में आया, कौन है जो दिल

0: आज के छाया गीत में बस इतना ही। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
2: वीको टर्म

ढलती जाए रात, अब ये प्रोग्राम खत्म होता है। ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है, एफएम बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में वीवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: The message I shared then at VivaTech 2021, where convention fails, innovation can help. India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture and more.
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा। इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत के प्रति भारतीय समुदाय का गहरा लगाव और भारत फ्रांस के मजबूत संबंधों में उनका योगदान प्रशंसनीय है। श्री मोदी ने कहा कि हर देश ऐसे सहयोगी तलाश रहा है जिस पर दीर्घकाल तक भरोसा किया जा सके। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत विश्व में एक विश्वसनीय साझेदार के तौर पर उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। विदेश मंत्रालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सफल फ्रांस यात्रा के मुख्य नतीजों की जानकारी दी है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने पेरिस में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा तीन मुख्य स्तंभों, व्यापार, प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर केंद्रित रही। उन्होंने बताया कि भारत और फ्रांस ने मिलकर नीस में भारत इनोवेट्स पहल शुरू की है जो भारतीय डीप टेक स्टार्टअप्स के लिए वैश्विक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसलों को चुनौती दी गई है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट कर दिए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में 4 भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाऊ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खरब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है, FM बैंड 100.3 MHz पर। इस समय रात्रि के 11:05 हो चुके हैं। अब हमारी ये प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल सुबह 5:55 पर आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।